0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: मोहब्बत को भी कभी।
1: Radio Musti in the mix. Radio Musti feels a musti in the mix.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: शुक्रवार 29 मई की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Full on, उसी तरह हम भी आपकी तरह आपके बिना रह नहीं सकते और इन गानों की बिना तक कोई भी रह नहीं सकता है. That's why सुबह शाम चले आते हैं बस आपके हम सफर बनने के लिए, आपकी आवाजें आपके मैसेजेस के साथ इस हसीन पल को यादगार बनाने के लिए. 5:05. गुड मॉर्निंग एवरीवन. प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें. वंस अगेन नीतू आपके साथ आपकी मॉर्निंग को एकदम खूबसूरत गुड गुड बनाने के लिए. फ्राइडे मॉर्निंग है 29th ऑलरेडी, तो रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है एंड इस नए सफर की शुरुआत करने के लिए एकदम सज एकदम तैयार. व्हाटएवर यू माइट बी, काफ़ी सर्दी है अभी और सुबह सुबह हल्की बारिश भी कहीं कहीं हो रही है. सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ते चले एंड ऑफ कोर्स योर मैसेजेस ऑन साइक कात नफ नफ दोज नफ कात.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: लवली सॉन्ग्स करके आपके नाम ऑन 549-9994 वेरी गुड मॉर्निंग आपको. आप हो मिस्टर संजय रामदीन फ्रॉम पुत्र दो हामलेट. आप कहते हैं प्लीज़ डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई लवली वाइफ रेशमा. ओके, आज उसका बर्थडे है तो सब परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. एंड आप आज फैमिली गुड मॉर्निंग. ज्योति फ्रॉम शतुबिनागस, आशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार और हैप्पी मदर्स डे आप विश कर रहे हैं ऑफकोर्स सभी माओं के नाम. तो आप ही अपने अपनों का नाम जोड़ सकते हैं ऑन 549-9994. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. और आप हैं धीरज, आयुष, विधिशा, आश्विन, ज्योति, हरक परिवार एज यूजल फ्रॉम मोदार बेया. प्रणाम जी, कैसे हैं भाई सूरज शर्मा सजादा एंड परिवार फ्रॉम थ्रियुले. हैव अ ब्लेस्ड डे आप ही. नमस्कार रेडियो मस्ती. नेक्स्ट गाना आपके नाम. आप है कौन? वेल, यहाँ पर अब्दुल सायरा बानू. हैव अ नाइस डे. हैप्पी मदर्स डे आपको. शीला जी लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से और सभी लिसनर्स के नाम थैंक यू सो मच. सो कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस अपनों के नाम. और आपके इस मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं प्यार मोहब्बत के साथ.
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है?
4: क्या है?

0: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे RM2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: रात बीत गई, बस बातें अभी बाकी है टिल 7 AM. ये है राइज एंड शाइन, 5:24, गोइंग टू वर्क बोंको गांश. जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय माता दी आपको प्रेमिला जी फ्रॉम प्लेंदी पपाय, पति रंजीत, शोभा दी सब परिवार के नाम. गुड मॉर्निंग मिस्टर टोनी फ्रॉम होशबुआ.

0: That's true ना, आए हैं और रहकर चले भी जाएंगे, बस बातें रह जाती हैं और हमारे जो कर्म है, जो हम बातें करते हैं, जो काम करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के साथ वो भी चली जाती है और दुनिया भर हम तक पहुंचाती हैं, आप तक पहुंचा रही हैं। 5499-1294 पर आपके मैसेजेस, थैंक यू। नीतू, जय माँ काली, और एक गाना प्लीज़ मेरे पूरे परिवार, मीला राम दिकल, मोता ब्लॉन्च से ही हैं आप। मियाँ पासामी का आज बर्थडे है, सो बेस्ट विशेस टू यू माय डियर फ्रॉम मामा पापा पोएटो साबल से, एंड सबकी तरफ से ढेर सारा प्यार।
1: काहे को बुला

0: लवली सॉन्ग सभी किशोर दा की आवाज में अनाड़ी फिल्म का गाना सुन रहे थे। चलिए आज आपका दिन कैसा रहेगा?
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti,
0: and as always, शुरुआत आपके साथ।
2: एरीज मेष राशि,
0: आज प्यार आपके रिश्तों में नई मिठास लेकर आएगी, घोल देगी। जीवन साथी के साथ बिताए गए पल दिल को सुकून

0: सुकून देंगे और रिश्तों में अपनापन और गहराई भी बढ़ेगी। कारोबार में थोड़ी हलचल और उतार चढ़ाव रह सकते हैं, बट समझदारी से किए गए काम और फैसले आपको संभालेंगे।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज किस्मत आपके दरवाजे पर खुशियों की दस्तक दे रही है, खोलिए दरवाजे। आपका व्यापार जो है, कई बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है। मेहनत का शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा सपना पूरा करने में मदद करेगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाएंगे और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज आपकी प्रतिभा लोगों को प्रभावित करने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और नए आइडियाज सबका ध्यान खींचेंगे। कला लेखन या क्रिएटिव कामों में आपका मन खूब लगेगा। घर में किसी खास मेहमान के आने से माहौल भी रौनक बढ़ेगी। हालांकि किसी सहयोगी की बात दिल को चुभ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: मन थोड़ा उलझा और बेचैन रह सकता है। पैसों से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में लेना आपके लिए नुकसान दे सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं। परिवार में छोटी मोटी बहस तनाव बढ़ा सकती है, बट बातचीत से हर बात सुलझ भी सकती है और सरकारी कामों में अटके हुए जो फाइल हैं आगे बढ़ सकती हैं और मन में कुछ नया शुरू करने की इच्छा आज जोर पकड़ सकती है।
1: लियो सिंह राशि,
0: वेल, आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों चरम पर रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को उनके काम के लिए तारीफ और सम्मान मिल सकता है। निवेश के लिए दिन अच्छा है, खासकर शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं। आप अपने हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे और पुराने दोस्तों से मुलाकात अचानक पुरानी यादों को ताजा भी कर सकती है।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आपको हर फैसला बहुत सोच समझकर लेना होगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा को या फिर कोई काम वो मिल सकता है, पूरा हो सकता है, जिससे आपको राहत मिलेगी। सेहत को हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा। जरूरी दस्तावेजों और कागजों को संभाल कर रखें, अदरवाइज लापरवाही जो है नुकसान करा सकती है।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आपकी समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। आमदनी बढ़ाने के लिए रास्ते नजर आएंगे, लेकिन धन से जुड़ा कोई मामला मन को थोड़ा परेशान भी कर सकता है। पुरानी किसी गलती का सच सामने आ सकता है, इसीलिए संभल कर रहें। विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने का सपना देखने वालों को शानदार अवसर मिल सकते हैं।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: वेल, आज आपका दिन थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है। सेहत थोड़ी सी यानी कि तकलीफ हो सकती है, मौसम का असर जो है, सो जितना जल्दी हो सके किसी डॉक्टर को आप कंसल्ट कराएं। बच्चों के प्रति आपका जो प्यार है वो बढ़ेगा, लेकिन जिम्मेदारियां भी किसी चीज़ होती है, कोई चीज़ होती है, तो बच्चे जो भी मांग करते हैं उनको आप बस पूरा ना करें। वह अपने नीड्स एंड वॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे, आप सोचेंगे तो आपका और उनका भी भला होगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आपके भीतर जोश और उत्साह भरपूर रहेगा। हर काम में मन लगेगा, नई शुरुआत करने का उत्साह भी बना रहेगा, खासकर प्रेम संबंधों में। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है, इसलिए योग व्यायाम को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पारिवारिक मामलों को बातचीत से सुलझाने की बिल्कुल आप कोशिश करेंगे।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपको धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पुरानी बीमारी अगर दोबारा परेशान कर रही हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हर फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम बाद में पछतावा दे भी सकता है। सुशांत रहकर काम करेंगे, मुश्किलें भी आसानी से संभल जाएंगी।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: कुंभ राशि वाले, आपके लिए ये कहा जाता है कि आज सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ सकता है। लोग आपके काम और विचारों की सराहना करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और मन में आत्मविश्वास बना रहेगा। प्रेम संबंधों में चल रही दूरियां जो है कम होंगी, रिश्ते को आप समझ पाएंगी और अपनापन भी बढ़ेगा। वैसे दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से ये तो आपको बचना होगा।

0: Pisces, मीन राशि।
1: लास्ट में आज सेहत आपका पूरा साथ देगी और आप खुद को ऊर्जावान एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा, जिससे रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। नौकरी में आ रही किसी समस्या का हल किसी जूनियर या सहयोगी की मदद से निकल भी सकता है। किस्मत आज आपके पक्ष में रहेगी, इसलिए कई काम आसानी से पूरे होते नजर भी आएंगे। सो डू गुड, बी गुड, डू हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: छोटी सी बात का बड़ी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। दूधी का आगे देख गए और से रखू जाना परिवार। गुड मॉर्निंग, आप इस सरिता गुडलैंड से प्यार पर नमस्कार आपको भी। आप अपनी लेट मामा शांति कुमारी बीपन के नाम गाना नजर करना चाहते हैं। हैप्पी मदर्स डे उनको, भले ही ना रहे लेकिन उनका प्यार आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। हेमृता भंजन पैतुपी मौसम आइडिया एंड द शुभकामनाएं पूरे परिवार के लिए। छाया सुकोई फ्रॉम पिलखन सेबास्टेपल किचन में है एंजॉइंग द सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। और एकदम बूस्ट की तरह है ये गाने। और नेक्स्ट गाना आपके नाम चलाते हैं, आप है कौन यहाँ पर, मिस्टर सुरेश रूपचंद एंड फैमिली, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर है कौन, मिस्टर टोनी, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग माई डियर। आकाश के नाम भाई आकाश सोमिया जो रहती हैं वेल द वेल, अपना आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सो ब्लेसिंग्स मारिश्मा नानी नाना मौसा मासी लविश ओजस्वी एंड

फैमिलीज के नाम. एंड सोनम भोला, हैप्पी मदर्स डे. और मामा कांति राम गुलाम को फ्रॉम सीला मीला नीरा वीरा भाई हैं और आपके पूरे परिवार की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं. बस थोड़ी देर में 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार.

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: 6 baje hai. Sundhya Sankshipt Samachar aapse Karuna. Namaskar aapko.
6: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। लगभग 30 विदेशी नागरिक, जिनमें मुख्य रूप से मडागास्कर और नेपाल के लोग शामिल हैं, इस समय एनजीओ पास्कल के शेल्टर में रह रहे हैं। पुलिस की कॉम्बैटिंग और ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट के अनुसार ये लोग मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। एक दुखद घटना ने फिर से एक छिपी हुई वास्तविकता को सामने ला दी है। हाल ही में एक गर्भवती युवती की मृत्यु, जिस पर अवैध गर्भपात कराने का संदेह है, मॉरिशस में इस गैर कानूनी प्रथा को लेकर चिंता को फिर से बढ़ा दी है। करीब 25 वर्षों से मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कर्टिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर हॉलेन हेन ने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार के नाते भेंट की और उन्हें कैंपस के विस्तार पट के अनावरण के लिए आमंत्रित किया। फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में आयोजित वैंकूवर कनाडा में इस वैश्विक आयोजन के लिए चुने गए लगभग 2000 स्वयं सेवकों में एक मॉरिशन नागरिक नसीम जंगी भी शामिल हैं। और विदेश में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण हासिल करने की योजना की घोषणा की। और अब मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व उत्तर एवं सेंट्रल प्लाटू पर। दोपहर में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस बीच पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में बादल घिराएंगे कुछ घड़ी के लिए, घने बादल और जहां तहां बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23

0: से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच साहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23 अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर। पूरा बुलेटिन 6:30 तब तक के लिए अनुमति दे। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
3: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
2: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएम2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आपको अपना बनाने की कसम खाई थी बहुत पहले, अभी तक कसम निभा रही है. थैंक यू सो मच. हे अक्षय सिचन, बस ड्राइवर है आप. सो बोकुहाज, ड्राइव केयरफुली. आपकी तरफ से, आपके डियर वंस की तरफ से, खास तौर से ये है कौन यहाँ पर? ओके, आपके पूरे परिवार की तरफ से इंदिरा हुसैनी फ्रॉम पृथ्वी, अजय, कविता, विदुला, मनीषा, मालिनी, शालिनी, जेनिता, विजेता, पेरुमाल, मीता, अरुणा, इंद्रानी, मोहिता, नौशीन, किसी को भूली तो नहीं, ललिता एंड जीतन फैमिली, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आपको भी. यहाँ पर है कौन? वेल कविता एज यूजुअल. नमस्ते नीतू, होप यू आर डूइंग वेल. यस, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच. आपकी प्यारी नीस है आंचल गंगा ऑफ काहोलीन, 18th बर्थडे टुडे. ब्लेसिंग्स फ्रॉम दादी शोभा, पुपु हेमा, पुपा विनोद, कजिन है पल्लवी जिया एंड सभी डियर वंस की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: 6:17. Bon courage. Going to work. रास्ते पर होंगे. Please be very careful. हाँ, drive safely. यहाँ पर साथ देने के लिए thank you so much. मनीष, अमर, राजा, बानी, जिसिक family and wish करेंगे 12th birthday आपको. Twins दिया, शीलाचा, लशमाउंट, अवगेनियन आइलैंड. ये है दिवेश की तरफ से, दीक्षा, रविश, प्रीशा, लवशा एंड डियर वंस. लगे हाथ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू, टू शीतल उर्फ अनुष्का नायक को. और कल आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. सभी कालीचरण, लक्ष्मण एंड वल नायको परिवार की तरफ से खास अभिनय. केमिशा, श्रेया एंड शालिनी, संजय साथ में है, ईशाली, सौरभ, भाई नितेश, मामा है सविता, पापा ज्ञानेश्वर और सब डियर वंस की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. गॉड ब्लेस यू.

खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत कहानी, थैंक यू सो मच। 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको कुमार एंड देवी चंद फैमिली, गुड मॉर्निंग माय डियर, हैप्पी मदर्स डे। एंड ये आपके लिए है, वेल मैं देख रही हूँ कौन है, ओके आप ही है हेमा, आपके पूरे परिवार के नाम। एंड गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती, बॉम्बू से आज विजुअल मिस्टर धारेश्वर, पत्नी सुनीता, रेखा, संजीव, निशा, शेल्वी, मीना, ऋषि, तहान, हंसवी, दविदस, सैनिचर परिवार के लिए। एंड साथ निभाते हुए थैंक यू मोगो पॉपलो मुसल से अंजू लोफर बल्कि लोहर। एंड वन डेडिकेट गाना स्पेशली उनकी माँ प्रेमिला गणपत जो रहती है वाकवा, आपकी मोमिन लो सासू माँ की स्नावती लोहर मोगो से, एंड सभी माओ के नाम। बस ऐसे ही साथ निभाते रहिएगा क्योंकि 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। लगभग 30 विदेशी नागरिक, जिनमें मुख्य रूप से मडागास्कर और नेपाल के लोग शामिल हैं, इस समय एनजीओ पास्खेल के शेल्टर में हैं। पुलिस की कॉम्बैटिंग और ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट के अनुसार ये लोग मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। एक दुखद घटना ने फिर से एक छिपी हुई वास्तविकता को सामने ला दिया। हाल ही में एक गर्भवती युवती की मृत्यु, जिस पर अवैध गर्भपात कराने का संदेह है। करीब 25 वर्षों से मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कर्टिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से मजबूत हो रहे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम को कैंपस के विस्तार पट के अनावरण के लिए किया आमंत्रण। फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में आयोजित। वैंकूवर कनाडा में इस वैश्विक आयोजन के लिए चुने गए लगभग 2000 स्वयंसेवियों में एक मॉरिशियन नागरिक नजीम जंगी भी शामिल। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण हासिल करने की योजना की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले ये खबर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की स्थापना से जुड़े विधेयक पर बहस आज सपहर 3:30 राष्ट्रीय सभा में फिर से शुरू होगी। पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने बहस की शुरुआत की थी। इसके बाद विपक्ष नेता जूली शोंगाओ ने अपना संबोधन दिया, फिर श्रम मंत्री रेजा उत्तिम ने, इसके बाद सांसद फ्रांसिस्को फ्रांसवा, रोशन झमन, जोआना बेगांजे, रविराज बिचुक और स्टेफानिया केचिल ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर अपने विचार व्यक्त किए। संवैधानिक सुधारों को लेकर अन्य वक्ता भी आज दोपहर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। लगभग 30 विदेशी नागरिक, जिनमें मुख्य रूप से मडागास्कर और नेपाल के लोग शामिल हैं, इस समय एनजीओ पास्खेल के शेल्टर में रह रहे हैं। पुलिस की कॉम्बैटिंग और ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट के अनुसार ये लोग मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। इस मामले में उनके नियोक्ताओं के खिलाफ जाँच जारी है। एनजीओ पास्खेल के कानूनी सलाहकार काशिफ इमाम बाकस इस विषय पर अधिक

0: जानकारी दे रहे हैं। उनसे बात की आदगिया वाले ने विवरण अशिता रघु का है।
1: ट्रैफिक इन पर्सन्स एक्ट के तहत वर्तमान कानून के अनुसार किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वह एक कर्मचारी को जबरन मजदूरी या काम कराए, जैसे जबरदस्ती काम करवाना यानी फोर्स लेबर और सेक्सुअल ट्रैफिक यानी यौन शोषण इत्यादि। यदि ऐसा होता है तो एक बार पुलिस अपराधियों की पहचान कर लेगी, पुलिस जांच शुरू करेगी तथा शिकार व्यक्ति को एक शेल्टर में भेजा जाएगा जब ये तय हो जाए कि इसका संबंध ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है।
0: एक दुखद घटना ने फिर से एक छिपी हुई वास्तविकता को सामने ला दिया है। हाल ही में गर्भवती युवती की मृत्यु, जिस पर अवैध गर्भपात कराने का संदेह है, मॉरिशस में इस गैर कानूनी प्रथा को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा रही है। 2012 में क्रिमिनल कोड की धारा 235 में संशोधन के बाद मॉरिशस में गर्भपात केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त हैं। सख्त कानूनी ढांचे के बावजूद कुछ महिलाएं अब भी असुरक्षित तरीकों का सहारा लेती हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। आशी बाचू और अशिता रघु गर्भपात के बारे में मॉरिशस के कानून पर खुलासा दे रही हैं।
1: मॉरिशस में गर्भपात कानून सख्ती से नियंत्रित है और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। ये प्रक्रिया केवल स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ द्वारा एक मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थान में और कम से कम दो विशेषज्ञ डॉक्टरों की मंजूरी के बाद ही की जा सकती है। इसके लिए केवल कुछ परिस्थितियों में ही अनुमति प्राप्त है, जैसे कि जब गर्भधारण जारी रखने से महिला के जीवन को खतरा हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर और स्थायी नुकसान का जोखिम हो। इसके अलावा भ्रूण यानी फीटस में गंभीर विकृति, बलात्कार या 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ यौन संबंध के मामलों में भी, और वह भी गर्भ व्यवस्था के 14 सप्ताह के भीतर इसकी अनुमति मिल सकती है। कानून ये भी अनिवार्य करता है कि मरीज की स्वतंत्र और पूरी जानकारी के साथ लिखित सहमति ली जाए तथा प्रक्रिया से पहले और बाद में मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जाए। साथ ही किसी भी प्रकार के दबाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इस कानूनी ढांचे के बाहर गर्भपात एक गंभीर अपराध माना जाता है। अवैध गर्भपात में शामिल किसी भी व्यक्ति को कुछ मामलों में महिला सहित 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। कानून आगे बढ़कर झूठे दावों को भी दंडित करता है, विशेषकर बलात्कार के मामलों में, जब उनका उपयोग गर्भपात प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये एक सख्त कानूनी ढांचा है जो गर्भपात की पहुंच और शर्तों को चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक बहस के केंद्र में रखता है।
0: करीब 25 वर्षों से मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कर्टिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर हॉलिन हेन ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें कर्टिन यूनिवर्सिटी के कैंपस विस्तार के अवसर पर आयोजित पट अनावरण समारोह में आमंत्रित किया। दोनों पक्षों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई। प्रोफेसर हॉलिन के अनुसार कर्टिन यूनिवर्सिटी आज मॉरिशस में स्थापित सबसे बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटी है और अफ्रीका में मौजूद एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी भी है। माधवी जगन्नाथ ने उनसे बात की, विवरण अशिता रघु का।
1: हमने उनसे इस बारे में भी चर्चा की कि किस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा विकास ये है कि हमने प्रधानमंत्री को हमारे कैंपस के विस्तार के लिए एक नई पटिका का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ी परियोजना है और छोटी छोटी शुरुआतों से ही बड़े काम हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ अपनी साझेदारी पर बहुत गर्व है। ये साझेदारी लगभग 25 वर्षों पुरानी है और हम केवल मॉरिशस ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

0: श्रीलंका फ्रेंडशिप्स कॉलेज फॉर बॉयज इस वर्ष अपनी स्थापना के 65 वर्ष पूरे होने का समारोह मना रहा है। जनवरी 1961 में श्री रामचयन बाछवा द्वारा स्थापित इस संस्थान की शुरुआत गुडलैंड के आस्टोरिया रोड पर किराए की इमारत में लगभग 100 छात्र छात्राओं के साथ हुई थी। आज ये कॉलेज लगभग 200 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है और नई पीढ़ियों तक मजबूत शैक्षिक मूल्यों को पहुंचा रहा है। वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक समारोह आयोजित किया गया जिसमें संस्थान की दशकों की यात्रा और विकास को प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में गणराज्य के राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री भी उपस्थित रहे। फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में आयोजित होगा। वैंकूवर कनाडा में इस वैश्विक आयोजन के लिए चुने गए लगभग 2000 स्वयं सेवकों में एक मॉरिशन नागरिक नजीम जंगी भी शामिल हैं। वे फीफा की ब्रांड प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा हैं। उनकी जिम्मेदारी आधिकारिक प्रायः जो हैं इस बारे में हम अशिता रघु बता रही हैं।
1: Et ça fait que ça, moi, tu peux réaliser qui moi pour capable être vivre ça l'événement là de si près même pendant le training.
2: मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि इस वैश्विक घटना को मैं इतने करीब से अनुभव कर पाऊंगा। ट्रेनिंग या सिलेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत भी फीफा संबंधित बहुत गतिविधियों का अनुभव किया था। हाल में फीफा ने वैंकूवर में फीफा कांग्रेस का आयोजन किया था। इसमें भी मैं एक वॉलेंटियर था। वहाँ फीफा के सदस्य देश भी मौजूद थे जहाँ उन्होंने अगली गतिविधि के लिए बजट पर वोट डाला था। मॉरिशस जैसे छोटे टापू देश से आया हुआ इस व्यक्ति के लिए ये गर्व की बात है कि वह इस घटना के इतने करीब है।
0: शर्तबन मजदूरी का इतिहास पोर्टुगीज में चल रही 3 दिवसीय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। विभिन्न इतिहासकार, शोधकर्ता और कई संस्थाओं के प्रतिनिधि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रही हैं। ये पहल आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की है। सहा अनु पूजा सुकालू।
3: मॉरिशस में हिंद महासागर में गिरमितिया कामगारों के इतिहास पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में शोधकर्ता, विरासत विशेषज्ञ और राजनयिक प्रतिनिधि एकत्रित हो रहे हैं जो गिरमितिया कामगारों की स्मृति पर आधारित है। आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के चेयरमैन सुकंद रामदास कहते
4: हैं,
3: इस कार्यशाला का उद्देश्य ऐतिहासिक स्थलों और गिरमितिया कामगारों से जुड़े अभिलेखों के संरक्षण को लेकर इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और विचार विमर्श को बढ़ावा देना भी है। मॉरिशस की यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि मारी जैस्मिन टुलूज ओलिविये कहती है,
5: Pour nous capables d'avancer dans nos vies, il est important de connaître la racine. L'histoire, les besoins paraissent cachettes. Donc nous dire qu'ils nous besoins racontent l'histoire, que ce soit à l'école ou bien plus petit, parce qu'il est important qu'ils nous connaissent, qu'ils nous sortent.
3: Ce कार्यशाला एक मास्टर प्लान तैयार करने की दिशा में भी काम करेगी ताकि विरासत के संरक्षण को ठोस रूप दिया जा सके। कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गोंदिया कहते हैं,
6: C'est un roadmap qui nous qui pour préparer et ça quand ça sortit, les là pour trouver un travail qui suivent après. Parce qu'ils nous pas capables un roadmap il est un peu pareil comme un guideline. Si vous payez dans ça, mais qui va avancer devant. Donc ça il est important pour nous préparer ça roadmap là.
3: ये कार्यशाला 29 मई तक जारी रहेगी जिसमें हिंद महासागर इलाके के विरासत विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे।
0: विदेश की खबरों में होमोज जलमार्ग के आसपास जारी तनाव, हमलों और तीखी बयानबाजी के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित कूटनीतिक समझौते की खबर सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के वार्ताकार एक ड्राफ्ट एमओयू पर सहमत हुए हैं जिसके तहत मौजूदा संघर्ष विराम को आगे बढ़ाते हुए 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को

0: लेना होगा। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण हासिल करने की योजना की घोषणा की है। ये पिछले साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम की शर्तों के विपरीत हैं। जॉर्डन में आयोजित एक सम्मेलन में इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हमास पर दबाव बना रही है, अब गजा पट्टी के 60% क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं, वे 50% पर थे फिर 60% पर पहुंच गए, अब उन्होंने निर्देश दिया है कि 70% तक पहुंचे। भारत में गुरुवार रात बेटवा नदी पर बन रहे एक पुल का एक हिस्सा ढह जाने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय ये मजदूर पुल के इसी हिस्से में सो रहे थे और मलबे में दबकर उनकी मौत हो गई। ये घटना बारिश और आंधी तूफान के बीच हुई, जिससे निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य में फैल रही इबोला महामारी के चलते युगांडा ने अस्थायी रूप से उसके साथ लगी अपनी सीमा बंद करने का फैसला किया है। रजनी बिकर।
1: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी के बढ़ते मामलों के चलते युगांडा ने इसके साथ अस्थायी तौर पर अपनी सरहद बंद करने का आदेश दिया है। इस कदम का मकसद है इस वायरस को अधिक फैलने से रोकना। पिछले 15 मई को महामारी के लिए औपचारिक घोषणा की गई। युगांडा में इबोला वायरस के बूंदी बुग्यो वेरियंट के साथ जुड़े 7 मामलों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि केवल इबोला से निपटने वाली टीमों को ही सरहद पार करने की अनुमति होगी, वो भी कुछ सख्त सैनिटरी शर्तों पर। सैनिटरी अधिकारियों के मुताबिक अभी के लिए वायरस के इस वेरियंट के खिलाफ कोई भी निश्चित टीका या इलाज नहीं है। स्थिति के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सैनिटरी चेतावनी जारी की गई। महामारी के 12वें दिन पर 900 से अधिक संदिग्ध मामले पाए गए। पहले से ही 220 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
0: मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व, उत्तर एवं सेंट्रल प्लाटू पर। दोपहर में हल्के बादल छाए रहेंगे, कुछ समय के लिए घने बादल घेराएंगे पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में और जहाँ तहाँ बारिश हो सकती है। रात के दौरान भी ऊँचाइयों पर आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और जहां तहां बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय हुआ 6:37 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर।

खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। लगभग 30 विदेशी नागरिक जिनमें मुख्य रूप से मडागास्कर और नेपाल से हैं, इस समय एनजीओ पास्केल के शेल्टर में हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। एक दुखद घटना ने फिर से एक छिपी हुई वास्तविकता को उभारा। हाल ही में एक गर्भवती युवती की मृत्यु, जिस पर अवैध गर्भपात कराने का शक है। मॉरिशस में इस गैरकानूनी प्रथा को लेकर चिंता बढ़ाई। करीब 25 वर्षों से मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कर्टिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से और मजबूत हुए। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर हॉलिन ने प्रधानमंत्री को उनके कैंपस के विस्तार पट के अनावरण के लिए आमंत्रित किया।

फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में आयोजित वैंकूवर कनाडा में इस वैश्विक आयोजन के लिए चुने गए लगभग 2000 स्वयंसेवियों में एक मॉरिशन नागरिक नजीम जंगी भी शामिल हैं। प्रणवानियो के निवासी 44 वर्षीय कुमार आनंद को कल कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार FCC द्वारा पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आज उन्हें अदालत में फिर से पेश। और विदेश में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण हासिल करने की योजना की घोषणा। 6:49 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है अंजू के सहयोग से। जुड़े रहे हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। साइप्रस लेन लामेरी वाक्वामे लामारी वाक्वामे 70 साल की 70-year-old श्री देवी अंचराज जो केसू से जाने जाते थे और पहली फिनिक्स बेवरेजेस के कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थात शनिवार को दिन के 10 बजे इनके मकान साइप्रस लेन लामारी वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुमरो एट 10 AM। मैडम लुलू रोजबेल में 68 साल की 68-year-old श्रीमती गीता जिबन जो वीना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनके भाई प्रदीप जिबन के मकान मैडम लुलू रोजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए माघिशानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रोत रॉयल क्लेमेंस श्याम में 70 साल की 70-year-old श्रीमती श्यामा देवी दसोई पैदाइशी नाम रामयाद जो देवयानी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे राजू दसोई के मकान रोत रॉयल क्लेमेंस श्याम से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्लेमेंस श्याम की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। ला रू ला क्वा फॉरेस्ट साइड में 71 साल के 71-year-old श्री कावली सर धनु जो कुमार से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे विकास धनु के मकान लाहिला ख्वा फॉरेस्ट साइड से उठाकर दाह संस्कार के लिए विगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रोट वडाई बाबू में 58 साल की 58-year-old श्रीमती वीना कुमारी रोबे पैदाइश नाम राम जावन जो नंदा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके पति श्री गौतम रोबे के मकान गुटवदाएँ बाबू से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई सैंपिय बाबू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शिमला गांव मोरालबेया में 91 साल की 91-year-old श्रीमती चंद्रावती हामर पैदाइश नाम सूर्या जो सूर्या से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे श्रवण कुमार हामर के मकान शिमला गांव मोरालबेया से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्रणमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। सोमिल लेन सैपल फिनिक्स में 92 साल के 92-year-old जनाब हामिद बाबा साहिब जो हामिद गौजे कानाल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। इनका जनाजा जो है कल रात

0: 10 बजे उठाया गया इनके मकान सोमी लेन सैं पोल फिनिक्स से निकालकर दफनाने के लिए सिया कॉन्स्टेंस सैं पियर का कब्रिस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल लास्ट नाइट एट 10 PM एवेन्यू एवान फिलाओ पाई में 91 साल की 91-year-old श्रीमती वेलुम्बाले इलामा, श्रीमती वेलुम्बाले इमाला इलामा जो मामाम्बा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान एवेन्यू एवान फिलाओ पाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए पाई के ही शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM थुदुदुस रोड ब्रह्मस्थान में 44 साल की 44-year-old श्री महेंद्र सुब्रन, श्री महेंद्र सुब्रन जो अनूप से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन के मकान थुदुदुस रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM रामनाथ लेन ब्रिजे बैजिया में 57 साल के 57-year-old श्री जगन्नाथ रामनाथ जो अख्तियार रोशन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती शमा रामनाथ के मकान रामनाथ लेन ब्रिजे बैजिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए पोंबोजे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM ओट रॉयल प्लेन दे रोज में 62 साल के 62-year-old श्री प्रभाकर बाचू जो लेखवा से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पद्मिनी बाचू के मकान ओट रॉयल प्लेन दे रोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लेन दे रोज की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM ओट रॉयल ला फ्लोरा में 71 साल की 71-year-old श्री बिसुन दत्त किस्तो मोहन जो धर्म किस्तो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनके मकान बल्कि इनके बेटे कमल किस्तो मोहन के मकान ओट रॉयल ला फ्लोरा से उठाकर दाह संस्कार के लिए घाव बुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM और कौन आबू त्याज में 88 साल की 88-year-old श्री लक्ष्मण महाबीर जो भाई लक्ष्मण से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे महेंद्र महाबीर के मकान कौलाबू त्याज से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही भुईले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: हाँ, क्या म्यूजिक है। अरे 7 बजने वाले।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
3: 103.5
2: ईस्ट वेस्ट
3: 96.4
2: सेंटर
3: 99.4
1: RM2
3: रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।
0: A super good morning time check. It's 7 a.m. and it's time for
3: Morning Beat.
1: James. RM2, Radio Musty in the mix.

0: Oh, thank God it's a Friday.
1: A good beat for your morning show. RM2.
2: Radio Musty.
0: और जी बैक इन द स्टूडियो और फुल ऑन मस्ती के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का स्वागत है। और फ्राइडे का दिन कितनी खुशी हो जाती है ना, लगता है आज फाइनली वो दिन आ गया जब दो दिन की छुट्टी मिलने वाली है। लेकिन अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, 7 से 9 यानी कि इट्स गोना बी मॉर्निंग वी टाइम। तो जहाँ पर फिल्मी अंदाज के अंदर मस्ती होने वाली, वहीं पर लेट मी टेल यू यहाँ पर है बहुत सारे गेम्स। ओह माय गॉड भाई, प्लैटिनम टिकट जीतने का मौका फॉर जुबिन नौटियाल आने वाले ऑन द 30th ऑफ मई यानी कि आज ही पहुंच जाएंगे। और वहीं पर वी हैव सो मेनी मोर गेम्स। और वहीं पर ये भी है कि हेलीकॉप्टर राइड आज किसके नाम होगी ये भी पता चलेगा इन रफ्तार वाइब्स। फ्राइडे फीवर राइड ये होने वाला है सब कुछ। वहीं पर शुरू शुरू में आपके लिए गेम हो जाए, नॉट टू फॉरगेट यू वर्ल्ड कप का जो एक्साइटमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है, तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन तैयार हो जाए क्योंकि शुरू शुरू में आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, जहाँ से सुना आपने एक क्वेश्चन सुबह सुबह जल्दी जल्दी फटाफट राइट आपके लिए यहाँ पर एक गेम है। और अगर आप जीते तो आपको मिल सकता है एक गिफ्ट वाउचर 2000 रुपीज का, 2000 रुपीज का। तो बस नंबर याद कर लीजिए 5499-1294। और यहाँ पर आपको बताना है कि वो क्या है जो घर में सबसे ज्यादा खो जाता है और मिलते ही मम्मी बोलती है यही तो था। बस सोचिए ऐसी बहुत सारी चीजें जो घर में अक्सर खो जाती हैं या जाते हैं या जाता है, क्या है वो, और फिर मम्मी कहती है यही तो था, देखते नहीं आंखें हैं कि बटन। अभी बटन मत दबाओ, फ्रीक्वेंसी पे टिक जाओ क्योंकि ये है मॉर्निंग बीट। लेडीज एंड जेंटलमैन आपको जीतने का मौका मिल सकता है और ये है एक फेरी बोट राइड। मैं डिटेल्स दूंगा थोड़ी देर में, यानी कि डिपार्चर होने वाला है ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से, वॉटरफॉल जाएंगे और वहीं पर बारबेक्यू लंच, ले शॉबो दो फेरी बोट आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे नाम। स्टे ट्यून्ड
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 Radio Musty in the mix.
0: जल्दी जल्दी फटाफट, यानी कि बारिश के मौसम के अंदर पानी में कूदना चाहते हैं बोट के साथ तो मौका है। अरे पार्टिसिपेट करोगी? अच्छा गाना तो अलग ही है, मुझसे शादी करोगी?

0: कितनी जल्दी मान जाती है ना, हीरो स्टाइल होना चाहिए, गाना वाना आना चाहिए, बॉलीवुड का सब कुछ हो जाता है। ठंडी ठंडी कूल कूल मॉर्निंग, और मॉर्निंग मॉर्निंग के अंदर थोड़ी सी भाग दौड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जीतने के सारे बहुत मौके हैं और हमारे साथ दौड़ते जाएंगे, भागते जाएंगे विद टाइम। सो कितने टाइम इज मनी, और भी जान लेते हैं कि लकी विनर कौन। बहुत सारे मैसेजेस आपसे पूछेगी वो क्या है जो अक्सर घर में खो जाता है, खो जाती है, और मम्मी कहती है यही तो था, देखा क्या तुमने। हाँ,
1: a good beat for your morning show RM2
2: radio musti।
0: राइट, बहुत सारे जवाब आए लेकिन सही जवाब देखे लकी विनर बन गए कौन। चलिए भी जान लेते हैं जल्दी जल्दी से। वैसे ही जवाब हो सकता है घर की चाबियां, गाड़ी की चाबियां, फिर रिमोट कंट्रोल, जो अक्सर इस कैटेगरी में आते हैं कि खो जाते हैं, नहीं होते वहीं कहीं हैं लेकिन फाइनली मिलते नहीं, और मम्मी आगे कहती है यही तो था। राइट, दैट्स करेक्ट आंसर, और यहां पर सही जवाब देकर लकी वनर बन गए हैं टीना रामदवा जो कि है फ्लोरियाल से। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने खेला एमबीसी के साथ और जीत लिया गिफ्ट वाउचर 2000 रुपीज का। कांग्रेचुलेशंस लुशाबों दो फेरी बोट की तरफ से, ऑफर्ड बाय एमजे इवेंट्स ऑफमैन, यानी कि पैकेज के अंदर इंक्लूड हुआ है डिपार्चर फ्रॉम ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट, वाटरफॉल जाएंगे वहां पर, और बारबेक्यू लंच। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हो 5503-4396। अरे मॉर्निंग मॉर्निंग में फ्राइडे के दिन, अरे सुबह सुबह ऐसी खबर मिल जाए, जी जाए तो चेहरा खिल जाता है। कांग्रेचुलेशंस, आपको बताएं कि जो वाउचर है आप तक पहुंचा दिया जाएगा बाय पोस्ट। मैं आपका होस्ट

अपने फोन के पास है क्योंकि आपको फोन मिलाना है। अभी एक गेम आने वाला है फार्मलैंड की तरफ से, इस गाने के बाद रखें याद, एक गिफ्ट हैम्पर कर रहा है आपका इंतजार। जल्दी जल्दी फटाफट

थैंक यू सो मच फॉर योर प्यार इश्क एंड मोहब्बत आरएन टू योर नंबर वन बॉलीवुड म्यूजिक पार्टनर. गेम का याद है ना?

0: तो मॉर्निंग में जो गाने चल जाते हैं मूड बन जाता है और साथ साथ में जीतने का मौका लगा दो चौका। राइट, अभी फार्मलैंड की तरफ से आपके यहाँ पर एक गेम आ गया है। आपको बताएं कि फार्मलैंड लेकर आता है इतना सब कुछ, इतना सब ज्यादा। एंजॉय, बहुत सारी चॉइसेस, फार्मलैंड मिल्क हो या फैमिली सीरियल या फिर हॉट चॉकलेट। अब सोचिए, आपको मिल सकता है एक एक्सक्लूसिव फार्मलैंड का मग जिसमें आप गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट एंजॉय कर सकते हैं ऐसे मौसम में। ओह, क्या मजा आएगा। नहीं, वहीं पर अगर सुबह भागा दौड़ी में अगर आपको एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो फार्मलैंड का फैमिली सीरियल और मिल्क पाउडर तो है ही कमाल का, क्रीमी एंड न्यूट्रिशियस। राइट, सो एक गिफ्ट हम पर आपको मिल सकता है। बस करना ये है कि मैं अभी आपके लिए एक प्रोमो चलाने वाला हूँ फार्मलैंड का ही, और उसमें तीन टैग लाइन्स हैं। उसका एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ हिंदी में। आपको उस प्रोमो में जैसा बोला जा रहा है वैसे ही बताना, मुझे फोन करके 402-8035 पर, 402-8035 पर। और बहुत आसान, और ज्यादा तैयारी, और ज्यादा स्वादिष्ट। तो ये तीन टैगलाइंस कौन सी है आपको बताना है प्रोमो सुनकर ऑन 402-8035। तैयार हैं तो लीजिए।
1: L'habitude qui jamais pousse en zé, mon tea time avec Farmland.
2: Ah ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
1: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
2: Où fais-moi faire?
1: Astérix Farmland Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
2: Astérix Farmland, nous gagnons encore beaucoup plus.
1: Farmland, ça même nous. Smart choice.
3: A good beat for your morning show.
4: Come on.
3: RM2
5: Radio Musty.
0: चलिए देखते हैं कि किसने हमें फोन मिला दिया और कौन हमसे बात करना चाहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग।
6: गुड मॉर्निंग।
0: काफी नींद, हाँ नींद आ रही है कि आप थोड़ा डर रही हैं?
6: नहीं नहीं, I'm fine.
0: Okay, that's very nice. और आपका पहले जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स बताइए।
6: Encore plus tamam, encore plus facile, encore plus simple.
0: नहीं, ये सही नहीं है। बहुत अच्छी कोशिश आपकी रही, क्योंकि अच्छा नाम बता दीजिए पहले, नाम क्या आपका?
6: अरुणा।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच कि आपने RM2 को चुना अरुणा, लेकिन ये सही नहीं निकला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर और बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं एक के बाद एक। चलिए किसी को लेते हैं, देखते हैं कि किसके पास है सही जवाब। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए आपका नाम।
7: मंजिता।
0: ऑलराइट मंजिता जी, बताइए आपकी टैगलाइंस क्या है? तीन टैगलाइंस हिंदी में आपको बता दिया मैंने। बताइए आपका जवाब क्या है?
7: प्लीज फासिल,
0: ओके,
7: प्लीज प्रिपरेशन, प्लीज गोमा, प्लीज सिंपल।
0: सब बोल दिया। लेकिन और को क्या बोलते हैं? और ज्यादा आसान, और ज्यादा प्रिपरेशन, और ज्यादा स्वादिष्ट। चलिए आपने कुछ कुछ तो पकड़ ही लिया। ऑलराइट, कहां से हैं आप?
7: प्लेन मायो से।
0: प्लेन मायो से, ऑलराइट, चलिए ठीक है। लेकिन आपने जो असली बात है वो नहीं पकड़ी, थोड़ा सा बहुत। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स दी थी हिंदी में, लेकिन वो नहीं निकला सही। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। देखते हैं अभी हमारे साथ कौन है। लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो,
8: गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आपका नाम?
8: हाँ, है।
0: अच्छा, जल्दी जल्दी बता दीजिए आपका जवाब क्या है। ओए होए, कंग्रेचुलेशंस, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही बता दिया, कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही कमाल। एंड कैसे आपने पहचान लिया ये तो अलग ही बात है, लेकिन फिर भी आपकी डिटेल्स में लेता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आपको बता दूं कि आपको मिलता क्या है। कांग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है गिफ्ट हैम्पर, नीड्स टू बी कलेक्टेड एट द एमबीसी। उसमें होगा फार्मलैंड का हॉट चॉकलेट, फार्मलैंड का फैमिली सीरियल, फार्मलैंड का मिल्क पाउडर और एक एक्सक्लूसिव मग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो डिलिशियस स्वीट्स हैं ना, ये अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, और ये है फार्मलैंड के प्रोडक्ट्स। कांग्रेचुलेशंस, आप लाइन पर रहिए, अपना नाम बताइए एक बार फिर से। रितिशा
8: फ्रॉम
0: मो दालबे। राइट, कंग्रेचुलेशंस, आपको आना होगा आईडी कार्ड के साथ, ये ले जाना होगा अपना हैम्पर। ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर से। चलिए आपसे हम डिटेल्स लेते हैं जल्दी जल्दी से। एंजॉय योरसेल्फ।
2: Attendez, madame Sheila. Il faut blen, nous gagnons beaucoup plus.

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती।
2: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu baignes de parfum? Tu l'auto aussi baignes de parfum? Tu sales des bains aussi baignes de parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandale à le kick? Et toi l'im sandale 24-7 toi?
3: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fait que t'es beau que celle-là.
2: À le kick gel air fresh no pocket size? Astier, me comprends. Tu mets air fraîcheur dans ton poste mon sport tout.
3: Vrai même tu bien comique toi. Hein? Allez essaye tout. Allo Kick, peine ce deuxième sans bosser.
4: Allo Kick, freshness anytime, anywhere.
5: Pour la fête des mères côte métrique, fais ou maman plaisir avec un joli moment de bien-être. Et n'a jusqu'à 50% réduction jusqu'au 7 juin dans tout bon showroom métrique pour Mama Deals. Metric, une enseigne du groupe Carinji.
0: RM2
1: Radio Musty.
6: Alright, morning, morning, good time. Friday ka din and getting on with the mood. Ye Bollywood ka style aapke liye. वहीं पर अगर आपका बर्थडे है सो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द RM2 टीम। लेकिन किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं, किसी से बात करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं लाइव ऑन एयर, सो जल्दी भेजिए उनकी डिटेल्स 5491294। लेट मी नो किसका बर्थडे है उनके नंबर के साथ, और यहाँ पर कैंडल जलाकर फूंक हम मार लेंगे, केक हम खा लेंगे उनके नाम पर। लेकिन हैप्पी बर्थडे पूरी टीम की तरफ से।

0: देखिए साहब, ऐसा है कि बहुत सारी बातें तो हमारी चलती रहती हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एंट्री मारना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है ना, अब फीवर उसका पकड़ रहा है, चल रहा है चारों ओर।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स,
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलिए एंट्री मारते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में और मिलते हैं अरविंद से, जानते हैं इस घंटे की स्पोर्ट्स अपडेट्स। अ वेरी गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द
6: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स

वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में केवल 13 दिन बाकी है। मेक्सिको में ओपनिंग सेरेमनी के लिए तैयारी जोर शोर से हो रही है, जहां पर नोहरा फतेही के साथ शकीरा परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही हैं। फुटबॉल में भी तैयारियां जारी हैं। अर्जेंटीना के स्क्वाड में लियोनेल मेसी को रखा गया है, कप्तान होगा और वो छठी बार के लिए वर्ल्ड कप में भाग लेगा, एक रिकॉर्ड है रोनाल्डो के साथ। यूरोपियन चैंपियंस लीग का फाइनल कल 8 बजे बुडापेस्ट के पुस्कास अरेना में खेला जाएगा। इंग्लैंड की चैंपियन टीम आर्सेनल के सामने होगा फ्रांस का चैंपियन, यूरोपियन चैंपियंस लीग का डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन। एमबीसी टीवी चैनल 11 पर इस मैच को आप लाइव देख पाएंगे। प्री मैच ओपनिंग शो में यूएस रॉक बैंड द किलर्स परफॉर्म करेंगे। पेरिस सेंट जर्मेन मोस्ट रूथलेस अटैक, जानलेवा घातक स्ट्राइक रेट और आर्सेनल का सॉलिड डिफेंस। आर्सेनल केवल 6 गोल कंसीड कर पाया है, जबकि 14 मैचों में पेरिस सेंट जर्मेन 22 गोल कंसीड कर पाया। ओप्टा सुपर कंप्यूटर के डाटा एनालिसिस के बाद पेरिस सेंट जर्मेन को चैंपियन बनने के चांसेस हैं 56%, आर्सेनल 44%, यानी 12% से ज्यादा। पर असली नतीजा मैदान में आएगा कल 8 बजे चैंपियंस लीग फाइनल, पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस आर्सेनल लाइव ऑन एमबीसी 11। मैनचेस्टर यूनाइटेड के परमानेंट कोच माइकल कारिक की पहली साइनिंग एक सेंट्रल डिफेंडर रहा हो

0: हो सकता है। अटलांटा से 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर एडिसन को लाने के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, एडवांस स्टेज पर है। बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड के प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड डेक्लन राइस के नाम उसके पीछे आए ब्रूनो फर्नांडेस और इगो चागो। ब्रेकथ्रू प्लेयर अवार्ड मैनचेस्टर सिटी के निको ओरेली को गया। मैनेजर ऑफ द सीजन माइकल आर्टेटा, टीम ऑफ द सीजन में राया टिम्बर, सालिबा, गैब्रियल ओरेली, राइस, फर्नांडेस, एंडरसन, चागो सेमेन्यो और इगो चागो को दिया गया। सेमेन्यो भी है इसमें। बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड उसके फुटबॉल एक्सपर्ट के वोट के आधार पर दिए जाते हैं। एंडी रॉबर्टसन के बाद टोटनहम हॉटस्पर और बोर्नमुथ के डिफेंडर मार्कोस सेनेसी के पीछे हैं, दोनों फ्री ट्रांसफर होंगे। इंटरनेशनल फ्रेंडली में कल इजिप्ट की टीम ने रशिया को 1-0 से हराया। इसमें मुस्तफा जीको का गोल रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की जीत हुई 1-0 से कतर के खिलाफ। यूईएफए अंडर 17 चैंपियनशिप में बेल्जियम 0 स्पेन 1 एस्टोनिया 1 क्रोएशिया 3। टेनिस फ्रेंच ओपन से वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिना बाहर हो गया। मैनुएल सिरिंडोलो ने सिना को हराया। यानिक सिना पहले 2 सेट जीत पाया, फिर सिना थक गया, कमजोरी महसूस हुई, डिजीनेस, वांटिंग टू वॉमिट, फिर बीच में मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा, फिर सिना बाकी 3 सेट हार गया। सिना एलिमिनेटेड, सिरिंडोलो जीत गया सिना के खिलाफ। अन्य मैचों में पारी सबालेंका, अनिमिसोवा, कोको गोफ, ओसाका, इन सभी खिलाड़ियों की जीत हुई। आज जोकोविच का मुकाबला फोनसेका से है। इगा श्वातेक खेलेगी लिनेट के खिलाफ, आंद्रीवा खेलेगी बुजकोवा के खिलाफ। क्रिकेट में आज आईपीएल 2026 के दूसरे फाइनलिस्ट का इंतजार है। मुकाबला है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। धुआंधार मैच होगा। आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सर स्कोर करने वाला वैभव सूर्यवंशी आज भी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। चंडीगढ़ के इस मैच में जो जीतेगा आईपीएल 2026 के फाइनल में। क्रिकेट में ही इंग्लैंड और इंडिया के बीच वुमेन्स टीम के बीच पहले T20 मैच में टीम इंडिया की लड़कियों की जीत हुई और जेमिना रोड्रिगेज, यष्टिका भाटिया के हाफ सेंचुरीज रहे। और बैडमिंटन में मॉरिशस का लुका डूस फ्रांस के इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत पाया। तो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। मिलेंगे फिर से 8:30 विद द वर्ल्ड कप मैगजीन, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द बेस्ट प्लेयर अवार्ड जो दिए जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप में। कैच यू देयर, टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती।
1: Please don't forget, क्योंकि RM2 की टीम जहां पर म्यूजिक साथ जुड़ी वहीं पर स्पोर्ट्स के साथ भी। इस वर्ल्ड कप स्पेशल होगा लगभग 8:30। Stay tuned and thank you so much Arvind for the sports updates.
2: Mega promo को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानी ते क्वार्ट्स, प्री कासे लो लावो, ला लिनिया मोडेन प्री सोक।

0: रेडियो मस्ती।
1: राइट, अभी हमारे साथ है कौन, चलिए जान लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच।
1: ओ माय गॉड, मैंने बड़ी कोशिश की। राइट, आपको कहेंगे कांग्रेचुलेशंस जाटेश्वरी जी, जिनको प्यार से नंदिता कहते हैं, इज इट?
2: हाँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई टॉक टू यू, बिकॉज़ मैं बचपन से आपको सुन रही हूँ।
1: बचपन से तो मेरी उम्र क्या होगी। ओह माय गॉड, लेकिन लेट मी टेल यू कि रागिनी जी ने यहाँ पर एक मैसेज भेजा और आपको विश करने के लिए बोला, बहुत ही स्पेशल। और मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सा बुद्धू बनाने के लिए, लेकिन आपने पहचान लिया एकदम से।
2: थैंक यू सो मच,
1: सो सो स्वीट ऑफ यू। सो लेट मी विश यू फ्रॉम द होल टीम हैप्पी हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस। एंड लेट मी टेल यू, आपने जीत लिया एक लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से ₹500 का गिफ्ट वाउचर। हैप्पी बर्थडे आपको, आना होगा एमबीसी दो दिन के अंदर।
2: और एक बात,
1: हाँ हाँ जल्दी जल्दी।
2: Wish my mom happy Mother's Day to
1: her. Hey, that's so nice. So congratulations आपको, आपकी मम्मी को, and आपकी morning में इतनी खुशी हम जोड़ पाए, that's so beautiful. Thank you so much for giving us a chance.
2: Thank you very much.
1: Nandita, happy birthday to you. Thank you so much.
2: Thank you.
1: All right, good day. ऐसा करते हैं कि आपके लिए भी कुछ स्पेशल हम चला ही लेते हैं, क्यों नहीं? माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
3: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई है। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगा कर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे, आरएम2 की पूरी टीम की तरफ से।

सब लोग इनके नमस्ते आज सपहर साढ़े तीन बजे से राष्ट्रीय सभा के बैठक लगावल जाए इकर दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन के स्थापना से जुड़ल विधेयक पर बहस जारी रखल जाए मंगर के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बहस के शुरुआत कर ले रहलन इकर बाद विपक्ष नेता जोली जोंगा अपन संबोधन देलन फिर श्रम मंत्री रेजा उतीम सांसद फ्रांसिस्को फ्रांसवा रोशन झमन जोआना बिरांजे रविराज बिचुक और इस्तेफानी औकेचिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर अपन विचार व्यक्त कर लें जा संवैधानिक सुधार के लेके दूसर वक्ता भी आज राष्ट्रीय सभा में अपन विचार प्रस्तुत करियन जा पुलिस द्वारा काल रात के सैंपियर में एगो निर्माण स्थल के भीरी एगो कार में एगो महिला के निष्क्रिय अवस्था में पाल गल सामूह के मौका पर बुलावल गल जिनकी महिला के मृत घोषित करलक स्थल पर प्राप्त जानकारी के अनुसार वही कार में एगो पुरुष भी रहल जेकरा ओकर परिजन लोग क्लिनिक ले जैलन जा जहां ओकरा भी मृत घोषित कर देवल गल घटना के सब तथ्य और परिस्थिति के पता लगाए खातिर पुलिस जांच जारी बा पोस्टमार्टम भी आज ही करल जाए पैनमान्यो के निवासी 44 बरिस के कुमार आनंद के काल कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ल कथित धोखाधड़ी के एगो मामला में गिरफ्तार करल गल बा FCC द्वारा पूछताछ के बाद ओकरा हिरासत में लेवल गल उनकर पर फ्यामला के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अस्थाई आरोप लगावल गल बा और आज उनकरा मेबर्ग जिला अदालत में पेश करल जाए आरोप बाते की संदिग्ध कईन जना से ये कह के पैसा ऐठले बा कि ऊ लोग के नौकरी दिलाए के और कनाडा भेजे में मदद करी ये धोखाधड़ी के राशि करीब 3.5 मिलियन रुपया के बतावल जाता ओकर घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त करल गल FCC दूसर संभावित लोग के आगे आय के अपील कर ले बाती लगभग 30 गो विदेशी नागरिक जेकर में मुख्य रूप से मरगास्कर और नेपाल के लोग हवन जा इस समय NGO पास्खेल के शेल्टर में हवन सा पुलिस के कॉम्बैटिंग और ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट के अनुसार ये लोग मानव तस्करी के शिकार हो सकें जा ये मामला में उन लोग के एम्प्लॉयर के खिलाफ जांच जारी बा एगो दुखद घटना फिर से एगो छिपल वास्तविकता के सामने अन्य बातें हाल ही में एगो गर्भवती युवती के मृत्यु जिकर पर अवैध गर्भपात कराए के शक बातें मॉरिशस में गैर कानूनी प्रथा के लिए की चिंता फिर से बढ़ा दे दे बा गौरतलब है कि 2012 में क्रिमिनल कोड के धारा 235 में

0: संशोधन के बाद मॉरिशस में गर्भपात खाली कुछ खास परिस्थिति में ही कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त है। फुटबॉल विश्व कप 11 जून और 19 जुलाई तक कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में लगावल जाए। वैंकूवर कनाडा में वैश्विक आयोजन खातिर चुनल गल लगभग 2000 स्वयंसेवी में से एगो मॉरिशन नागरिक नजीम जंगी भी शामिल हवन। वो फीफा के ब्रांड प्रोटेक्शन टीम के हिस्सा हवन। उनका जिम्मेदारी आधिकारिक प्रायोजक यानी स्पंसो के डिवेल गल व्यावसायिक विशेषाधिकार के सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, चाहे वो स्टेडियम के अंदर रहे या बाहर। 3 बरिस से अपन पत्नी और दुगो बेटी संगे कनाडा में रही होला नजीम जंगी बुल्लन की उ 6 महीना अक्ते फीफा में आवेदन कर ले रहलन। इ प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मॉरिशस के प्रतिनिधित्व करला पर उ गर्व जतैलन। करीब 25 बरिस से मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कर्टिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से और भी मजबूत होल बाते ऑस्ट्रेलिया के पर्फ स्थित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर हॉलिन हेन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनराम गुलाम से भेंट कर लें और उनका राकर्टिन यूनिवर्सिटी के कैंपस विस्तार के अवसर पर आयोजित पट अनावरण समारोह में आमंत्रित कर लें। दोनों पक्ष के बीच सहयोग के नवा अवसर पर भी चर्चा होल। प्रोफेसर हॉलिन के अनुसार कर्टिन यूनिवर्सिटी आज मॉरिशस में स्थापित सबसे बड़ा विदेशी यूनिवर्सिटी है और अफ्रीका में मौजूद एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी भी। दूसरे देश के समाचार में होमोज जलमार्ग के आसपास जारी तनाव, हमला और तीखी बयानबाजी के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित कूटनीतिक समझौता की खबर सामने आलबा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के वार्ताकार एगो ड्राफ्ट MOU पर सहमत होल हवन सा, जिकर तहत मौजूदा संघर्ष विराम के आगे बढ़ा के 60 दिन के वार्ता प्रक्रिया शुरू कर जाए। हालांकि ये प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लेके पड़ी। और पश्चिम एशिया में बढ़ल तनाव के बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा पट्टी के 70% हिस्सा पर सैन्य नियंत्रण हासिल करे की योजना की घोषणा कर ली हुन। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Hey, back with the music and 8:10 29th of May, Friday के दिन. Thank you so much. इतने सारे messages के लिए, इतने सारे games, इतनी सारी participation और जीतने के बहुत सारे मौके इस घंटे में भी हैं. Yes, it's all loaded. जहाँ पर होंगी कुछ World Cup के updates और वहीं पर कुछ games भी होने वाले हैं. वहीं पर कई लोग Friday के दिन थोड़े से special feel करते हैं. काम करते करते बीच में music सुनता है तो लगता है कि थोड़ा सा dance वांस कर ले और यही हो रहा है. Forest Side Boys, वहाँ पर एक टीम है जो कि बड़ी हैप्पी हैप्पी हो गई मॉर्निंग में. विनी, कामिनी और भामिनी. इज इट रेनी और इज इट सनी? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट गोना बी वेदर अपडेट. लेकिन आपके साइड पर मौसम बहुत ही खुशहाल है भाई, हो रहा है कमाल है. ऐसी बॉलीवुड की बीट्स को बजने दो और मूड को रगे रहने दो. इट्स ऑल हैपनिंग, कंटिन्यूस टिल 9.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ओनली टू विनर्स.
4: पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं. अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व उत्तर एवं सेंट्रल प्लाटू पर. दोपहर में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. इस बीच पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में बादल घिराएंगे कुछ घड़ी के लिए, घने बादल और जहाँ तहाँ बारिश होगी. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. हल्की और अस्थिर हवा चलेगी पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से. प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा. दक्षिण में लहरे 2.50 मीटर तक हो सकती हैं. दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है. आज के लिए सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musty.
5: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. La boîte de butter cookies d'Ancita à 129,95 € et le set de vaisselle à dîner de 24 pièces à 999,95 €. Pas oublier, ex-can to pay, gagne plus points Weave à tous les moments. Et papa, merci.
6: On est tous winners.
0: RM2
1: Radio Musty.

Yes, once again, a very good morning. Clock ने बोला 8 बज गए और Bollywood ने कहा picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. ठंडी सी मॉर्निंग, गरम सी चाय और फुल ऑन मस्ती के साथ हम आ गए आपके साथ. ऑफिस या फिर ट्रैफिक या ब्लैंकेट से नेगोशिएशन चल रही है. थोड़ा और, थोड़ा और. अरे वॉल्यूम भी बढ़ा लो थोड़ा और.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Avant le défi, de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
3: नहीं साहब, जिंदगी कुछ और नहीं, एक बॉलीवुड मूवी की तरह है। कभी एक्शन, कभी इमोशन और कभी कभी फुल ऑन कॉमेडी। हर सुबह एक नई स्क्रिप्ट

0: लेकर आती है और हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। इसलिए छोटी छोटी परेशानियों को इंटरवल समझिए, क्योंकि पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है और बॉलीवुड की फिल्मों में तो हैप्पी एंडिंग होती है। मुस्कुराहट को अपना स्टाइल बना लीजिए और पॉजिटिविटी को अपनी सोच, क्योंकि जो लोग दिल से हंसते हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस का सुपर हिट फॉर्मूला यूं ही चलता रहता है। जरूरी है आज मुस्कुराएं और दूसरों को भी हंसाएं, ये जो पॉजिटिविटी है ना चारों ओर फैलाते जाएं।
1: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il y a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Li pas une simple tasse, li un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2 Radio Musti.

तैयार हो जाए टू विन अ प्लैटिनम टिकट जुबिन नौटियाल। किसको मिलेगी? जल्दी जल्दी आपके जवाब, थोड़ी देर में क्वेश्चन।

0: अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग वॉइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जुबिन नौटियाल लाइव इन कॉन्सर्ट। चलिए डिटेल्स देते हैं थोड़ी देर में।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: देखिए साहब, पहले तो आपको बता दें कि जुबिन नौटियाल कॉन्सर्ट हो रहा है ऑन द 30th ऑफ मे, ये तो है ही है, और 8 बजे यानी कि कल। तो आज जो गेम खेलने वाला है उसको आज ही आना होगा, आज ही जल्दी जल्दी से अपनी टिकट कलेक्ट करने के लिए। सो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो देन यू पार्टिसिपेट। आपको बता दें गेम इज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड ticketbox.mu। आप जीत सकते हैं प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव इन कॉन्सर्ट। ये जो मैजिकल म्यूजिकल जर्नी है, ये जैसे मैं बताया कि 30th of May 2026 8 PM SUICC, एक अनफॉरगेटेबल इवनिंग होगी जुबिन नौटियाल के साथ उनके बहुत ही सुपर हिट गाने। जुबिन की बात करें तो

बहुत सारी उन्होंने एल्बम्स की हैं, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं, वहीं पर गिटार हो, पियानो हो, हारमोनियम, ड्रम्स, सब कुछ बजाते हैं और जो ब्लेंड करते हैं ना रोमांस, जो मेलोडी अपने गाने में लाते हैं स्टाइल में, ओए होए होए होए, अवार्ड पे अवार्ड, इंक्लूडिंग आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर राता लंबिया। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस और चार्ट टॉपिंग नंबर्स हैं। बस मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी टिकट्स बुक करना चाहते हैं, वेट मत कीजिए क्योंकि कल ही है, तो बस पहुंच जाइए www.ticketbox.mu पर और रिजर्वेशंस के लिए कॉल कर सकते हैं हॉटलाइन 214-6464। तो एक बार वैसे बता दूं कि अगर आज ही आप आकर अपनी कलेक्ट कर सकते हैं टिकट, देन यू प्ले दिस पर्टिकुलर गेम। आपके लिए क्वेश्चन यही है कि अभी जो अगला गाना मैं चलाने वाला हूँ वो कौन सी मूवी से लिया गया है, बस ये बता दीजिए। 5499-1294 पर आपके मैसेजेस। एक बहुत ही रीसेंट नंबर है, मूवी का नाम क्या है?

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: और ये गाने के साथ अजय देवगन और मृणाल ठाकुर आ गई आपकी आंखों के सामने. एंड वी टॉकिंग अबाउट सन ऑफ सरदार जू. बहुत ही आसान सा था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन थैंक यू सो मच. ये बन गए हैं लकी विनर. कौन है ये दृश्याना संधू जो कि थोड़े दो से कंग्रेचुलेशंस. मैं आपको बता दूं कि आपने ये प्लैटिनम टिकट तो जीत ली है फॉर जुबिन नौटियाल लाइव इन कॉन्सर्ट, लेकिन आज ही आकर आपको लेना होगा ये टिकट. नॉट टू फॉरगेट कल ही कॉन्सर्ट है, सो आज 2:30 से पहले आकर अपने आईडी कार्ड के साथ ये इनाम हो गया आपके नाम. कंग्रेचुलेशंस, आपने ज्वाइन कर लिया द मैजिकल म्यूजिकल जर्नी.

0: नहीं जो होगी कल एट SVICC बाय 8 PM जुबिन नौटियाल. द कॉन्सर्ट इज प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu. जा सकते हो www.ticketbox.mu. रिजर्वेशंस के लिए कॉल कर सकते हैं हॉटलाइन 214-6464. तो बस आपको एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस एंड लेट मी टेल यू द गेम वाज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड ticketbox.mu. एंजॉय योरसेल्फ सरप्राइजेस मैजिक एंड म्यूजिक ऑन RM2. एंजॉय योरसेल्फ.
1: वेलकम टू RM2. आता है मुझको प्यार में चल जाना.
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक.
3: चेक दिस आउट.
2: Radio Musti. Feel the Musti.
4: Nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
0: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 टीम्स, 104 मैचेस. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
0: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
0: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर. इसमें आज हम चर्चा करेंगे गोल्डन बॉल को लेकर. द ऑफिशियल अवार्ड प्रेजेंटेड टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ ईच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स. इसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था 1982 में. फीफा उस टॉप खिलाड़ी को अवार्ड देता है जो हमेशा यानी इस टूर्नामेंट के अंतर्गत अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. लियोनेल मेसी वो मात्र खिलाड़ी हैं जो दो बार ये अवार्ड जीत चुका है, 2014 और 2022 में. तो ऐसे में 2022 में कतार में ये लियोनेल मेसी को गया था. फिर 2018 रशिया में ये लुका मोड्रिच को दिया गया था, क्रोएशिया का खिलाड़ी. 2014 ब्राजील में लियोनेल मेसी ने ये अवार्ड जीता था अर्जेंटीना के साथ. फिर 2010 साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप में जेगो फोलान यूरुग्वे के खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया गया था. 2006 में जर्मनी में जिनेदीन जिदान फ्रांस के खिलाड़ी को. फिर 2002 में साउथ कोरिया जापान में वर्ल्ड कप, वहां पर ओलिविए कान को दिया गया था जर्मनी से. वो मात्र गोलकीपर हैं जिसको बेस्ट गोलकीपर अवार्ड के साथ साथ गोल्डन बॉल भी दिया गया था. 1998 फ्रांस में रोनाल्डो को, रोनाल्डो ब्राजील वाला रोनाल्डो,

0: दो, फिर 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स में रोमारियो को ब्राजील का रोमारियो, 1990 में इटली के साल्वाटोर स्किलाची को दिया गया था, 1986 में डिएगो माराडोना के नाम, 1982 में स्पेन के पाउलो रोसी को बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया था, और 1978 में मारियो कैम्पेस को ये अवार्ड मिला था। सो गोल्डन बॉल इस बार काफी दावेदार हैं, चाहे वो इंग्लैंड से हो, हैरी केन, क्यों नहीं, हैरी केन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लियोनेल मेसी तो है ही वहां पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हैं, फ्रांस में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, एम्बाप्पे खिलाड़ी, तो अभी कहना कौन गोल्डन बॉल जीतेगा मुश्किल होगा। वर्ल्ड कप को शुरू होने दीजिए, फिर देखेंगे किसको हम गोल्डन बॉल, हम नहीं बल्कि फीफा गोल्डन बॉल देता है।
1: भैया ज्यादा दिन नहीं जहां पर सारा एक्शन और यहां पर आपको मिलेगी सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच अरविंद इस स्पेशल वर्ल्ड कप के लिए।
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti. चल सारे दो घंटे कैसे निकले पता ही नहीं चला और अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. इट्स गोना बी योर मस्ट मॉर्निंग शो. और वहीं पर फ्राइडे की स्टार्टिंग कुछ अलग ही होती है जहां पर आपको पता होता है कि 5 दिन का काम अब मिलेगा, 2 दिन का आराम, तो मस्ती करेंगे सुबह से शाम. और ये जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है ना, वो बैटरी को चार्ज कर देती है. नहीं इतनी जल्दी, इतना तो हमारा चार्जर भी नहीं कर पाता अपने फोन को. और यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच. और कहते हैं कि एंजॉय द सॉन्ग्स और प्लीज़ हमारे लिए चला दीजिए. हमारा नाम कुनल है. जी हाँ, जरूर जरूर, आपके नाम. और वहीं पर कहते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग. बहुत सारे जवाब, बहुत सारे गेम्स मॉर्निंग मॉर्निंग के अंदर. वहीं पर स्नेहा को हैप्पी बर्थडे. और साथ ही में हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं गुजरात से. उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में ऐसे गाने सुनकर मूड बन गया और ऐसा लग रहा है जैसे ये तो भारत ही है. क्या बात है. तो बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं गुजरात से आए हुए. दिशान है, जयवीर है और गीत ओम सुनना चाहते हैं गाना. तो हमने कहा दिल को धड़काते हैं गाना चलाते हैं. क्या बात करो, अभी से डांस निकल गया. अभी तो शुरुआत है सर.

चल जाने का वक्त और थोड़ी देर में आ रही है पूनम लेकर रेट्रो और कुछ न्यू हिट्स. Enjoy your Friday, enjoy the vibes and enjoy the music. हम दोनों RM2.

0: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं।
1: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 9 बजे हैं। आई मिलते हैं करुणा लालू से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार करुणा।
2: नमस्कार वेदिता, सभी को नमस्कार। आज दोपहर 3:30 बजे से राष्ट्रीय सभा की बैठक लगाई जाएगी। इसके दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की स्थापना से जुड़े बिल पर बहस जारी रखी जाएगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बहस की शुरुआत की थी। पुलिस द्वारा कल रात सैंपिये में एक निर्माण स्थल के पास एक कार में एक महिला को निष्क्रिय अवस्था में पाया गया। स्वामी को मौके पर बुलाया गया, जिसने महिला को मृत घोषित किया। स्थल पर प्राप्त जानकारी के अनुसार उसी कार में एक पुरुष भी मौजूद था, जिसे उसके परिजनों द्वारा एक क्लिनिक ले जाया गया, जहां उसे भी मृत घोषित कर दिया गया। घटना के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच जारी हैं। पोस्टमार्टम आज के लिए निर्धारित हैं। प्लानमान्यो के निवासी 44 साल के कुमार आनंद को कल कनाडा इमिग्रेशन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। FCC द्वारा पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। उन पर फ्यामला के तहत मनी लॉन्डरिंग का अस्थाई आरोप लगाया गया है और आज उन्हें मेबर्ग जिला अदालत में पेश किया जा रहा है। आरोप है कि संदिग्ध ने कई लोगों से ये कहकर पैसे ऐंठने की कोशिश की थी कि वो उन्हें नौकरी दिलाने और कनाडा भेजने में मदद करेगा। इस धोखाधड़ी की राशि लगभग 3.5 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। उनके घर से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। FCC ने अन्य संभावित पीड़ितों से आगे आने की अपील की है। फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। वैंकूवर कनाडा में इस वैश्विक आयोजन के लिए चुने गए लगभग 2000 स्वयंसेवियों में से एक मॉरिशियन नागरिक नजीम जंगी भी शामिल हैं। वे फीफा की ब्रांच प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा होंगे। उनकी जिम्मेदारी आधिकारिक प्रायोजकों को दिए गए व्यावसायिक विशेषाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो या फिर बाहर। 3 वर्षों से अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ कनाडा में रह रहे नजीम जंगी ने बताया कि उन्होंने 6 महीने पहले ही फीफा में आवेदन किया था और इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने पर उन्हें गर्व है। और विदेश स्तर पर होमूज जलमार्ग के आसपास जारी तनाव और हमलों तथा तिखी बयानबाजी के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित कूटनीतिक समझौते की खबर सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों में वार्ताकार एक ड्राफ्ट MOU पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत मौजूदा संघर्ष विराम को आगे बढ़ाते हुए 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के धन्यवाद। नमस्कार।
3: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 9:08 हो चुके हैं और आज की सुबहाना थोड़ी सी फिल्मी लग रही है मुझे, क्योंकि मौसम बाहर थोड़ा सा कूल है और थोड़ी सी धूप। फुल ऑन मस्ती होगी और दिल बस चाहता है आज जल्दी जल्दी से काम शुरू हो और फिर शाम आए और काम खत्म हो जाए। तो बस इंजॉय कीजिए आपका ये प्रोग्राम। मुझे पता है कि आप कहीं शॉप खोल रहे होंगे, कहीं ऑफिस पहुँचने की तैयारी में होंगे, जल्दी में होंगे, ट्रैफिक में होंगे, पर जो भी है आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो, अपने चेहरे पर बस स्माइल रखिए, क्योंकि अगले 3 घंटे होने वाले हैं आपके सुपरहिट बॉलीवुड्स के नाम। और मैं हूं आपके साथ पूनम और ये है आपका मस्ती मॉर्निंग शो। एंजॉय कीजिए आपके गाने।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio.

0: मस्ती।
1: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: क्या बात है, यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाज में आप सुन रहे थे दो नैना। ये गाना बहुत ही मस्त है, मतलब सुपर रोमांटिक लगता है। अगर आपके भी जिंदगी में कोई गाना होता, बॉलीवुड बनाता, तो कौन सा बनाता, टाइटल क्या होता, कुछ आइडिया है? मुझे लगता है हम लोग मॉर्निंग में उठते ही बस ये कहते हैं, हाय थक गए, अभी पूरे दिन काम करना है, फिर थक जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन में आपको सिर्फ इंजॉय के साथ में सबको, दोस्तों को मैसेजेस करने हैं। पूछो उनसे भाई कुछ प्लानिंग कर सकते हैं सैटरडे और संडे की, क्योंकि सैटरडे संडे जब आता है ना तो फुल ऑन मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगला वीक पूरा आपने फिर से काम ही करना है। तो बस इंजॉय करते रहिए अपने गाने। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5491294 पर। और अगर किसी का बर्थडे है, किसी के लिए प्यारा सा गाना भेजना है या कोई स्पेशल मैसेज है तो मुझे भेजिए, मैं यहाँ पर हूँ। पूनम आपके साथ, इंजॉय कीजिए आप।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 9:29 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आप ही के मस्ती मॉर्निंग शो के साथ में और बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उनके भी मैसेजेस पढ़े जाएं। तो क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय लीना और विश कर रही हैं अपने भाई कृषि को और कह रही हैं कि हैप्पी बर्थडे भाई, हमेशा खुश

है और जैसा भी है तू मेरा ही भाई है, प्रशांत तो मुझे बहुत करता है पर क्या करूँ मैं तेरे बिना रह भी नहीं सकती। हाय स्वीट मैसेज। चलिए भाई इसके साथ में एक और हमारी लिसनर है, उनकी बेटी प्रियांशी का बर्थडे है और उनको भी विश कर रहे हैं उनके पूरा परिवार, उनकी मामा, उनका परिवार, हरलाल फैमिली। वो कह रहे हैं कि बस हमारी प्यारी सी बिटिया के लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाना और विश भी करना। पूरी एमबीसी टीम उनको विश करती है कि हमेशा खुश रहें, इंजॉय करें, पढ़ाई करें, अच्छे से बच्चे बने। फ्रांस से संगर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उसके साथ में फिया जी भी जुड़ी हुई हैं और जिया जी भी जुड़ी हुई हैं और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। बस आप ऐसे साथ साथ देते रहिए क्योंकि इंजॉय करने हैं आपको अपने गाने और साथ में घर के काम, और जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए भी हम ये कहेंगे बिल्कुल फुल एनर्जी लेकर जाइए कि जहाँ पर आपको टायर्डनेस ना हो, तो ये गाने आप सबके लिए, इंजॉय कीजिए। सलमान खान का एक गाना, अमर एंड अविनाश कह रहे हैं कि प्लीज़ कोई गाना सलमान खान के लिए चला दीजिए। भाई चलाते हैं आपकी पसंद का गाना हमारी तरफ से। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. I'm a Karina, kisi din aale pyaar, mundiya to bach ho gayi. Musty Morning Show. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

मोहब्बतों में जीने वाले खुशनसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां, जाने मन फासलों पे रहते हैं लेकिन

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए चलते हैं आपके मूड की तरफ और वो है इस समय आपको सिर्फ राशिफल जानना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि।
1: आज काम को लेकर आपका उत्साह अलग ही रहेगा। किसी चीज़ को टाल रहे थे जो बहुत टाइम से, उसे पूरे करने का मन करेगा। शाम तक कोई अच्छी बात मूड बेटर कर सकती है। लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज दिल अपने लोगों के लिए करीब रहना चाहेगा। फैमिली या पार्टनर के साथ स्वीट मोमेंट्स बन सकते हैं। आज केयर और कम्फर्ट्स दोनों महसूस होंगे। लकी कलर है क्रीम, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज बातें दिलचस्प रहेंगी और लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। कोई फनी मोमेंट्स आपका दिन बना सकता है। आज सोशल वाइब स्ट्रांग रहेगी। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने का मन करेगा। माइंड और पीस देने वाली चीज़ें अच्छी लगेंगी। आज धीरे चलना भी अच्छा फील कराएगा आपको। लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका कॉन्फिडेंस नोटिस होगा। काम या पर्सनल लाइफ में एप्रिसिएशन मिल सकता है। आज खुद को स्पेशल फील कराने का दिन है तो बस स्पेशल फील कराइए। लकी कलर है गोल्ड, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज छोटी मोटी चीज़ें परफेक्टली हैंडल हो पाएंगी आपसे। आपका प्रैक्टिकल जो अंदाज है ना, वो आज काम आएगा। आज काम खत्म करते ही आपको लगेगा हाय जल्दी अच्छा हो गया, काम खत्म हो गया। बहुत टाइम से जो काम आपके पेंडिंग थे आज खत्म होने चाहते होने वाले हैं। और लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन, लकी नंबर है 4।
2: लीब्रा तुला राशि।
1: आज रिश्तों में सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसी अपने से अच्छी बातचीत आपका दिल खुश कर सकती है। और आपका परिवार आज आपके अगर बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ तो वो भी करने वाले हैं। और इमोशनल आज आप बैलेंस होंगे और हैप्पी हैप्पी फील करेंगे। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज आपका फोकस स्ट्रांग रहेगा। कोई इंपॉर्टेंट काम आगे बढ़ सकता है। आज साइलेंस भी आपको पीस देगा। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज बाहर निकलने का, कुछ नया देखने का मूड करेगा। फन और लाफ्टर दिन आपका ब्राइट बनाएगा। बोरिंग रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक मिलने वाला है आपको। लकी कलर बनेगा ऑरेंज, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज काम में बहुत फायदे होने वाले हैं। आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। आज डिसिप्लिन आपको प्राउड फील कराएगा। और बहुत टाइम से आप डिसिप्लिन बने हुए हैं तो बस आज आपका दिन है। लकी कलर है ब्राउन, लकी नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज क्रिएटिव मूड बना रहेगा। कोई नया आइडिया एक्साइटेड कर देगा आपको। आज अलग सोच आपको सबसे अलग बनाएगी और सभी आपको कहेंगे क्या पहले क्यों नहीं सोचा तुमने ऐसा। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 11।
2: Pisces मीन राशि।
1: आज इमोशंस सॉफ्ट और ब्यूटीफुल रहेंगे। म्यूजिक या कोई स्पेशल दिल को टच करने वाली चीज़ आपके करीब आने वाली है। आज प्यार भरी बातें फील कराएगी या तो आपके परिवार के कोई सदस्य या कोई स्पेशल पर्सन। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 12। तो ये था आज का आपका राशिफल। इंजॉय कीजिए और साथ में जुड़े रहिए अपने गानों के साथ।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
0: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, मॉरिशस का खूबसूरत व्यू हो और ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड, और वो भी कपल राइड, क्या बात है। तो सुनिए, एमबीसी प्ले और मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार सा मौका। बस आपको करना क्या है, एक नया एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर पर। ध्यान रखिए दोस्तों, जो पुराना एप्लीकेशन उसमें है वो जून से बंद हो जाएगा, तो इसलिए आपको सिर्फ न्यू वर्जन ही डाउनलोड करना है। रजिस्टर करते ही आपके मोबाइल पे एमबीसी ओटीटी की तरफ से आपके नाम के साथ एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज आएगा, उसका स्क्रीनशॉट जो है आपको हमें भेजना है 5499124 पर, क्योंकि हम 18 से लेकर 28 तारीख यानी 18 to 28 मई से हम रोज़ ये आपके लिए कर रहे हैं एंट्रीज, क्योंकि जो लिसनर्स शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो शाम के प्रोग्राम जो कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रेडियो पर होता है, उस पर हम आपको एक कॉल जाएगा, जो जो भी फाइनल उसके अंदर जो उसमें

0: भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जितने भी जो होंगे कंटेस्टेंट्स, और उसमें फिर जब ग्रैंड फिनाले होगा 29 मई को, उसमें वो लकी लिसनर्स को हम जो है देंगे हेलीकॉप्टर राइड जो कि कपल के लिए होगा। तो देर मत कीजिए, आप भी डाउनलोड कीजिए एमबीसी प्ले 1.0 और हो सकता है अगली उड़ान आपकी हो और आपके पार्टनर के साथ में। बस इंजॉय कीजिए आपके गाने और हमारे साथ बने रहिए अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग में।
1: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans Région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, restez à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la sens, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec vous, partout. Pour plus d'informations, téléphone-le 400D 8000. Conditions applicables.
2: RM2 Radio Musty Feels a mistake.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक, सुबह के 10 बज रहे हैं। सुनते हैं करुणा से संक्षिप्त समाचार। करुणा, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम जी, सभी को नमस्कार। आज सुबह लगभग 5 बजे बेलवी हॉल के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है। कॉन्स्टांस में फ्लाक पुलिस को सड़क पर एक स्कूटर गिरा हुआ मिला। स्कूटर चालक लालमाटी के निवासी 23 वर्षीय भविष्य खुदी और 25 वर्षीय एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। दोनों को सनिरु जगन्नाथ अस्पताल ले जाया गया, जहां दुर्भाग्यवश भविष्य खुदी की मौत हो गई। ओकुले पुलिस एक संदिग्ध मौत के मामले की जांच कर रही है, जो संभावित हत्या हो सकती है। 51 वर्षीय बाबू राजपाल सिंह रशपाल, जो फ्लोरियाल पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे, ने कथित रूप से अपनी बेटी को बताया था कि मंगलवार दोपहर शिवानंदा एवेन्यू पर उन पर हमला हुआ था। अगले दिन दोपहर 1 बजे उनकी बेटी ने उन्हें क्यूपिप मेट्रो स्टेशन के बेंच पर अचेत अवस्था में पाया। अस्पताल ले जाने के बाद गुरुवार दोपहर बाबू राजपाल सिंह रशपाल की मृत्यु हो गई। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस जांच जारी है। आज तड़के कैप्रिस लेन में एक कार के अंदर 2 लोगों के शव पाए गए। ये कार 31 वर्षीय जॉन वालेरी नोविक सालेस की थी, जो सीते पातको कौचिमिलिटेर के निवासी थे। कार उनके निर्माणाधीन इमारत के पास खड़ी थी। दूसरी मृतक 24 वर्षीय मनीषा बुढ़ू नोवेल फ्रांस की निवासी थीं। दोनों ट्रिडेंट में एबेन में कार्यरत थे। पुलिस के अनुसार मनीषा बुढ़ू को सामी ने मौके पर ही मृत घोषित किया, जबकि जॉन वाल्की नोविक सालेस को उनके परिजन सिकेर क्लिनिक ले गए, जहां उनकी भी मृत्यु हुई। इस घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच जारी है। आज दोपहर 3:30 बजे से राष्ट्रीय सभा की बैठक लगाई जाएगी। इसके दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की स्थापना से जुड़े विधेयक पर बहस की जाएगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने बहस की शुरुआत की थी। और विदेशीय स्तर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण हासिल करने की घोषणा की है। ये पिछले साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम की शर्तों के विपरीत हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। आ नंबर 58 सिटी मोंगाल को फ्लोरियाल में 33 साल के 33-year-old श्री गियोम गोविंदन पर्यादिवन जो तो गियोम से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3:45 बजे इनकी बहन स्टेफानी डिंटू के मकान नंबर 58 सिटी मोंगाल को फ्लोरियाल से उठाकर पहले फ्लोरियाल का सेंट जॉन बॉस्को गिरजाघर ले जाया जाएगा। फिर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि। फ्यूनरल टुडे एट 3:15 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
5: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
6: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
5: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई है। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे RM2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:08 हो चुके हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं। ये बॉलीवुड जो है हर मोमेंट के लिए, हर टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए एक गाना बना देता है और हमें लगता है कि क्या बात है भाई, ये गाने तो हमारे लिए है, हमारी ही ज़िंदगी के ऊपर हैं। और यही सच बात है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को देखते हैं और उसी के ऊपर एक प्यारा सा गाना बना देते हैं। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय जना जी और वो भी बहुत खुश हो रही हैं क्योंकि उनके मस्ती का जो गाना है वो चल पड़ा। और विकास जी साथ में जुड़े हुए हैं, सूरज शर्मा, साजदा जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। श्याम टुल्लू जी कह रहे हैं कि प्लीज़ नेक्स्ट गाना मेरे लिए चलाइएगा, तो बिल्कुल आपके लिए चलाएंगे। अब्दुल सायरा बानू जी साथ जुड़ी हुई हैं, साधना जी भी साथ जुड़ी हैं, यलेश सूरी नाम से जुड़े हुए हैं, कमलेश रानी, अमित और हिना जी भी जुड़े हुए हैं इंडिया से और बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने गाने। और उसके साथ में ही विश कर रहे हैं 12th बर्थडे जो कि ट्विंस है दिव्यांशी जो कि रिनन आलन की है, डैरन श्वेता, रविश, प्रीशा, लुईश, अब्दू, पादू फैमिली उनको विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमेशा खुश रहो, ये ज़िंदगी बहुत ही प्यारी है, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भाई परिवार साथ में हो तो किस बात की टेंशन। तो बस हमारी टेंशन सिर्फ इतनी होती है कि आप इंजॉय करो आपके गाने और ये खूबसूरत मौका जो है ना, ये इसको बिल्कुल जाने मत दीजिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम आपके साथ थोड़े सा और इंजॉय करेंगे जुबिन नौटियाल के गाने।

0: गाने, क्योंकि जुबिन नौटियाल आने वाले हैं। तो ये गाना आप सबके लिए एंजॉय कीजिए, उसके साथ आते हैं हम फिर फटाफट से आपके पास। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
1: Musty Morning Show.
0: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दोस्तों 10:21 मिनट हो चुके हैं और आपने कभी सोचा है जुबिन नौटियाल की आवाज़ भी इतना सुकून क्यों महसूस होता है? शायद इसलिए क्योंकि वो उत्तराखंड से आते हैं, भारत से आते हैं, जहाँ पहाड़ है, वादियाँ हैं, झरने हैं और ताज़ी ठंडी हवा। और सच कहूँ ना, जहाँ जब वो मॉरिशस आएंगे तो शायद उन्हें खुद भी एहसास नहीं होगा कि वो कहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि उत्तराखंड की उनको याद आएगी ही नहीं, क्योंकि मॉरिशस भी हमारी किसी हेवन से कम नहीं है। यहाँ खूबसूरत समुंदर है, हरियाली है, नीला आसमान और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग उनका दिल से स्वागत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जब वो आएँ तो वो कहें और हमें जो कॉन्सर्ट देने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो और इन्जॉय कर सकें सभी जुबिन नौटियाल के गाने, क्योंकि जुबिन नौटियाल इस समय हमारे कहते हैं बॉलीवुड चार्ट में नंबर वन में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ कभी कभी वो बहुत ही मुँह बंद करके गाते हैं, बट कहते हैं कि वो फिर जब गाते हैं तो दिल से गाते हैं, तो यही बात होती है। तो चलो इन्जॉय करते हैं जुबिन नौटियाल का ये गाना।
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings.
4: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
1: RM2.
2: Radio Musti.
1: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
2: Musti Mornings. Radio Musti.
3: क्या बात है, इतने अच्छे गाने और उसके साथ में अगर एक टिप मिल जाए, फैशन टिप, तो बहुत बढ़िया लगता है भैया। ऐसे करने हैं, करना चाहिए हमको ज़िंदगी में कि जब कपड़े खरीदते वक्त सिर्फ ये मत देखें कि आप अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको ये देखना है कि आप जो कपड़ा खरीद रहे हैं उसको आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, कितनी बार पहन सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो खरीदना ठीक नहीं रहेगा ना। तो आपने जो खरीदा है, जो स्पेंड किया है अमाउंट, उसको आप, जैसे आपने एक शर्ट खरीदा या जैकेट खरीदा या किसी भी तरह की ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी, उसको 5 अलग अलग लुक बना सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह से किसी ड्रेस के साथ डाल सकते, कोई कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उसके कुछ मफलर्स डाल सकते हैं। तो जो होता है कि स्मार्ट फैशन इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इस तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हर बार एक कपड़ा खरीदते जाएँ, वो फैशन नहीं होता। फैशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने अगर सिर्फ हील्स चेंज कर ली, सैंडल चेंज कर दिया, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन ले लिया, उसके साथ में कुछ और डाल लिया, तो इसे कहते हैं स्पेशल फैशन इन्वेस्टमेंट। और फैशन सिर्फ खरीदना नहीं होता है, ये बस एक तरीके से डिफरेंट स्टाइल से पहनना होता है। तो ये बस एंजॉय कीजिए आपके गाने, ये है आपका मस्ती मॉर्निंग प्रोग्राम, एंजॉय कीजिए ये गाना।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: दस बजकर 45 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं मस्ती मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ। और ये प्रोग्राम आपके गानों को तो चलाता है और आपका मूड भी चेंज करता है। तो हमारे नॉर्मली ना हमारे हर फैमिली में एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद को बिल्कुल अमिताभ बच्चन समझता है और वो कहता है कि वो कौन होता है, अरे वो होते हैं पापा यानी कि डैडी। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं और बस पूछते हैं तेरा होमवर्क हुआ, उठ जा, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, ये देखो वो देखो, कल सुबह ये कर लेना वो कर लेना, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना पापा करते हैं। और मम्मी हमसे बस ये पूछती है बेटा खा लेना, कुछ बाहर से ले लेना, कुछ ये पैसे ले जाओ थोड़े से, तो ये चीज़ें मम्मा करती है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में होता है भैया, ऐसे प्यार और मोहब्बत जो होती है ना माँ बाप से मिलती है, तो इनको इन्जॉय करना चाहिए। उसके साथ में जैसे आप मैसेजेस भेजते हैं, जैसे कि आपने बताया है प्रिया ने, प्रिया कह रही हैं कि मेरी मम्मा बस हमेशा मुझे टोकती रहती हैं और बस ये बोलती है ये कर लो वो कर लो, ये प्यार है, जब तक हैं तब तक इन्जॉय कीजिए गानों के साथ में उनका प्यार मोहब्बत। और जो माँ होती है ना, माँ सबसे स्पेशल होती है, उनके दिल में बहुत प्यार होता है। तो ये है गाना आपके लिए प्रिया।
1: You're listening to Musti Mornings.
2: Musti Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musti.

0: FM2
1: Radio Musti Man Jubin Nautiyal Live

0: Mauritius on Saturday, 30th of May. At SVICC Pi, winner of the Best Singer Award of 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
4: अरे सुन सुन।
5: यस मां।
4: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
5: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
4: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musty.
0: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty.
0: Feel the musty.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। 29 मई फ्राइडे का दिन और आप सुन सकेंगे अब संक्षिप्त समाचार। करुणा से करुणा आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम जी, सभी को नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में सभी का स्वागत। आज सुपहर 3:30 बजे से राष्ट्रीय सभा की बैठक लगाई जाएगी। इसके दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की स्थापना से जुड़े बिल पर बहस जारी रखी जाएगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री

0: डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बहस की शुरुआत की थी। फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में आयोजित होगा। वैंकूवर कनाडा में इस वैश्विक आयोजन के लिए चुने गए लगभग 2000 स्वयंसेवकों में एक मॉरिश नागरिक नजीम जंगी भी शामिल हैं। वे फीफा की ब्रांड प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा हैं। उनकी जिम्मेदारी आधिकारिक प्रायोजकों को दिए गए व्यावसायिक विशेषाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो या फिर बाहर। आज सुबह लगभग 5 बजे बेलवी हॉल के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। फ्लाक पुलिस को सड़क पर एक स्कूटर गिरा हुआ मिला। स्कूटर चालक लालमाटी के निवासी 23 वर्षीय भविष्य खुडी और 25 वर्षीय एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। दोनों को साज अस्पताल ले जाया गया, जहां दुर्भाग्यवश भविष्य खुडी की मौत हो गई। पैनमानियों के निवासी 44 वर्षीय कुमार आनंद को कल कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। FCC द्वारा पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। उन पर फामिया के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का स्थायी आरोप लगाया गया है और आज उन्हें मेबक जिला अदालत में पेश किया जा रहा है। आरोप है कि संदिग्ध ने कई लोगों से ये कहकर पैसे ऐंठे कि वो उन्हें नौकरी दिलाने और कनाडा भेजने में मदद करेगा। इस धोखाधड़ी की राशि लगभग 3.5 मिलियन रुपए बताई गई है। आज तड़के कैप्रिस लेन में एक कार के अंदर 2 लोगों के शव पाए गए। ये कार 31 वर्षीय जॉन वाल्की नोविक सालेस की थी, जो सितेपात को कौचे मिलितिया के निवासी थे। कार उनकी निर्माणाधीन इमारत के पास खड़ी थी। दूसरे मृतक 24 वर्षीय मनीषा बड्डू नोवेल फ्रांस की निवासी थी। दोनों थ्रीडेंट इवन में कार्यरत थे। पुलिस के अनुसार मनीषा बुडू को सामियों ने मौके पर ही मृत घोषित किया, जबकि जॉन वाल्की नोविक सालेस को उनके परिजन सीकेआ क्लिनिक ले गए, जहां उनकी भी मृत्यु की पुष्टि हुई। इस घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के वास्ते पुलिस जांच जारी है। और विदेश में भारत में गुरुवार रात बेतवा नदी पर बन रहे एक पुल का एक हिस्सा ढह जाने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय ये मजदूर पुल के इसी हिस्से में सो रहे थे और मलबे में दबकर उनकी मौत हुई। ये घटना बारिश और आंधी तूफान के बीच हुई, जिससे निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। एविनी पिजों मोंटाई ब्लांच में 55 साल के 55-year-old श्री दर्शन हरिशरण जो संजीव से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे इनके मकान एविनी पिजों मोंटाई ब्लांच से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोंटाई ब्लांच की ही स्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे आते 3 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
3: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे RM2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: Welcome to RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है यार, रहमान की आवाज़ में और कुमार की आवाज़ में दिल परिंदा। हाय दिल परिंदा, ऐसे ही उड़ता चला जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कहीं भी बैठ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी चले जा सकते हैं। यही तो ज़िंदगी चाहिए हमको, पर क्या करें, ये ज़िंदगी हमको ऐसे बोलती कि नहीं नहीं काम करो काम करो, पर हम काम करते रहते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे गाने जो है ना बॉलीवुड में, जो कि अगर ऐसे ना बने होते तो हम अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्लेन कर पाते। कई लोग तो होते उनको तो पता ही नहीं चल पाता। शायद तभी पुराने ज़माने में ये मूवीज़ आई होंगी ट्रेंड में कि भाई इससे एटलीस्ट लोगों को अपनी फीलिंग्स तो बताने का कोई मौका मिला। तो चलिए ये बॉलीवुड हमारे को बहुत थैंक यू उनको कि उन्होंने हमारे को ऐसे ऐसे गाने दे दिए, हर फीलिंग्स हम शेयर कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे साथ राजन रघुपत जी जुड़े हुए हैं लंदन से, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि ये रेडियो मस्ती मुझे बहुत मस्त लगता है और मैं आराम से पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। साधना जी भी यही बात कह रही हैं, कह रही है मेरे पूरे घर में रेडियो मस्ती, हर कमरे में मैंने रेडियो रखा हुआ और वहाँ पर चलता रहता है। क्या बात है, क्या बात है। ज्योति जी जुड़ी हुई है और डी मधुप फैमिली को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है और सभी को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हैं। और साथ में विहान भी जुड़े हुए हैं इंडिया से और वो भी कह रहे हैं कि भैया सबको हैप्पी मदर्स डे। अगर आप

0: कि वहाँ पर मदर्स डे है, तो बस खुश रहो, इंजॉय करो अपनी मम्मा के साथ, ये प्यारा प्यारी जो जिंदगी है इसको ऐसे ही जाने दो. और ये है आपका ब्यूटीफुल सॉन्ग नेक्स्ट.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हाय रे बिजुरिया, और आहा आहा जो पीछे से निकल रहा था ना गाने के बाद, कहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लेडीज़ को होती हैं जब वो देखती हैं इतने सारे बर्तन सुबह धोने हैं। अरे ऐसा मत करो भाई, रात को ही धो लिया करो। और अगर आपको सुबह धोने भी है, देख थोड़ा छोटा सा टिप है कि आप एक काम करो कि गर्म गर्म पानी लो खौलता हुआ, और उसके अंदर आपने जो बर्तन है उसके ऊपर थोड़ा सा अपना जो भी लिक्विड है आप डाल दो, उसके ऊपर सारे के ऊपर अपना गर्म पानी डाल दो, उसके बाद 5-10 मिनट छोड़ दो, थोड़े से भीगने दो। जब आप वो थोड़े से भीगेंगे तो उसके बाद आराम से क्लीन होंगे। फिर भी थोड़ा सा लिक्विड ले लेना और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालना, और बस घिसते जाओ और देखना 5 मिनट में बर्तन धुल जाएंगे। ये जो टिप होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लेडीज़ ने बहुत सारे काम करने होते हैं, और इस काम में अगर कोई आदमी भी हेल्प कराना चाहे तो हम उसको मोस्ट वेलकम कहते हैं, क्योंकि आदमियों के बिना तो हमारा गुजारा नहीं। भाई आ जाओ, बर्तन धो लो, थोड़ा सा काम कर लो, हमारी कोई ज़िंदगी थोड़ी सी ठंडी और सुकून भरी हो जाएगी। तो चलो चलते हैं आपके प्यारे से गाने की तरफ।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:38 हो चुके हैं दोस्तों, और ये तीसरा घंटा चल रहा है हमारे साथ जो आप जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं और कॉल्स भी कर रहे हैं। बस बता रहे हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई भी छोटी मोटी टेंशन किसी को भी आए ना, तो ये जो मस्कारा है ना, लगा लो लेडीज़, और बस निकलो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, और बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम रखिएगा और चेहरे पर स्माइल ज़्यादा रखिएगा। ये तो लड़कों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी तो ऑफिस में या बहुत सारे जहाँ पर भी वो लोग काम करते हैं स्ट्रेस मिलता है, दूसरे दोस्त कुछ बोल जाते हैं और हमारा दिल टूट जाता है। बट दिल नहीं तोड़ने का, बस जोड़ के रखना। क्योंकि देखिए, आपने जैस्मिन सैंडलेस का जो ये उनकी ज़िंदगी है ना, उन्होंने बड़ी ही स्ट्रांगली बनाई है। बहुत 18 साल उन्होंने इतना काम किया है और उनके चेहरे पे, और जो आज उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है और जो उन्होंने गाने गाए हैं जित कॉन्फिडेंस से, भाई हमको भी ऐसी बनना है। तो इन्जॉय कीजिए आपका ये प्यारा सा गाना।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: RM2
1: Radio Musti Household and Decoration Tips brought to you by Lolo Hypermarket.
0: Welcome to RM2
1: Musti Mornings Radio Musti.
2: 11:47 हो चुके हैं. चलो भाई, एक हाउस होल्ड टिप जो हमारे को लुलु हाइपर की तरफ से है और हम चाहते हैं कि आपको भी पता चले. तो कई बार क्या होता है कि फ्रिज में सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, चाहे वो गर्मियां हों चाहे सर्दियां हों. फ्रिज में थोड़ा सा जब हम बहुत सारा सामान रख देते हैं तो फिर जल्दी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो आपको क्या करना है, पहले तो अच्छे से एक दिन लगा के अच्छा सा फ्रिज बिल्कुल साफ़ कर दीजिए. उसमें थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सोप से क्लीन कीजिए उसे. अगर आप अच्छे से धो देंगे और उसके बाद उसको अच्छे से सुखा दीजिए, मतलब सारे उसके ड्रॉर्स निकाल दीजिए. जब वो स्टोर पूरा सूख जाएगा फिर आपने जो सब्जियां लेनी है उनको धोना नहीं है, मतलब उनको क्या करना है, सिर्फ सुखा कर, मतलब अच्छे से कपड़े से उनको सुखाना है और स्टोर करना है. चाहे आप जिप ब्लॉक जिपर में डाल सकते हैं. उसके साथ में आपने जो अपनी जो शेल्फ्स हैं उसके नीचे कोई मैट्स नहीं लगाने. कई लोगों को बर्स होता है कि मैट्स लगा दो सुंदर लगे. फ्रिज पे मैट्स नहीं लगाना चाहिए. आपको सिर्फ टॉवल्स रख सकते हैं, जैसे कि पेपर टॉवल, जो कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है और उससे ज़्यादा जो सब्जियां हैं ज़्यादा चलती हैं और थोड़ी फ्रेश रहती हैं. और अगर आपको धनिया या पुदीना या गार्लिक या कुछ भी चीज़ आपको रखनी है तो आपको थोड़े से पेपर में फोल्ड करके रखनी है और फिर उसके अंदर जिप लॉक में डालनी है. और देखिएगा आपकी जो सब्जियां हैं महीना दो महीना भी चल सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हम बहुत सारी चीज़ें बना के रखते हैं और बस लगता है कच्ची कच्ची सब्जियां होती हैं और उससे हमारे को थोड़ा आराम से फ़ायदा हो जाए कि बस फटाफट से निकाला और फटाफट से बनाया. तो ये बस ये था कि आपको बस हम छोटा सा टिप दे रहे थे.
1: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
3: Allons chez Lolo. Chez Lolo, la vache qui rit, 24 portions, 336 grammes, 152,50 €. Basmati Garima Gold grade 11-21 de 5 kg, 338 €. Mother's Choice, margarine de 500 grammes, 95,95 €.
4: Lolo Hypermarché.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:57 हो चुके हैं दोस्तों, और आज की मस्ती यहीं तक। उम्मीद है गानों ने आपका साथ जरूर दिया होगा, काम भी थोड़ा सा आसान किया होगा और चेहरे पर मुस्कान भी लाई होगी। जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खुद का ख्याल रखते रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे RM2 रेडियो मस्ती पे बहुत सारे ढेर सारे सुपरहिट गानों के साथ। मेरे बाद आने वाली है नीलमणि आपके साथ रेट्रो रिदम के साथ प्रोग्राम। उससे पहले आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, तब तक इन्जॉय कीजिए ये लास्ट सॉन्ग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।
1: RM2 Radio Musty.
0: Hit music only.
3: Radio Musty feels a musty.

0: RM2 Radio Mystery.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे करुणा जी नमस्कार।
6: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। आज तड़के सहपिया में एक त्रासदी का पता चला। कैप्रिस लेन में एक कार के अंदर दो लोगों को मरा हुआ पाया गया। 31 वर्षीय जॉन वालेरी नोविच साले

0: स्कॉच अमेरिका के निवासी थे और 24 वर्षीय मनीषा बडू नोवेल फ्रांस की दोनों इबन में कार्यरत थे। सामियों ने मनीषा बडू को मौके पर मृत घोषित किया, जबकि जॉन वाल्गिनोविच सालेस को क्लिनिक ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर ओकुले की पुलिस क्यूपिप में एक संदिग्ध मौत पर जांच कर रही है। मृतक की बेटी के अनुसार 51 वर्षीय बाबू राजपाल सिंह रशपाल, जो फ्लोरियाल पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे, ने उनसे कहा था कि मंगलवार दोपहर को शिवानंदा एवेन्यू पर उन पर हमला किया गया था। अगले दिन करीब 1 बजे उनकी बेटी ने उन्हें क्यूपिप मेट्रो स्टेशन की बेंच पर अचेत अवस्था में पाया। अस्पताल ले जाने के बाद गुरुवार दोपहर बाबू राजपाल सिंह रशपाल की मृत्यु हो गई। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस जांच जारी है। देश के पूर्वी प्रांत कॉन्स्टांस में आज सुबह लगभग 5 बजे बेलवी हॉल के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। पुलिस को सड़क पर एक स्कूटर गिरा हुआ मिला। चालक लाल माटी के निवासी 23 वर्षीय भवेश खुडी और 25 वर्षीय एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। दोनों को साज अस्पताल ले जाया गया जहां दुर्भाग्यवश भवेश खुडी की मौत हो गई। आज दोपहर 3:30 बजे से राष्ट्रीय सभा की बैठक लगाई जाएगी। इसके दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की स्थापना से जुड़े विधेयक पर बहस जारी रखी जाएगी। याद रहे कि मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने बहस की शुरुआत की थी। और विदेशी स्तर पर होमोज जलमार्ग के आसपास जारी तनाव, हमलों और तीखी बयानबाजी के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित कूटनीतिक समझौते की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों देशों के वार्ताकार एक ड्राफ्ट MOU पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत मौजूदा संघर्ष विराम को आगे बढ़ाते हुए 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। इसके साथ समाचार समाप्त है। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। एवेन्यू पिजों मोंटाइन ब्लांश में 55 साल के 55-year-old श्री दर्शन होरीसरन, जो संजीव से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे इनके मकान एवेन्यू पिजों मोंटाइन ब्लांश से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोंटाइन ब्लांश की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। बेंटा नंबर 2 वाकवा में 63 साल के 63-year-old श्री घनश्याम जिया जी जो सुदेश से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान बेंटा नंबर 2 वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए बालों सुल्फेगिनो नंबर 5 की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। और गालिया नंबर 2 कास्टेल फिनिक्स में 81 साल के 81-year-old श्री विद्यानंद रामसुंदर जो विनोद से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान गालिया नंबर 2 कास्टेल फिनिक्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए ठुआमामेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2. Red.

0: Retro Rhythm.
1: हाय 90s का प्यार भी कितना कितना इनोसेंट था ना. नो टेक्स्टिंग, नो ब्लू टिक्स, बस एक ही नजर और दिल से दिल तक का कनेक्शन. और जब भी हम फर्स्ट लव की बात करते हैं ना, ये गाना ऑटोमेटिकली चलने लगता है दिल में. पहला नशा पहला खुमार, मूवी जो जीता वही सिकंदर. गाना तो बन गया डेफिनेशन टीनेज रोमांस का. एंड फन फैक्ट बताऊं, ये पूरा गाना इट वाज शॉट इन स्लो मोशन उस ड्रीमी फीलिंग को क्रिएट करने के लिए. एंड ऑनेस्टली आज भी ये हमें बटरफ्लाइज देती है. तो अगर अभी आप रिलैक्स कर रहे हो गाड़ी में ब्रेक टाइम पर, आंखें बंद कीजिए, शायद किसी की मेमोरी इस मेलोडी में तो नहीं.
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Retro Rhythm.
1: मस्ती भरा है समा क्योंकि आप

0: आपने ज्वाइन कर लिया है अपने रेट्रो रिदम के सफर को। यस, 2 बजे तक निलमनी यही पर है आपको अकंपनी करने के लिए, चाहे अभी आप लंच टाइम पर हो या फिर ड्राइव करके वापस जा रहे हो ऑफिस, या फिर ऑफिस लेकर घूमने जा रहे हो, या घुमाने लेके जा रहे हो अपनी प्यारी मम्मा को। आरएमजे रेडियो गॉट यू कवर्ड, सब कुछ सुनाएंगे, टाइमलेस हिट्स, मस्ती भरा। वी हैव सुरेखा जी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जना जी, अनसुया, करिश्मा, शीला जी भी है, तो यहीं पर जुड़े रहिए और गोल्डन हिट्स लेकर आएंगे आपके लिए आरएमजे रेडियो मस्ती पर ही।
1: वेलकम वेलकम टू आरएमजे रेडियो मस्ती।
2: Radio Musty.
3: Hits, music only.
2: Feels a Musty.

0: Retro Rhythm. Yes, it's your retro rhythm का सफर और कुछ गाने एज नहीं करते, forever young रहते हैं और हील करते हैं लोगों को। हमें तुमसे प्यार कितना, वो one of the rare melodies होते हैं जो strongest से भी strongest दिल को छू लेती है। तो अगर आप कनेक्टेड हुए हैं तो आप भी रेडी हो जाइए अपने दिल को टच करवाने के लिए यही रेट्रो रिदम के सफर पर आरम चू रेडियो मस्ती पर।
1: RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएम2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: रेडियो मस्ती
1: यार सभी चलते हैं स्टूडियो के बाहर गिनिशा से मुलाकात करने के लिए। गुड आफ्टरनून गिनिशा। शायद गिनिशा करंटली इस वक्त नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम उसे बाद मिलेंगे। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं रेट्रो रिदम का सिलसिला।
2: रेट्रो रिदम
3: RM2 रेडियो।

0: Radio Musti.
1: And yes, we have Ginisha online. Good afternoon.
2: Good afternoon to you, Nilmani. Good afternoon to everyone who's tuned to RM2 Radio Masi. हाँ जी, आप सभी लोगों का हम स्वागत करना चाहेंगे क्योंकि आज हम मना रहे हैं स्पेशल मदर्स डे. नॉट ओनली मदर्स डे, क्योंकि फादर्स डे भी मनाया जाता है साथ में. मम्मी और पापा दोनों साथ में ही मिलते हैं. सो सबसे पहले हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे. यस, फिलहाल के लिए द एंटायर टीम जो है, मैं हूँ नीतूषा, है वी हैव उषा, डीजे बाकी लैंड, बहुत सारे लोग जो है वी आर राइट नाउ एट रियो बेल रिक्रिएशनल सेंटर. यहाँ पे क्या There's a special Mother's Day celebration. जी हाँ निर्मनी, you won't believe it. इतने प्यारे प्यारे हमारे जो aunties and uncles हैं ना, they are so happy to celebrate this Mother's Day special हमारे साथ. और बाकी जो हमारे listeners हैं, अगर आप इस कार्यक्रम को live सुनना पसंद करोगे, so why not just listen to us on RM3 Radio Manoranjan. आपको बता दें कि यहाँ पे we have so many activities going on. We have so many gifts to give away क्योंकि Mother's Day है. Of course, मम्मियों को तो प्यार जब हम बांटते हैं on Mother's Day तो gift भी देना है. माँ के बिना हमारे जीवन एकदम अधूरा सा है. माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और पापा भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है. इसलिए चलो देखा जाए तो जिंदगी एक्चुअली रोज की जिंदगी में हम रोज सेलिब्रेट करते हैं मदर्स एंड फादर्स को, लेकिन एक खास दिन होता है उनके लिए, और ये खास दिन है आज मना रहे हैं एट रियो बेल रिक्रिएशनल सेंटर. तो चलिए, यू कैन फॉलो अस एज वेल ऑन आवर फेसबुक पेजेस, ऑन आवर टिकटॉक पेजेस, जहाँ पे वी आर लाइव एंड वी आर गिविंग यू सम अपडेट्स कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. ये लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ. खाना भी खा लिया, लंच भी हो गया. उन सारे जो हमारे लेडीज हैं, जो हमारे अंकल्स आए हुए हैं, उन सब के साथ, दे आर फ्रॉम मेनियल सीनियर सिटीजन ग्रुप एंड काउंट डुमास कपावे सिटीजन ग्रुप. तो सीनियर सिटीजन आए हैं यहाँ पे हमारे साथ एंजॉय करने के लिए. तो आप बस हमारे साथ स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड ऑन ऑल एंड टू रेडियो मस्ती. विल बी गिविंग यू सम मोर अपडेट्स एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि निर्मनी इज प्लेइंग लवली गाने फॉर यू. सो डू एंजॉय हर प्लेलिस्ट एंड हैप्पी मदर्स एंड फादर्स डे टू एवरीवन.
1: थैंक यू गिनीशा. तो वापस चलते हैं गोल्डन हिट्स की दुनिया में.
3: Retro Rhythm.
4: RM2. Radio Musti. Radio Musti.

0: RM2 Radio Mustin.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2 Radio Mustin.
3: It's 1 p.m. चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता। नमस्कार।
4: नमस्कार निर्मनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले स्थानीय खबरों के साथ शुरू करते हैं। पूर्वी क्षेत्र कोंस्टांस में आज शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। सुबह करीब 5 बजे फ्लाक पुलिस को रॉयल रोड बेलवी हॉल पर हुए हादसे के संदर्भ में बुलाया गया, जहां एक स्कूटर सड़क पर गिरा हुआ मिला। स्कूटर चालक लालमाटी का रहने वाला 23 वर्षीय भविष्य कुदी और एक अन्य 25 वर्षीय यात्री दोनों सड़क पर घायल अवस्था में पाए गए। मौके पर पहुंची राहत टीम ने दोनों को साच अस्पताल पहुंचाया। हालांकि भविष्य कुदी ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। सर्बिया में आज शुक्रवार तड़के एक दूसरा दर्दनाक हादसा पेश आया। कैप्रिसलेन में सीते पद को कौचमितिया के 31 वर्षीय जॉन वालेरी नोविक सालेस और मुसलमान एसआईटी नोवेल फ्रांस की 24 वर्षीय मनीषा बुदू की लाश मिली। वे दोनों एक गाड़ी में एक घर के निर्माण स्थल पर थे। दोनों एबेन स्थित ट्रिडेंट कंपनी में काम करते थे। पुलिस के अनुसार मनीषा बुदू को मौके पर ही सामी की टीम ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जॉन वालेरी नोविक सालेस को उनके परिजन सी के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पुलिस जाँच जारी है। और क्यूपिक में एक

0: एकदम मौत का मामला सामने आया है। उखुली पुलिस एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसे संभावित हत्या के रूप में देखा जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फ्लोरियाल पुलिस स्टेशन में तैनात बाबू राजपाल सिंह राजपाल ने मंगलवार दोपहर अपनी बेटी को बताया था कि शिवानंदा एवेन्यू क्यूपिप में उन पर हमला किया गया। अगले दिन करीब 1 बजे उनकी बेटी ने उन्हें क्यूपिप मेट्रो स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे हुए पाया। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचा गया। 51 वर्षीय इस व्यक्ति की गुरुवार दोपहर मौत हो गई। ऑटोप्सी की जांच आज शुक्रवार की जाएगी, जिससे मौत के कारण का पता लगाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। इटली ने राजधानी रोम में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि फ्रांस और पुर्तगाल में मई महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। पुर्तगाल के मोरो शहर में तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने साल 2001 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये भीषण गर्मी जून की शुरुआत तक जारी रह सकती है। ये हीटवेव हीट डोम के कारण पैदा हुई है, जिसमें गर्म हवा पश्चिमी यूरोप के ऊपर फंस जाती है। इस भीषण गर्मी के चलते ब्रिटेन और फ्रांस में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें डूबने और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मामले शामिल हैं। इटली में रोम, फ्लोरेंस, बोलोग्रा, ब्रेशिया और ट्यूरिन जैसे शहरों में लोगों को सीधे धूप से बचने की सलाह दी गई है। फ्रांस में कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। कुछ स्कूलों में तापमान इतना बढ़ गया है कि छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद स्कूल बंद करनी पड़ी। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, और एक खिलाड़ी लंबे मुकाबले के बाद कोर्ट पर गिर गया। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ में बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू पिजों मोंटाइन ब्लांश में 55 साल के 55 इयर्स ओल्ड के श्री दर्शन ओरिसोरन जिन्हें संजीव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज उनके घर मोंटाइन ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 3 बजे वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टू डिया 3 PM। वैता नंबर दो वाकवा में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री घनश्याम जिया जी जिन्हें सुदेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सोल्फिनो नंबर 5 की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉबिन्सन नंबर एक फिनिक्स में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड की जनाब सारिफ मोहम्मद बुधू जिन्हें बाय सारिफ के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज शाम 3:30 बजे इनके बेटे तौसीफ बुधू के मकान फिनिक्स से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। गालिया नंबर दो कास्टेल फिनिक्स में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री विद्यानंद राम सुंदर जिन्हें विनोद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर कास्टेल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: अरे नहीं जी, हम आएंगे बार बार आपसे प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, शेयर करने के लिए कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स है। गुड आफ्टरनून, आपका फिर से बड़ा सा वेलकम है। आप बस आरएम जो रेडियो मस्ती के साथ ही वाइब करते रहिए, दो बजे तक नीलमनी यही पर है टाइमलेस यट अमेजिंग गानों के साथ। तो चलिए फिर से सैर करते हैं उसी दुनिया में।
2: Radio Musty feels a musty.

0: रेट्रो रिदम। एक बज के 24 मिनट हुए हैं, आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। और सच कहूँ तो एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन ही नहीं, एक इमोशन है, जज्बात है यार। जैसे बॉलीवुड मूवीज में हीरो हर मुश्किल क्रॉस करके अपनी मंजिल तक पहुँचता है, वैसे ही माउंट एवरेस्ट हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कोई भी पीक ऊंचाई इम्पॉसिबल नहीं होती है। मूवीज जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो सिखाते हैं हमें टू लिव फियरलेसली, एंड लक्ष्य हमें रिमाइंड करता है हमारी पर्पज़ को ढूंढने के लिए। एंड एवरेस्ट एक परफेक्ट सिम्बल होता है ड्रीम्स, करेज और नेवर गिविंग अप का। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माउंट एवरेस्ट का नाम सुनते ही एडवेंचर वाली वाइब्स आती है, लेकिन क्लाइंबिंग इट वो लेते हैं इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, सैक्रिफाइस और प्योर डिटर्मिनेशन। तो आज शायद आपका माउंट एवरेस्ट वो माउंटेन नहीं, शायद आपका करियर हो सकता है, आपकी हीलिंग, आपके सपने, या फिर सिंपली सर्वाइविंग डिफिकल्ट डेज। बस याद रखिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कीप क्लाइंबिंग, कीप बिलीविंग विद यू RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: ये सभी कितने सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स कनेक्टेड हो चुके हैं हमारे साथ। सब मैसेज आया है गाने के रिक्वेस्ट, अंजलि लक्ष्मी ट्रियोले से वो गाना मांग रहे हैं अंजलि के लिए। एंड वी हैव विश्वानी धुमन जी वाकवा से, अभी वो शॉपिंग कर रही है और बढ़िया बढ़िया गीत सुन रहे हैं आरएम टू रेडियो मस्ती की तरफ से। और वो आज विश करना चाहते हैं हैप्पी मदर्स डे अपनी मम्मा को, और थैंक यू बोलना चाहते हैं उनके सभी चीजों के लिए जो उन्होंने किया उनके लिए। एंड वी आल्सो हैव अब्दुल एंड सायरा बानो जी, गुड आफ्टरनून विश कर रहे हैं आप सभी को। वी हैव संगर जी फ्रांस से, एंड वी हैव जना जी बोल रही है फ्लैग से, और वो गाना मांग रही है अपनी बेटी रीमा जेनिता शेष थानशिनी सिल्विया यूवी कृषि शिव शरण फैमिली फ्लैग से। वी हैव ललिता जितन जी, वो लंच टाइम पर है, वो गाने सुन रही है माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम बोल रही है। एंड वी ऑल्सो हैव अनिता जी फ्लैग से, वो हैप्पी बर्थडे विश कर रही है अपनी नीस करिश्मा नेफ्यू अविश को, एंड विशेज पूरी फैमिली की तरफ से। और वो बोल रही है कि उनका भी फेवरेट गाना हमने चला लिया है। एंड यस, आपके लिए गाना चलाते रहेंगे आरएम टू रेडियो मस्ती पर, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं।
2: RM2 Radio Musti
3: Hit music only
4: Radio Musti feels a musti।

0: रेट्रो रिदम।
1: ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू से बाय, लेकिन जाने से पहले कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी मैसेज मिस ना हो। बेल्जियम से वी हैव समवन कनेक्टेड विद अस, मांग रहे हैं गाना। पेरिस से वी हैव देव साहब, गुड आफ्टरनून। एंड लास्ट मैसेज है डेडिकेटिंग अ सॉन्ग फॉर माय वाइफ, जो है आपकी लाइफ। तो इसी आखिरी गाने के साथ मैं नीलमणि आपसे अलविदा लेती हूँ। होप यू हैव अ ग्रेट आफ्टरनून विद योर आरएम2 रेडियो मस्ती।
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hits, music only.
3: Feels a musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: Time check 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें अशिता से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार प्रिय श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. राष्ट्रीय सभा के कार्य आज शुक्रवार दोपहर 3:30 फिर शुरू होगी. सत्र की शुरुआत विपक्ष के नेता की ओर से पूछे जाने वाले प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन यानी PNQ से होगी. ये प्रश्न रेजिडेंशियल केयर इंस्टीट्यूशंस और नाबालिगों के आश्रय गृहों से जुड़ा होगा. ये PNQ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर व जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री आर्यन नवमारी से संबोधित होगा. विपक्ष के नेता जोली जोगाद मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनकी क्षमता उपयोग दर सहित कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगेंगे. वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस भी आज दोपहर दोबारा शुरू होगी. मॉरिशस के उत्तरी क्षेत्र ओंसलागे में एटीट्यूड ग्रुप ने कल शुक्रवार को एकोलो नामक का एक अनोखा तैरता समुद्री शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया. लॉन्चिंग शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद, पर्यटन के उप मंत्री सिडनी पियर, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों और एटीट्यूड ग्रुप के संस्थापक जॉन मिशेल पीटू की उपस्थिति में हुआ. ये परियोजना एक परिवर्तित कतामारों है जिसका उद्देश्य लोगों को समुद्र के और करीब लाना है. इसमें विज्ञान, समुद्री जीवन की खोज और स्नोकलिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी. ये पहल न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि मॉरिशस के नागरिकों और स्कूलों के लिए भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन सीमा के करीब

0: पूर्व स्थित रोमानिया के गलाटी शहर में एक रूसी ड्रोन रिहायशी इमारत से टकरा गया। रोमानिया की रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हादसे में दो लोग घायल हुए हैं। इंस्पेक्टोरेट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस ने बताया कि ड्रोन का पूरा विस्फोट पेलोड फट गया, जिससे इमारत की 10वीं मंजिल पर आग लग गई। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक आग बुझाने के दौरान करीब 70 लोगों की इमारत से उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। और दूसरी ओर यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। इटली ने राजधानी रोम में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि फ्रांस और पुर्तगाल में मई महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। पुर्तगाल के मोरो शहर में तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने साल 2001 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये भीषण गर्मी जून की शुरुआत तक जारी रह सकती है। फ्रांस में कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। कुछ स्कूलों में तापमान इतना बढ़ गया है कि छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद स्कूल बंद करने पड़े। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, और एक खिलाड़ी लंबे मुकाबले के बाद कोर्ट पर गिर पड़ा। जलवायु वैज्ञानिकों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों का कहना है कि ये असामान्य और समय से पहले आई हीट वेव जलवायु परिवर्तन का एक और बड़ा संकेत है, जो यूरोप में चरम मौसम की घटनाओं को और अधिक गंभीर बना रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: दुम दुम।
1: ये कौन आ गया स्टूडियो में, ये कौन आ गया?
0: खाली मैं नहीं, मैं साथ में लेकर आया हूँ अपनी बोरी नहीं जो बोर हो रही, सॉरी बोर हो रही,
1: बोरी, ये तो
0: मजाक था। हाय गुड मॉर्निंग के बाद गुड आफ्टरनून दोस्त के साथ मिनट, और हम साथ साथ है, खाली मैं नहीं साथ में है वेदिता। हेलो,
2: हाय विकास, हेलो परी,
1: हेलो हेलो जी। आज हमारा स्टूडियो इतना भरा भरा है, और इतना भरा भरा क्यों है?
0: इसलिए क्योंकि एक आपको बात बता दें, विशेष सूचना ये है कि हम थोड़ी देर में करने वाले हैं कुछ ड्रॉज, यानी बड़े बड़े ड्रॉ है, हेलीकॉप्टर राइड से लेकर आप जा सकते हैं एक डाइविंग के लिए भी, यानी कि बहुत सारी बातें हैं। एंड एमबीसी प्ले 1.0 आपने डाउनलोड किया, इतने सारे लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टू एंटरटेनमेंट। और वहीं पर लकी विनर्स का नाम आने वाला है, और साथ में हेलीकॉप्टर राइड किसको मिलेगी ये भी पता लगने वाला है 5 to 6 के बीच में, तो मजा आएगा। बी टाउन की बातें होंगी और साथ में फुल ऑन मर्सी।
3: RM2 Radio Musti
4: Hit music only.
5: Radio Musti feels a Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स बी टाउन की खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और जो सबसे बड़ी खबर है वो तो यही है दैट जो सिने बॉलीवुड एसोसिएशन है उन्होंने 3 साल का बैन लगा दिया है रणवीर सिंह पर एंड दैट्स रियली शॉकिंग. ये तो हम जानते हैं कि काफ़ी समय से एक प्रॉब्लम चल रहा था रणवीर सिंह और

0: फरहान अख्तर के बीच। एंड फाइनली अब इस मामले ने जो सिने एसोसिएशन है उन्होंने 3 साल का बैन लगा दिया है रणवीर सिंह पर। सो दैट्स रियली शॉकिंग और खबर यही है दैट ये केस जो है वो सिने एसोसिएशन के पास गया हुआ था और उसके बाद सिने एसोसिएशन ने 3 बार रणवीर सिंह को बुलाया, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, तीनों ही टाइम रणवीर सिंह वहां पर हाजिर नहीं हुए और इसी के चलते अब उन पर 3 साल का बैन लगा दिया गया है। अब उनकी टीम सामने आई है और उन्होंने कहा है दैट जो भी लॉसेज हैं वो भरने को तैयार है, लेकिन फरहान अख्तर अब इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। ओ माई गॉड, कहाँ से कहाँ पहुँच रही है ये कहानी। एंड ये तो हम जानते हैं दैट बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है दैट बॉलीवुड का जो एक भाग है दे आर रियली नॉट हैप्पी जो धुरंधर को सक्सेस मिली है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल होती है, जैसे कि आदित्य धार जो एक आउटसाइड है, रणवीर सिंह जो एक आउटसाइडर है, एंड उसके बाद इस फिल्म का इस तरह से एक एपिक हिट बन जाना, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है ये फिल्म, और उसके बाद ऊपर ऊपर से तो बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ की, लेकिन अब सुनने में आ रहा है दैट बहुत सारे लोग अंदर से इस बात से खुश नहीं थे एंड कहीं ना कहीं बदला तो उनको लेना था। तो क्या ये इसी का अंजाम है कि रणवीर सिंह को बैन किया गया है, वो भी फॉर 3 years, 3 साल के लिए, एंड आफ्टर अ सुपर डुपर हिट। ये तो हम जानते थे कि उनका जो करियर है इट वुड बी फ्लरिशिंग एट दिस टाइम, लेकिन ऐसे ही समय में उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया, दैट्स रियली शॉकिंग। एंड चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये हम जानते हैं कि रणवीर सिंह रॉक सॉलिड खड़े हैं उनके साथ और आई एम श्योर कि इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल आए, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू सी हिम ऑन द बिग स्क्रीन। सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए तो ऐसी बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें और कुछ ऐसी खबरें जो दिल को थोड़ा सा दुखा देती है, ऐसी खबरें भी हैं यहाँ पर। वैसे अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। थैंक यू सो मच, साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a musti.

सो वेल फ्रेंड्स, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर अक्सर किसी ना किसी कारण से चर्चा में रहते हैं और अब वो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर इंडस्ट्री के अपने कई करीबी दोस्तों को अनफॉलो कर दिया है, जिनमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे सेलेब्स का नाम शामिल है। अब करण जौहर ने खुद इसके पीछे की वजह बताई है। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर फाइनली बता दिया है कि उन्होंने सेलेब्स को अनफॉलो क्यों किया। डायरेक्टर ने लिखा है कि ये डिजिटल डिटॉक्स है, मैं सबको अनफॉलो कर रहा हूं अपना समय और एनर्जी बचाने के लिए जो इंस्टाग्राम पर लगता है, और गॉड प्लीज इसे एक नेशनल इशू ना बनाए, प्लीज क्लिक बेट और कुछ और करें, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहना है करण जौहर का। अरे भाई, कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी के लिए इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है उन्होंने अपने सभी फॉलोअर्स को। सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर तो खबरें बनती रहती है बिकॉज इट्स बी टाउन, और बी टाउन में जब कुछ होता है, आपके सेलिब्रिटीज की लाइफ में कुछ होता है, तो फिर ये खबर तो बन ही जाती है। सो वेल, अभी के लिए आप साथ दे रहे हैं, यही खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। जैसे हमने आपको बताया कि आज का जो फ्राइडे मैशअप है, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, यानी कि 5 से लेकर 6 बजे तक हम अनाउंस करने वाले हैं हमारे लकी लकी विनर को, जिन्होंने जीती है हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। कौन बनने वाला है वो लकी विनर? एंड 4 से लेकर 5 बजे तक, यस, डू नॉट मिस द सबमरीन। कौन जीता है ये नाम, सब कुछ हम अनाउंस करने वाले हैं, बिकॉज ये है आपका अपना आरएम2 रेडियो मस्ती, जहां पर आपके लिए कुछ खास, कुछ स्पेशल हमेशा होता है।

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: एंड वेल फ्रेंड्स, धीमे धीमे ही हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट आवर की ओर. दैट्स योर बॉम्बे टॉक. इज फ्राइडे है और मूड को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं विद दिस वन. सो कहीं मत जाइए, मैं हूं परी आपके साथ और ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. एंजॉय दिस वन.

0: RM2 Radio Mystic.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए बिजली चोरी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस वर्ष सामने आए मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीबी ने अपने नियंत्रण और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। बोर्ड अब बिजली नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े निरीक्षण और तकनीकी उपाय अपना रहा है। इसके साथ ही सीबी ने एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि लोगों को बिजली चोरी के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा सके और इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। लिसे लाबूदने और लिसे दी मस्कारेन के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट्री प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को उजागर करता है। इस 20 मिनट की फिल्म में युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने का मजबूत संदेश दिया है। डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में संवेदनशील बनाना और ये याद दिलाना है कि पर्यावरण की रक्षा आज और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत इंडोलॉजी विभाग द्वारा आज शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक पाक कला और आहार विज्ञान यानी कि डाइटेटिक्स के पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही इंडोलॉजिकल होराइजन्स न्यूज़लेटर के दूसरे संस्करण का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने संतुलित और स्वस्थ जीवन के लिए पारंपरिक ज्ञान और आयुर्वेदिक सिद्धांतों की ओर लौटने के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका और ईरान के बीच संभावित युद्ध समाप्ति और समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। अमरीकी राष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि समझौता कब या होगा भी या नहीं। इससे पहले अमरीकी अधिकारियों ने बताया था कि दोनों देशों के बीच एक

0: प्रारूपिक समझौते पर सहमति बनी है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, लेकिन इसे अंतिम मंजूरी ट्रंप और ईरान के नेतृत्व द्वारा दी जानी बाकी है। रिपोर्टों के अनुसार ये समझौता 60 दिनों के युद्ध विराम को बढ़ा सकता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर बातचीत शुरू कर सकता है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा कि अभी तक कोई भी समझौता अंतिम रूप से तय या पुष्टि नहीं हुआ है। प्रस्तावित ढांचे के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना बाधा आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है और ईरान को बारूदी सुरंगें हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया जा सकता है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहे सुन पाएंगे एक शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नेहरू रोड लालमाटी में 22 साल के 22 ईयर्स ओल्ड के श्री भविष कुदी जिन्हें भविष्य के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके पिता उत्तम कुमार खुदी के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. More music in the mix. Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Join the RM2 team at Dream Prize Boulet Rouge Flag this Saturday, 30th May from 11 a.m. to 2 p.m. Come and celebrate Mother's Day with gifts, new products tasting and games. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice. RM2
1: Radio Musti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 3:07 हो गए हैं और वॉर्म वेलकम आप सभी का साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स एंड लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए.

ये अभी से लेकर 4 बजे तक. एंड दिस वन्स द लेटेस्ट वन, पति पत्नी और वो दो, उसी गाने उसी फिल्म का ये गाना. वैसे काफी पॉपुलर रहा है इन इंडी पॉप. अब नजर आ रहा है इस फिल्म में. वैसे फिल्म को मिल रहे हैं मिक्स्ड रिव्यूज. बात करेंगे इसके बारे में. स्टे वेल कनेक्टेड.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti.
2: So, well, latest songs की बात कर रहे हैं है जवानी तो इश्क होना है रिलीज होने वाली है ऑन 5th of June। फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर, मोनी रॉय, मनीष पॉल, राकेश बेदी एंड जिम्मी शेरगिल। होने वाली है बहुत ज्यादा मस्ती ऑन द बिग स्क्रीन, लेकिन इसके लिए करना है इंतजार टिल 5th of June। अभी के लिए कनेक्टेड है आप हमारे साथ दोस्तों, सो नॉट टू फॉरगेट दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। एंजॉय दिस वन।

सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट और रमेश तोरानी के टिप्स के बीच विवाद और बढ़ गया है। थर्सडे को पूजा एंटरटेनमेंट ने टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रमेश तोरानी, कुमार एस तोरानी और फिल्म निर्माता डेविड धवन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 400 करोड़ रुपए का केस ठोक दिया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में वाशु भगनानी की 1999 की हिट फिल्म बीवी नंबर वन के मशहूर गाने का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वकीलों के माध्यम से दायर हुए मुकदमे

0: में फिल्म और इसके प्रमोशन कंटेंट जिसमें विवादित गाना चुनरी चुनरी और है जवानी तो इश्क होना है, जी हाँ ये गाने शामिल है, और इसके रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रदर्शन स्ट्रीमिंग और आगे के कमर्शियल इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि इसका क्या फैसला आएगा, लेकिन 400 करोड़ का केस ठोका गया है इस फिल्म के मेकर्स पर।
1: RM2 Radio Musti
2: Hit music only
3: Radio Musti feels a musti

0: एंड वेल दोस्तों, जब गाना जो है वो रीमेक या रीमिक्स होता है, ईदर यू कैन एनहांस द सॉन्ग या फिर यू कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल वन। सो ये भी है कि रीमेक और रीमिक्स करना ये भी एक कला है, और कह सकते हैं कि धुरंधर के म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव ने हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब, यानी कि वही पुराने गाने लेकिन क्या ब्यूटिफुली उन्हें पेश किया। बीट रंबा हो या फिर ओए ओए हम प्यार करने वाले, यानी कि इतने सारे पुराने गाने हमने सुने लेकिन इन अ डिफरेंट अंदाज, इन अ डिफरेंट अवतार। सो हैट्स ऑफ टू शाश्वत सचदेव एंड ऑफ कोर्स द टीम ऑफ धुरंधर।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
3: हिट्स, म्यूजिक ओनली
2: फील्स अ मस्ती।

RM2. Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

सो वेल फ्रेंड्स, कनेक्टेड है आप यहाँ पर RM2 रेडियो मस्ती के साथ, मस्ती वाले गाने, बिकॉज आज है फ्राइडे। चलिए अभी के लिए कुछ मैसेजेस डेडिकेशंस भी आ गए हैं 5499-1294 पर। सो यहाँ पर मीरा साथ दे रही हैं आप और कहती हैं गाना हो जाए फॉर यू मीरा, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम महीन बेल, ऐसे साथ दे रहे हैं। सो गाना गोज आउट फॉर मीरा। और यहाँ पर विजया जी साथ दे रही हैं आप, कहती हैं कि बॉलीवुड इज फुल ऑफ ईगो पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म, और रणवीर को अभी के लिए तो बस ये जो मोमेंट है उसको एंजॉय करना चाहिए एंड टेक अ लॉन्ग वेकेशन उनकी फैमिली के साथ, जहां पर सून दे आर गोइंग टू वेलकम देयर सेकंड किड। बिल्कुल सही कहा विजया जी आपने, यहां पर पॉलिटिक्स तो चलती रहती है लेकिन अभी के लिए जो सक्सेस उनको मिली है दैट्स इनक्रेडिबल, और उनको अभी के लिए तो बस इसी सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू फॉर योर मैसेज। यहाँ पर साथ दे रहे हैं आप हमारा, और आप है ललिता जीतन साथ दे रही हैं, एंड विशिंग हैप्पी मदर्स डे टू एवरी मॉम, एंड सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुड विशेज। चलिए कहते हैं कि आपको सुन रहे हैं हम ऑन रेडियो मस्ती, आप है प्यारी सी रोशनी, आपने हमें मिस किया, दैट्स रियली स्वीट, लेकिन साथ रहेगा आज आपका और मेरा शाम के 7 बजे तक। तो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स चलते रहेंगे ऑन द वेज ऑफ रेडियो मस्ती, साथ ही यहाँ पर कुमार देवचन, काम खत्म अब एंजॉइंग द शो, डेडिकेटिंग गाना फॉर लवली पापा श्याम देवचन, सबके लिए बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेज। सो चलिए दोस्तों, इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद इट्स गोइंग टू बी योर फ्राइडे मैशअप। मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: Time check 4 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आशिता, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत इंडोलॉजी विभाग द्वारा आज शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक, पाक कला और आहार विज्ञान यानी कि डायटेटिक्स के पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही इंडोलॉजिकल होराइजन्स न्यूज लेटर की दूसरे संस्करण का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने संतुलित और स्वस्थ जीवन के लिए एक पारंपरिक ज्ञान और आयुर्वेदिक सिद्धांतों की ओर लौटने के महत्व पर प्रकाश डाला। सेंट्रल एलएसटी बोर्ड के लिए बिजली चोरी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस वर्ष सामने आए मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीबी ने अपने नियंत्रण और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। बोर्ड अब बिजली नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े निरीक्षण और तकनीकी उपाय अपना रहा है। इसके साथ ही सीबी ने एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि लोगों को बिजली चोरी के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा सके और इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। लिसे लाबूदोने और लिसे दे मस्कारेन के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंटरी प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को उजागर करता है। इस 20 मिनट की फिल्म में युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने का मजबूत संदेश दिया है। डॉक्यूमेंटरी का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में संवेदनशील बनाना और ये याद दिलाना है कि पर्यावरण की रक्षा आज और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए अत्यंत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध समाप्ति और समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि समझौता कब या होगा भी या नहीं। इससे पहले अमरीकी अधिकारियों ने बताया था कि दोनों देशों के बीच एक प्रारूपिक समझौते पर सहमति बनी है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, लेकिन इसे अंतिम मंजूरी ट्रंप और ईरान के नेतृत्व द्वारा दी जानी बाकी है। उधर यूक्रेन सीमा के करीब स्थित रोमानिया के गालाती शहर में एक रूसी ड्रोन रिहायशी इमारत से टकरा गया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। इंस्पेक्टोरेट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस ने बताया कि ड्रोन का पूरा विस्फोटक पेलोड फट गया जिससे इमारत की 10वीं मंजिल पर आग लग गई। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक आग बुझाने के दौरान करीब 70 लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके साथ संक्षिप्त

0: 50 समाप्त हो चला आपके ध्यान की धन्यवाद और नमस्कार
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Radio Musti.
3: Hit music only.
2: Feels a Musti. Radio Musti.

0: So well friends, इस iconic theme के साथ आपका हम welcome करते हैं भाई, ये tune तो दिलों में बसी हुई है और स्वागत करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 4:09 हो रहे हैं, Friday afternoon, it's 29th of May, मैं हूँ परी आपके साथ। It's time for your Friday mashup, जहाँ पर कुछ beautiful songs होने वाले हैं, बहुत सारे segments होने वाले हैं and of course हम announce करने वाले हैं हमारे grand lucky winners को। दो games जिनके लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है, that who is the lucky winner अनाउंस होने वाले हैं इसी शो में। So कहीं मत जाइए, stay well connected, well friends, मैं हूँ परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक। Your messages, your dedications, 5499-1294 पर।
1: Radio Masti.
2: Hit music only.
1: Feels a Masti. Radio Masti.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, सौदा तो एकदम खरा खरा है, जहां पर आप हमें अपना साथ और अपना प्यार दीजिए और बदले में हम आपको गुड म्यूजिक और लोड्स ऑफ इनाम देंगे। ये मौका तो आपको मिलता है ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो वेल, आपको पता है कि काफी टाइम से हम एक गेम आपके साथ खेल रहे थे, जहां पर आपको मिलने वाला था 4,000 रुपए का वाउचर। शॉर्ट लिस्ट हुए कई सारे नाम।

0: सो आपको बता दें कि ये सवालों के सही जवाब देने के बाद जो हमारे शॉर्ट लिस्टेड लिसनर्स थे उनमें नाम शामिल हुआ प्रियंका रामकोरन का, वी ऑल्सो हैड अनु गोवर्धन एंड वी हैड सारिका मोंटावलॉन से एंड वी हैड कविता सुकन। अब आज टाइम है जब हम लकी लकी ड्रॉ करने वाले हैं और नाम आने वाला है उस एक ग्रैंड विनर का जो इस 4000 रुपए का वाउचर बनने वाला है। सो हु इज दैट लकी लकी विनर? चलिए दोस्तों यहाँ पर लकी ड्रॉ हो चुका है एंड लकी ड्रॉ के बाद जो नाम हमारे सामने आया है वो कौन है? इट्स अ वन एंड ओनली प्रियंका रामकोरन। आप है व्यूअर घोंपो से सो कांग्रेचुलेशंस, बनती है हमारी लकी विनर आप। सो वेल प्रियंका, खेला आपने एमबीसी के साथ और जीता है गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹4,000 प्लोजे सुमाहिन ऑफर्ड बाय एमजे इवेंट्स ऑफ मेन। आप ज्वाइन कर सकते हैं कैप्टन मिमीज ड्राइविंग सेंटर एट ट्रोबिश फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। उनके साथ डाइविंग एक्सपीरियंस, मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर सकते हैं ऑन 571-36761 571-36761। सो येल आफ्टर 4 days हमारे जो 4 शॉर्ट लिस्टेड कंटेस्टेंट्स थे उनमें से आज हमें मिल गया है हमारा ग्रैंड लकी विनर फॉर दिस शानदार वाउचर ऑफ ₹4,000 और आप है हमारी प्यारी सी प्रियंका रामकोरन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको प्रियंका, जीत गई है ये शानदार नाम। सो ये तो बात हुई 4,000 का वाउचर जो मिला आपको सबमरीन के लिए एंड थोड़ी ही देर में हम अनाउंस करने वाले हैं हमारे हेलीकॉप्टर राइड विनर को भी। सब बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए। That's your RM to Radio मस्ती। दोस्तों अभी के लिए कुछ प्यारे गाने लेकर आए हैं, फ्राइडे मूड को सेट करते हैं विद दिस वन।
1: RM to Radio मस्ती।

RM2. Radio Musty.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, एक ही तो जिंदगानी है और उसमें एंजॉय करना, लाइफ को खुल कर जीना, ये तो बनता है। और मंडे टू फ्राइडे भाग दौड़ में वक्त कहाँ मिलता है, लेकिन फ्राइडे इवनिंग तभी तो वक्त मिलता है कि आप पूरे हफ्ते की थकान को आप थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। सो आज आ गया है फ्राइडे, लेकर लोड्स ऑफ खुशियां ऑफ अ वीकेंड। सो आई एम श्योर आपके बहुत सारे प्लान्स बन रहे होंगे दोस्तों। एंड नॉट टू फॉरगेट, हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस रेडियो के जरिए, जहाँ पर आपके लिए छोटी छोटी खुशियाँ हम लेकर आते हैं। कोशिश यही होती है कि हमारे साथ जुड़कर आपके चेहरे की जो स्माइल

0: है वो बिल्कुल बनी रहे। एंड अभी के लिए तो काम खत्म हो गया होगा, कुछ लोग अभी भी काम में फंसे होंगे, फाइलों के बीच अपना वक्त निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन चलिए कुछ और घंटे और उसके बाद तो आपको मिलने वाला है अपना टाइम जिसे आप अपनी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, मैं हूं पेरी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर फ्राइडे मैशअप। आपके मूड को सेट करने वी हैव जुबिन गर्ग की आवाज में ये ब्यूटीफुल ट्रैक, एंजॉय दिस वन।
1: RM2 Radio Masti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Sports news, latest updates.
1: Sports news.
0: Radio Musti in the mix.
4: So well, ladies and gentlemen, exactly 4:40 स्टूडियो में आ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद लेकर स्पोर्ट्स जगत की लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो एंड गुड आफ्टरनून।
5: गुड आफ्टरनून आपको परी, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। हेडिंग टुवर्ड्स बुडापेस्ट। जी हम आर्सेनल के फैंस, पेरिस सेंट जर्मेन के फैंस बुडापेस्ट की ओर जाने लगे हैं, जहां पर कल होगा द चैंपियंस लीग फाइनल, यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल, पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस आर्सेनल। दोनों टीमें कॉन्फिडेंट हैं डबल पूरा करने के लिए, टाइटल और चैंपियंस लीग। जबकि अगर आर्सेनल की जीत हो सो दैट विल बी द हैट्रिक फॉर इंग्लैंड। इससे पहले एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस एक एक ट्रॉफी जीत चुके हैं, सो अब आर्सेनल की बारी है। ये दो ऐसी टीमों के बीच हैं जो अलग फुटबॉल खेलती हैं। वी कैन से आर्सेनल डिफेंसिव रॉक जैसा डिफेंस। इस टूर्नामेंट में उन्होंने केवल 6 गोल कंसीड किए हैं, कंसीडेड 6 गोल्स ओनली, जबकि पेरिस सेंट जर्मेन गोलों की बमबारी करने में माहिर हैं, लेकिन गोल खाता भी ज्यादा 22 गोल्स ज्यादा ले चुका है। सो ये दो अलग अलग टैक्टिक्स के खिलाड़ी होंगे, एक आक्रमण करेगा दूसरा डिफेंड करेगा, और काउंटर अटैक फुटबॉल में आर्सेनल ये बाजी मार सकता है। लेकिन अनुभव देखा जाए चैंपियंस लीग में तो सबसे ज्यादा पेरिस सेंट जर्मेन का है। गरम गरम पिछले सीजन ये लोग ये चैंपियंस लीग जीत कर आए हैं। आपको बता दें कि कल 8 बजे ये मैच आप लोग देख पाएंगे लाइव एमबीसी के चैनल 11 पर। तो ऑल हेडिंग टावर्ड्स चैंपियंस लीग। इसके बाद वर्ल्ड कप की चर्चा होगी। फुटबॉल में काफ़ी स्कोर भी होने वाले हैं इस वीकेंड के दौरान, खासतौर पर फ्रेंडली मैच। फ्रेंडली मैचों में जैसे आज ईरान का मुकाबला गाम्बिया से, साउथ अफ्रीका निकारागुआ, बोस्निया नॉर्थ मासेडोनिया, इराक खेलेगा अंडोरा के खिलाफ, लेबानन सूडान। जबकि यूईएफए अंडर 17 चैंपियनशिप में अभी इटली मोंटेनेग्रो को 2-0 से हरा रहा है, और फ्रांस का मुकाबला डेनमार्क से होगा। इसी तरह फ्रेंच प्ले ऑफ आज फाइनल नीस और सेंट एटियन के बीच, ये स्कोर 0-0 था फर्स्ट लेग में। और कल जिस आपको बताया पेरिस सेंट जर्मेन आर्सेनल इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच भी खेले जाएंगे, इनमें इंडिया का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। गोइंग स्ट्रॉन्ग टेनिस, अभी कुछ मैच खेले जा रहे हैं। आंद्रीवा अभी बुजकोवा के खिलाफ खेल रही है। कुछ स्कोर जो आज के मैच रहे, श्वातेक की जीत हुई लिनेट पर 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4। आंद्रीवा बुजकोवा के बीच अभी फर्स्ट सेट 4-4। आज के अन्य मैच, फोनसेका जोकोविच के खिलाफ खेलेगा, वेरेव खेलेगा अलिस के खिलाफ, बोगेस रूबलेव, रूबलेव ये मैच जीत गया। मुचोवा और टेचमन के बीच मैच चल रहा है, टेचमन जीत रहा है 5-0 से अभी फर्स्ट सेट में। फिर वितोलिना खेलेगी कोपाश के खिलाफ, कास्पर रूड का मुकाबला से होगा। ये राउंड ऑफ 32 के मैच खेले जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद और रात को भी। क्रिकेट आज धमाका होगा,
4: धमाका पहली वाली में जरा गुजरात टाइटंस बहुत बहुत ज्यादा पिछड़ गए।
5: कम से कम आज हम और आप सेम टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे।
4: हाँ, मुझे पता है ये आपकी टीम, आपका सपोर्ट कहीं और है।
5: हाँ, कहीं और है। और

0: Well, मैं नहीं पूरी दुनिया दीवानी है जस्ट नॉट फॉर आज आज मैं एक क्रिकेट शौकीन से बात कर रहा था उसको बता रहा था कि हार्डली लोग सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स को ज्यादातर To take my own examples, मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा था पहले क्योंकि हम भी दिल्ली में और मुंबई को भी सपोर्ट करते थे क्योंकि मुंबई में you've got, you know, great players और सचिन
1: से लेकर रोहित शर्मा also.
0: तो इस बार अपना बंदा वैभव सूर्यवंशी और उसको सपोर्ट करने के लिए वी आर सपोर्टिंग राजस्थान रॉयल्स लेकिन वो बैटिंग देखी आपने पिछली बार अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद
1: माइंड ब्लोइंग मतलब ये आई थिंक इसमें कोई एक मैजिक टच है
0: मैजिक टच और लेकिन जब 97 में आउट हुआ एकदम दिल टूट गया शायद दिल टूट गया उस समय लेकिन आज गुजरात को गुजरात में गुजरात वाले क्या खाना पसंद करते हैं
1: ढोकला
0: तो आज गुजरात वालों को खूब ढोकला खिलाएंगे
1: चलिए देखते हैं मे द बेस्ट टीम विन
0: चौको और छक्को का ढोकला
1: वाह चलिए देखते हैं क्या होता है लेकिन इंतजार रहेगा
0: सो अभी 6 बजे ये शुरू होगा दी सेमीफाइनल कह सकते हैं गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो जीतेगा फाइनल में जाएगा जहां पर हाथ मसल रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये फाइनल जो संडे को खेला जाएगा अहमदाबाद स्टेडियम में लेकिन फॉर नाउ लेट्स वेट फॉर अनदर बिग वन From Vaibhav Suryavanshi और कल the biggest La Coupe aux Grandes Oreilles इसे कहते हैं क्योंकि उस trophy में Champions League trophy में जो दो handle होते हैं वो कान की तरह होते हैं
1: तो
0: इसलिए French में कहते हैं La Coupe aux Grandes Oreilles या तो कल देखेंगे कौन Arsenal या Paris Saint-Germain
1: Thank you so much for all the updates
2: Mega promo code quality déco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Prix cassé l'eau la voix. La lumière moderne, prix soc.

0: 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
2: चलो वर्ल्ड कप की ओर। इसमें आज हम चर्चा करेंगे गोल्डन बॉल को लेकर, द ऑफिशियल अवार्ड प्रेजेंटेड टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ ईच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स। इसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था 1982 में। फीफा उस टॉप खिलाड़ी को अवार्ड देता है जो हमेशा, यानी इस टूर्नामेंट के अंतर्गत, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। लियोनेल मेसी वो मात्र खिलाड़ी हैं जो दो बार ये अवार्ड जीत चुका है, 2014 और 2022 में। तो ऐसे में 2022 में कतार में ये लियोनेल मेसी को गया था। फिर 2018 रशिया में ये लुका मोड्रिच को दिया गया था, क्रोएशिया का खिलाड़ी। 2014 ब्राजील में लियोनेल मेसी ने ये अवार्ड जीता था अर्जेंटीना के साथ। फिर 2010 साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप में जिएगो फोलान यूरुग्वे के खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया गया था। 2006 में जर्मनी में जिनेदीन जिदान फ्रांस के खिलाड़ी को। फिर 2002 में साउथ कोरिया जापान में वर्ल्ड कप, वहां पर ओलिविए कान को दिया गया था जर्मनी से। वो मात्र गोलकीपर हैं जिसको बेस्ट गोलकीपर अवार्ड के साथ साथ गोल्डन बॉल भी दिया गया था। 1998 फ्रांस में रोनाल्डो को, रोनाल्डो ब्राजील वाला रोनाल्डो। फिर 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स में रोमारियो को।

0: ब्राजील का रोमारियो 1990 में इटली के साल्वाटोर स्केलाची को दिया गया था 1986 में डिएगो माराडोना के नाम 1982 में स्पेन के पाउलो रोसी को बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया था और 1978 में मारियो कैम्पेस को ये अवार्ड मिला था सो गोल्डन बॉल इस बार काफी दावेदार है चाहे वो इंग्लैंड से हो हैरी केन क्यों नहीं हैरी केन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लियोनेल मेसी तो है ही वहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हैं फ्रांस में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं एम्बापे खिलाड़ी तो अभी कहना कौन गोल्डन बॉल जीतेगा मुश्किल होगा वर्ल्ड कप को शुरू होने दीजिए फिर देखेंगे किसको हम गोल्डन बॉल हम नहीं बल्कि फीफा गोल्डन बॉल देता है
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: गाना बजाना एंजॉय करना, अरे लाइफ का नाम ही तो एंजॉयमेंट है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन लाइफ की छोटी छोटी खुशियां, ये तो आप ही को इन्हें इकट्ठा करके लाइफ को और खूबसूरत बनाना है। सो चलिए दोस्तों, इट्स टाइम कि अब थोड़ी ही देर में हम बनने वाले हैं टुवर्ड्स योर इंग्लिश फ्लैश न्यूज। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए कुछ दोस्त भगवत विदेशी साथ दे रहे हैं आप, और कहते हैं एक ब्यूटीफुल गाना हो जाए अनुषा के नाम। बिल्कुल जी, यहाँ पर प्यारी सी टीना आ गई है, कहती है हाउ आर यू परी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ टीना, आप कैसे हो? एकदम ठीक ठाक, आई डू होप एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। वैसे अभी के लिए कहती है फुल वॉल्यूम पर फ्राइडे को फंडे बना रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ। दैट्स द, कह सकते हैं कि लाइफ को अगर आपको खूबसूरत बनाना है तो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के साथ जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाते रहिए। कहते हैं ना कि लाइफ में थोड़ा सा खुशियों का स्प्रिंकल करते रहना चाहिए ताकि जिंदगी हमेशा खूबसूरत, हमेशा प्यारी लगती रहे। सो थैंक यू टीना फॉर द लव, साथ दे रही हैं आप। सो अगला गाना होगा आपके नाम साथी गुजार पर अब्दुल एंड सायरा बानो। हमारे साथ जुड़ गए हैं आप ऑन रेडियो मस्ती। चलिए सो मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं, एंड विद द नेक्स्ट ट्रैक हम बनने वाले हैं टुवर्ड्स योर इंग्लिश फ्लैश न्यूज। लौट कर आएंगे विद योर फ्राइडे मैशअप। मैं हूं परी आपके साथ राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। एंड नॉट टू फॉरगेट, नेक्स्ट आवर में होने वाला है स्पेशल अनाउंसमेंट, ग्रैंड लकी विनर हेलीकॉप्टर राइड। कौन है वो खास विनर? उनका नाम हम अनाउंस करने वाले हैं, उनके साथ गेम खेलने वाले हैं। सो बस कहीं मत जाइए, स्टे वेल ट्यून्ड। ये जो

0: एग्जैक्टली दोस्तों, अगर आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ रहेंगे तो ऐसे ही ऐश करते रहेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आपके लिए हम इतने सारे गेम्स और स्पेशल सेगमेंट्स लेकर आते हैं कि आपकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है उसे हम बढ़ा सके। बस हमारी सोच तो यही होती है कि आपकी झोलियों को हम खुशियों से भरे। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। 5:10 हो गए हैं। वार्म वेलकम, इट्स योर फ्राइडे मैशअप। मैं हूं परी आपके साथ ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती।
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a musti.
0: तो चलिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में हमारे शॉर्ट लिस्टेड जो लिसनर्स हैं उनके साथ हम बात करेंगे, यानी कि दो शॉर्ट लिस्टेड हमारे लिसनर्स उनके साथ एक क्वेश्चन आंसर का गेम खेलने वाले हैं, और उसके बाद जो हमें देगा सबसे ज़्यादा सही जवाब वो लेकर जाएगा हेलीकॉप्टर राइड फॉर टू पीपल। सो यहाँ पर आप हमारा साथ देते रहिए, थोड़ी देर में हम कॉल करने वाले हैं हमारे इन शॉर्ट लिस्टेड लिसनर्स को। सो थैंक यू सो मच हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। दिस वन गोज़ आउट टू यू ऑल।
4: True, they-

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits, music only.
1: Feels a musti.
2: Friday Mashup.
0: RM2 Radio Musti.
3: तो वेल फ्रेंड्स, जिस घड़ी का था इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ गई। करीबन 2 हफ्तों से हम एक गेम खेल रहे थे जहां पर हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप MBC प्ले 1.0 डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और फिर वो स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद हमें मिले बहुत सारे लोग जो शॉर्ट लिस्ट हुए फॉर द ग्रैंड लकी ड्रॉ जो आज होने वाला है। सो इन सभी नामों में से हमें 2 हमारे नाम ऐसे मिल गए जो आज इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बनने वाले हैं। एक है हमारी तोशिला दुखित और दूसरी है शालिनी बिशंबर। सो यहाँ पर ये 2 जो लिसनर्स हैं वो बिल्कुल हमारे साथ सेट है हमारा जो गेम है वो खेलने के लिए, क्योंकि आज जो हमें सही जवाब देंगे वो जीत जाएंगे ये शानदार इनाम जहां पर इनको मिलने वाला है हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सवाल हमने पूछे, बहुत सारे जवाब भी हमको मिले एंड यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। हमारे जो लिसनर्स हैं वो तो ध्यान से सुने और साथ ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तोशिला जी और शालिनी जी, आप भी हमें ध्यान से सुने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो गेम हमने आपके साथ खेला इसमें आपको मिलने वाला है एक हेलीकॉप्टर राइड जहां पर 10 मिनट का हेलीकॉप्टर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है बाय मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड और आप लेकर जाएंगे फ्रॉम एयरपोर्ट टू ब्लू बे पॉइंट डिज्नी, साथ में है इलोजिग्रेट साउथ ईस्टर्न लगून लायन माउंटेन मेबर्ग बोवालो एयरपोर्ट और बहुत मतलब बैक टू एयरपोर्ट और बहुत सारा ब्यूटीफुल नजारा आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अभी के लिए हम सवाल करेंगे आपके साथ और हमारे जो 2 इस वक्त कंटेस्टेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात कर ले पहले तोशिला जी से। हेलो जी तोशिला जी, कैसी हैं आप? हेलो,
4: हाँ हेलो,
3: हाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
4: हाँ हाँ,
3: अभी आपके आपका दिल धक धक कर रहा है?
4: नहीं
3: नहीं कर रहा। ओहो माय गॉड, वेरी कॉन्फिडेंट। चलिए यहाँ पर शालिनी जी भी है। शालिनी जी, हाउ आर यू फीलिंग?
5: एक्साइटेड
3: होना भी चाहिए, एक्साइटेड भाई, हेलीकॉप्टर राइड जीतने का मौका मिल रहा है। चलिए सो यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछेंगे जिन सवालों के साथ वी आर गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस। तो मैं पहले से बता दूंगी कि ये जो सवाल है उसमें ऑप्शंस होंगे, तो आप ऑप्शंस का इंतजार करें और उसके बाद आप अपना सही जवाब दें। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ इसमें नो ऑप्शन, आपको सीधा जवाब देना है। तो आपके लिए यहाँ पर सवाल है, यस द क्वेश्चन फॉर यू, आपको हमें बताना है कि जो यहाँ पर सवाल है, यस के जो एप्लीकेशन है, यस जो न्यू एप्लीकेशन लॉन्च किया है MBC ने, उसका नाम क्या है? MBC प्ले। यहाँ पर मुझे लगता है शालिनी जी आपने सही जवाब दिया है पहले। यहाँ पर शालिनी जी ने हमें पहला सही जवाब दिया है, तो चलिए 1 point goes to शालिनी जी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 point goes to शालिनी जी। अब जो दूसरा सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं, इसमें यू हैव ऑप्शन, ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है। सो सवाल है दैट विच रीजन ऑफ मॉरिशस विल द हेलीकॉप्टर जॉय राइड मेनली कवर। ऑप्शन है ए नॉर्थ, बी साउथ ईस्ट या फिर सी वेस्ट। आपके सही जवाब
4: साउथ ईस्ट।
3: यहाँ पर लग रहा है मुझे कि तोशिला जी ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। सो 1 point goes to तोशिला जी, ओके। और तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर एकदम बराबरी का गेम हो रहा है और यहाँ पर मैं देखती भी जा रही हूँ कि किसका जो यहाँ पर आवाज का जो रेंज है ऊपर जा रहा है, ताकि हमारा ये जो सिग्नल है उससे मुझे यहाँ पर जो पता लग जाए कि किसने मुझे पहला जवाब दिया है। सो क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ दीज सर्विसेज अवेलेबल ऑन MBC प्ले। इसमें ऑप्शंस हैं तो आप सोच समझ कर जवाब दीजिए। विच ऑफ दीज सर्विसेज जो है MBC प्ले है आपको देता है, इज इट ए लाइव TV रेडियो, बी टैक्सी बुकिंग या फिर सी फूड डिलीवरी। कौन सा है सही जवाब? तोशिला जी, तोशिला जी ने कौन सा क्या जवाब दिया? टीवी एंड रेडियो, ओके। तोशिला जी के पास यहाँ पर आ रहे हैं 2 points, इन्होंने दिया है सही जवाब लाइव टीवी एंड रेडियो। और चलिए अभी आगे बढ़ते
5: हैं। मैंने बोला
3: यहाँ पर
5: बोला लाइव रेडियो।
3: तो फर्स्ट आप शालिनी जी है?

0: ओके शालिनी जी ने यहाँ पर सही जवाब मुझे लगता है कि तोशीला जी ने दिया है, लेकिन नॉट टू वरी, यहाँ पर वी हैव टू पॉइंट्स एंड वन पॉइंट. अभी दो और क्वेश्चंस बाकी है. ओके दो और क्वेश्चंस बाकी हैं, तो आप सोच समझ कर मुझे जवाब दीजिए यहाँ पर. ओके अभी इंतजार कीजिए. सो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है. तोशीला जी आप मुझे सुन सकती है?
1: हाँ.
0: शालिनी जी आप मुझे सुन सकती है?
2: हाँ, लेकिन मैं जवाब बराबर दे रही हूँ, लेकिन आपको नहीं सुनाई दे रही है.
0: ओके चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं, वी हैव टू मोर क्वेश्चंस. अभी देखते हैं यहाँ पर जो डिसाइडिंग हमारा है, हम इसको रखते हैं कि जो ये सवाल का सही जवाब देगा, मैं दोनों को दो पॉइंट्स दे रही हूँ, और ये जो सवाल है वो डिसाइडिंग होगा कि जो हमें सही जवाब देता है वो बन जाएगा हमारा लकी विनर. सो जो जवाब देता है पहले आप बताइए, शालिनी और फिर जवाब, तोशीला जी जवाब दे रही है, तोशीला और फिर जवाब, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी सुन पाए, राइट? गुड.
2: या
0: ओके सो जवाब दीजिएगा, लेकिन यू गिव मी शालिनी एंड द आंसर, तोशीला एंड द आंसर. ओके सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी यू हैव ऑप्शंस, तो आप सोच समझ कर जवाब दीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द हेलीकॉप्टर इटिनरी, शमारेल, ब्लू बे या फिर फ्लिक एंड फ्लक? ये किसने जवाब दिया पहले? मैंने बोला था पहले नाम और फिर जवाब. चलिए अभी यहाँ पर नहीं, अभी अब ये खत्म हो गया, बिकॉज यू नो फिर ये हो जाएगा कि हमने जवाब दिया और शायद हमने सही जो विनर है वो नहीं अनाउंस किया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टू बी वेरी क्लियर आप अपना नाम दीजिए पहले और फिर आप सही जवाब दीजिए, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें भी सुनने को मिले कि हु गेव द राइट आंसर. सही है?
2: ओके
0: सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप ध्यान से सुनिए कि ये जो गेम हम खेल रहे थे, सो ये गेम हम खेल रहे हैं ऑन RM2, और ऐसा सेम गेम खेला जा रहा है ऑन RM1 रेडियो एज वेल. सो दो रेडियोज पर ये गेम खेले जा रहे हैं. अभी जो मैं सवाल आपको पूछूंगी उसका जवाब आपको मुझे देना है. जैसे मैंने कहा, अगर शालिनी जी जवाब दे रही है तो यू गिव मी योर नेम फर्स्ट एंड देन द आंसर. तोशीला जी नाम लीजिए पहले और फिर जवाब, ठीक है? ओके सो यहाँ पर ये जो मैंने बताया आपको कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसका आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये जो हेलीकॉप्टर राइड गेम हम खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग दिस गेम RM2 पर एंड ऑल्सो ऑन RM1 रेडियो. लकी विनर दोनों रेडियोज पर मिलने वाले हैं. सो अब हमें बताइए दैट हाउ मेनी विनर्स विल वॉक अवे विथ हेलीकॉप्टर टिकट्स ड्यूरिंग दिस कैंपेन, एक या दो विनर्स? नाम नहीं बता रहे हैं आप, तो हम आपको कैसे, मैंने कहा तोशीला जी नाम बताएं, शालिनी जी नाम बताएं, लकी विनर बताएं. चलिए अभी के लिए अभी हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जैसे बोलते हैं, जो सबसे पहले जवाब देगा अपना नाम देकर उसी को कंसिडर करेंगे, जिसने नाम नहीं दिया उनको हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली. सो अपना नाम दीजिए और सही जवाब दीजिए. हाउ मेनी विनर्स विल वॉक अवे विथ हेलीकॉप्टर टिकट्स ड्यूरिंग दिस कैंपेन? ओके तोशीला,
2: शालिनी तू बोला पहले.
1: मैं भी पहले बोला,
0: यहाँ तो लगता है ऑन एयर झगड़ा हो रहा है कि मैंने बोला कैसे चलेगा, किसने बोला. चलिए तो अभी के लिए तो मैं अब जो सारे सवाल थे उसमें से एक सवाल अपनी मर्जी का आपके लिए ढूंढ कर फिर से ला रही हूँ, और जैसे मैंने कहा कि अब तो हम डिसाइड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही कह रहे हैं कि मैंने सही जवाब दिया है. मेरे हिसाब से यहाँ पर तोशीला जी ने सही जवाब दिया था, लेकिन टू बी वेरी फेयर एक बार फिर से तोशीला जी ने यहाँ पर सही जवाब दिया था. शालिनी जी प्लीज, अगर हम आपको बता रहे हैं आप नाम बताइए जवाब दीजिए, दोनों का नाम पहले सुनना पड़ेगा तब जवाब देना है, राइट? सो फर्स्ट वन, जैसे हमने कहा कि इसमें नो ऑप्शंस, जो सबसे पहले नाम लेकर जवाब देगा उसको ये इनाम दिया जाएगा. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय MBC दैट अलाउज टू वॉच? चलिए शालिनी जी, MBC प्ले आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब, एंड आई डू होप दैट इट वाज वेरी फेयर, क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो विनर्स हैं उन्हें हम एकदम फेयरली यहाँ पर इनाम दे सके. तो थैंक यू सो मच, आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया, एंड अभी के लिए शालिनी जी यू आर द लकी विनर. तोशीला जी आपको कहेंगे धन्यवाद, आपने बहुत ही प्यार से पार्टिसिपेट किया, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ स्पोर्ट एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस गेम, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस आपको भी. तो चलिए शालिनी जी बन गई हैं आप लकी विनर, जोरदार तालियां हो जाए हमारी इस विनर के लिए.

चालिनी जी यहाँ पर ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करते हुए गाड़ी साइड पर रोक दी और देखिए आपको आपके हाँ आपको फल मिल गया। सो कांग्रेचुलेशंस, आपने जीता है ये हेलीकॉप्टर राइड खेला आपने MBC और हेलीकॉप्टर लिमिटेड मॉरिशस के साथ, जहाँ पर आपने जीता है एक हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। सो ये टिकट्स लेने के लिए, ये इनाम लेने के लिए आपको आना होगा MBC अपने ID के साथ। सो वंस अगेन आपको कहेंगे कांग्रेचुलेशंस शालिनी जी, और आपने पार्टिसिपेट किया, वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। तोशिला जी आपको भी धन्यवाद, दिल से शुक्रिया टू दिस वंडरफुल लेडीज। एंड चलिए ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती के साथ। RM2 रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: RM2 Radio Musti
1: Feels a Musti.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: Friday Mashup.
0: RM2 Radio Musti.
4: एंड वेल फ्रेंड्स, अगर स्टाइल की बात करें तो स्टाइल सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों से नहीं, कॉन्फिडेंस से बनता है। जो पहनो उसे ओन करो, बिकॉज बेस्ट फैशन एसेसरी ये तो आपकी वाइब है। फैशन का फंडा सिंपल है दोस्तों, कंफर्ट भी, कॉन्फिडेंस भी और थोड़ा सा स्वैग भी। ट्रेंड फॉलो करो बट अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ओरिजिनैलिटी इसे आप लूज ना करें। और कहते हैं ना दोस्तों कि कपड़े जो हैं वो बस लुक कंप्लीट करते हैं, असली फैशन तब दिखता है जब स्माइल और कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट हो। सो चेहरे की वो मुस्कुराहट, वो कॉन्फिडेंस वो तो मांगता है। और आउटफिट ऐसे पहनो कि मिरर भी बोले कि वाह भाई वाह, क्या लग रहे हैं आज। सो वेल दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सा टिप है कि अगर आउटफिट सिंपल है तो एसेसरीज वॉच आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आपके जो शूज है वो भी आपका स्टाइल स्टेटमेंट बन सकते हैं। सो जब आपका आउटफिट एकदम सिंपल है तो आप इसे एनहांस कर सकते हैं एसेसरीज, एक मस्त वॉच या फिर अच्छे जूतों के साथ। और सिंपल सा टिप है, इसे फॉलो करें और स्टे स्टाइलिश एंड स्टे म्यूजिकल।
2: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
0: RM2 Radio Musti.

0: the latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: स्टाइल ऐसा हो कि लोग भी पलट पलट कर देखे और टुकड़ टुकड़ देखते हुए दे बोले कि भाई वाह स्टाइल हो तो ऐसा। चलिए दोस्तों अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो दैट्स योर फ्राइडे मैशअप। मैं हूं परी आपके साथ शाम के 7 बजे तक। ऐसे ही गुड म्यूजिक आपके लिए हम चलाते जाएंगे टू गेट यू इन द फ्राइडे मूड, टू गेट यू इन द वीकेंड मूड। जो भी है आपके प्लान्स, नॉट टू फॉरगेट, वही हमारे गाने बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। ये है RM2 रेडियो मस्ती। स्टे वेल ट्यून्ड, स्टे वेल कनेक्टेड।

0: एहसास सिर्फ एक शब्द नहीं पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएमटू की पूरी टीम की तरफ से।

0: यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, कहीं मत जाइए, ये है रेडियो मस्ती. और लौट कर आ रहे हैं समाचारों के बाद लेकर कुछ और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
1: Radio Musti.
6: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
6: Feel the Musti.
0: Time check, 6 p.m.

0: 29 मई शुक्रवार के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सैपिया में आज सुबह 31 वर्षीय एक पुरुष और 24 वर्षीय एक युवती के शव एक गाड़ी में बरामद किए गए। सामूहिक की टीम ने युवती की मौत की पुष्टि की, जबकि क्लिनिक पहुंचाए जाने पर युवक ने दम तोड़ा। दोनों एबैन की कंपनी के कर्मचारी थे। बच्चों के आश्रय स्थलों के संचालन की निगरानी के लिए गठित अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी कुछ ही हफ्तों में मंत्रिमंडल के समक्ष एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बात की जानकारी उप प्रधानमंत्री आर्यन नवोमागी ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पीएनक्यू के जवाब में दी। बिजली की चोरी सीबी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस साल दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती संख्या देखते हुए सीबी ने अपने नियंत्रण साधनों को और मजबूत किया है और बिजली नेटवर्क की बेहतर सुरक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत इबोला महामारी के तेजी से बढ़ने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा की है। इसको लेकर न तो कोई टीका और न ही ठोस इलाज पाया जाता है। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सैपिया में आज सुबह एक हादसा पेश आया। एक गाड़ी में कौचमीतिया रहने वाले 31 वर्षीय जॉन वालेरी नोविक सालेस और नोवेल फ्रांस रहने वाली 24 वर्षीय मनीषा बधु के शव एक गाड़ी में पाए गए। गाड़ी एक नवनिर्मित मकान के पास आंगन में पार्क थी। ये दोनों लोग एबेन स्थित ट्रेडन कंपनी के कर्मचारी थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवती की मौत की पुष्टि घटनास्थल पर पहुंची सामूहिक की टीम द्वारा की गई, जबकि जॉन वालेरी नोविक सालेस के परिवार वालों ने उसे सीके अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हुई। इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू की गई है। अन्य खबरों में, बच्चों के आश्रय स्थलों के संचालन की निगरानी के लिए गठित अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी कुछ ही हफ्तों में मंत्रिमंडल के समक्ष एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बात की जानकारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नवोमागी ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पीएनक्यू के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गंभीर संबंधी समस्याओं वाले बच्चों को रखने के लिए एक विशेष ढांचा स्थापित करना और कानूनी मामले से जुड़े बच्चों के लिए एक अलग ढांचा स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
1: The objective of the committee was to come up with concrete solutions in addressing the existing gaps concerning children with serious behavioral concern and those in conflict with the law. As at date, 4 meetings have been held. A first meeting was held on 4th February 2026, at which the stakeholders present were required.

0: requested to submit proposals aimed at addressing loopholes in the current legislative framework, policies, and infrastructural arrangements. During that meeting, it was agreed that there was an urgent need for an infrastructural facility specifically designed to cater for CSBC, separate from children who are in conflict with law. Thus, consideration would be given to the requisite rehabilitation youth center infrastructure and trained staff being dedicated to an institution which would centralize service delivery for CSBC. Madam Speaker, a fourth meeting of the committee was held on 21st May 2026, and it was proposed that an interim report be drafted and government be apprised of the work conducted by the committee.
1: राज्यसभा में आज विपक्ष नेता की पीएनक्यू की बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन पर बहसें जारी रखी गईं। सदन के दोनों पक्षों के सांसदों ने इस पर अपने विचार दिए। इनमें विपक्ष के वी पादरी अंजीवाल शामिल रहे। उन्होंने मांग की कि कमीशन की फाइनल रिपोर्ट डेढ़ साल में आम की जाए। सांसद राम इतवड़िया ने सार्वजनिक कर्ज के लिए एक सीमा निर्धारित करने का एक क्लोज शामिल किया। और अन्य खबरों में, अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत इबोला महामारी के तेजी से बढ़ने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा की है। इसको लेकर न तो कोई टीका और न ही ठोस इलाज पाया जाता है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ इन पड़ोसी देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं।
2: अफ्रीका में एक बार फिर तेजी से फैल रही जानलेवा एबोला महामारी से दुनिया के समक्ष एक नई स्वास्थ्य चेतावनी आ खड़ी हुई है। इससे कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 150 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और अब युगांडा सहित अन्य पड़ोसी देशों तक ये वायरस तेजी से फैल रहा है। WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कहना है कि औपचारिक मामले कहीं ज्यादा हो सकते हैं और कम समय में ही इसकी संख्या दुगुनी होने का खतरा है। इसको ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 मई को ही एबोला को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित कर दिया था। पिछले कुछ दशकों में कोंगो में कई बार ये महामारी फैली है और 17वीं बार इसका फैलाव वहां हुआ है। पहली बार 1976 में एबोला का पहला मामला दर्ज किया गया था। मात्र 5 महीने पहले ही कोंगो में पिछली एबोला महामारी समाप्त हुई थी और इसके नए मामलों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके वायरस के नए म्यूटेशंस को लेकर अभी तक दुनिया में कोई टीका पाया नहीं जाता। इसके नए आउटब्रेक को इसलिए ज्यादा खतरनाक समझा जा रहा है क्योंकि अधिकारियों के कदम उठाने से पहले ही ये वायरस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल गया है। इस बार का पहला मामला 24 अप्रैल को सामने आया था, जब एक स्वास्थ्य कर्मचारी को बुखार और हेमरेज हुआ था, जिससे जल्द ही उसकी मौत हो गई। शुरुआती स्तर पर इसे एक सामान्य बुखार समझा जा रहा था और लैबोरेटरी टेस्ट के नतीजे सामने आते आते एक हफ्ते में 50 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार एबोला आमतौर पर चमगादड़ जैसे जीवों में पैदा होता है और एक इंसान से दूसरे तक फैलता है। इसके प्रथम संकेत संक्रमण से 2 से 21 दिनों के बीच दिखाई दे सकते हैं। इनमें बुखार, थकान, सर दर्द आदि शामिल हैं। गंभीरता बढ़ने पर उल्टी, डायरिया और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। एबोला के मामलों में इलाज के बावजूद मृत्यु की दर 30% की बताई जाती है। विशेषज्ञ इसके खिलाफ एक टीका विकसित करने के लिए खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस हासिल नहीं हुआ है। WHO के अनुसार एक वैक्सीन तैयार होने में कम से कम 9 महीने लग सकते हैं।
1: स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय एक कम्युनिके के जरिए इस बात की पुष्टि करता है कि देश में एबोला का कोई भी मामला नहीं पाया जाता है। मंत्रालय के अनुसार सावधानी के तौर पर एक प्रिपेयरनेस प्लान स्थापित किया जा चुका है और कोंगो तथा युगांडा में पाई जा रही स्थिति पर करीबी से निगरानी रखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी देशों का निर्देशों का पालन किया जा रहा है और हवाई अड्डे तथा बंदरगाह

0: पर स्क्रीनिंग तेज की जा रही है। मंत्रालय जनता को याद दिलाता है कि एबोला सामान्य बुखार के वायरस की तरह नहीं फैलता, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के खून या बॉडी फ्लूइड के साथ सीधे संपर्क से फैलता है। मंत्रालय आश्वासन देता है कि स्थिति पर करीबी से नजर रखी जा रही है। तटीय क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस दिशा में हिंद महासागरीय आयोग के तत्वावधान में शनिवार 30 मई को फ्रीकॉन्फ्लैक में और शनिवार 6 जून को लिमोन गांव में सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सिलसिले में एजेंस फ्रांसेज दू डेवलपमेंट तथा फ्रांसीसी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का अनुदान प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना की तैयारी पर विचार विमर्श चला। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल देश में गांजे को लेकर सुधार नीति पर एक सार्वजनिक परामर्श मंच शुरू कर रही है। समस्त जनता इस पर अपने विचार, सुझाव और प्रस्ताव दे सकती है। इसके लिए या तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है या क्यूआर कोड स्कैन करके। इसके लिए अगले 21 जून तक का समय है। टेक्निकल टीम प्राप्त सुझावों और सिफारिशों को सरकार की सपोर्ट करेगी। जैसे कि हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि बिजली की चोरी सीबी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस साल दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीबी अपने नियंत्रण साधनों को और मजबूत कर रहा है और बिजली नेटवर्क की बेहतर सुरक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। इस पर उर्वशी भिखारी बंजन की रिपोर्ट पर विधिमा सिबुरन का विवरण।
1: ये कमरा बिजली कनेक्शन में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने वाले एक कंट्रोल रूम से कहीं बढ़कर है। यहाँ स्थापित की गई तकनीक ये जानने में मदद करती है कि नेटवर्क पर एक या एक से अधिक धोखाधड़ी हुई है या नहीं। सीबी के इंजीनियर विमल रामजीत ने कहा, हमारी मीटर लैब टीम ने हमारे नेटवर्क में काफी प्रगति की है जहां दूर से संचार मिलता है। अगर कोई मीटर रीडर से छेड़छाड़ करता है तो हमें पता चल जाता है, चाहे वो देश के किसी भी जगह में हो, तब हमारी टीम जांच के लिए हस्तक्षेप करने जाती है। इस प्रकार आम लोगों और कंपनियों द्वारा बिजली चोरी से जुड़े कई बिलियन रुपयों के नुकसान का पता चला है। इसके समानांतर बिजली चोरी के किसी भी मामले की शिकायत करना भी संभव है। सीबी के पास एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो मीटरों की जांच के लिए मॉरिशस और रोड्रिग्स का दौरा करती है। ग्राहक 86130 हॉटलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, खुद सीबी दफ्तर जा सकते हैं या फिर डाक द्वारा शिकायत कर सकते हैं। गुप्त तरीके से इन मामलों की जांच की जाती है। पिछले साल सीबी ने बिजली चोरी के 300 से अधिक मामले दर्ज किए थे। ये कृत्य कड़े दंड और भारी जुर्माने के अधीन है। अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया तो उसे 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है तथा 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। आने वाले दिनों में इस अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने और बिजली नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए सीबी अपनी जांच और निगरानी को और तेज करने की योजना बना रहा है।
0: और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि हिंद महासागरीय आयोग के तत्वावधान में शनिवार 30 मई को फ्रीकॉन्फ्लैक में और शनिवार 6 मई को लिमोन गांव में सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सिलसिले में एजेंस फ्रांसेज दू डेवलपमेंट तथा फ्रांसीसी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का अनुदान प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना की तैयारी पर विचार विमर्श चला। इस पर ज्यादा जानकारी कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर। वीरमा सिबुरन का विवरण।
1: देश का पश्चिम ब्लैक रिवर इलाका उन पहले इलाकों में से एक है जिसे हिंद महासागर आयोग द्वारा विचार में लिया गया है। काजनोयाल जो जलवायु परिवर्तनों के प्रति एक संवेदनशील इलाका है, यहाँ के निवासी भारी बारिश के दौरान पानी की निकासी के लिए उचित नालों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। मारी जैकलीन कहती है, जब बाढ़ आती है तो पानी मेरे आंगन में आ जाता है। कोस्टल रेजिलियंस प्रोग्राम विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है जहां उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। फ्लिकॉन्फ्लैक में एक स्नैक कॉर्नर चलाने वाली माहिदीन क्लॉक इस कार्यक्रम से लाभ उठाने की पूरी उम्मीद रखती हैं। वो बताती हैं, कभी कभी बिजली नहीं मिलती, रोज मुझे बर्फ की जरूरत पड़ती है।

जरूरी है कि पानी मिले। इस परियोजना के अन्य मुख्य तत्व हैं मैंग्रोव जैसे इकोसिस्टम का संरक्षण, तटीय कटाव के खिलाफ समुद्र तटों को मजबूत करना और तटीय क्षेत्रों के निवासियों को सतत मत्स्य पालन के प्रति सशक्त बनाना। मादेओ ताचा ने कहा, हम मछुआरों पर निर्भर करते हैं, मछुआरे काम नहीं करेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा।

0: ये डेटा एक ऐसी कार्य योजना तैयार करने में मदद करेगा जिससे एजेंस फ्रांसेज दे डेवलपमेंट और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के फंड तक पहुंच बनाई जा सके। हिंद महासागर के द्वीपों के लिए कुल 10 मिलियन यूरो का बजट दिया गया है। IUCC से अदेल दुतोमा कहती हैं, उद्देश्य ये है कि ये कार्य योजना समाधानों का प्रस्ताव पेश करेगी ताकि सामने आई समस्याओं को सुलझाया जा सके। कोस्टल रेजिलियंस प्रोजेक्ट, जो हिंद महासागर आयोग के सदस्य देशों के निवासियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है, उसकी अवधि को जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
1: लिसे अलाबोदोने और लिसे दी मस्कारेन के छात्रों ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष के महत्व पर बल दिया गया है। 20 मिनट की इस लघु फिल्म में भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व और जागरूकता का संदेश दिया गया है। अंजू रामगुलाम की रिपोर्ट पर विधि मासीबुरन का विवरण।
2: Every year, thousands of tons of plastic waste end up in rivers, beaches, lagoons, and the ocean.
0: युवाओं द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री युवाओं की अंतरात्मा से निकली एक दिल की पुकार की तरह जागरूकता फैलाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण को ना कहने के लिए। परियोजना का नाम नो प्लास्टिक मोशस है। हमारी डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम बदलाव लाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और सरकार को नुकसानों के प्रति आगाह करना चाहते हैं। हमारा देश पर्यटन पर निर्भर करता है और कदम उठाने की कमी पाई जाती है। 20 मिनट की एक छोटी सी फिल्म शायद समुद्र में एक बूंद की तरह, लेकिन ये कहीं और जागरूकता की बड़ी लहरें पैदा करने की उम्मीद रखती है। एक ऐसी परियोजना जिसमें लिसे लाबोदोने और लिसे दी मस्कारेन के छात्रों ने अपनी पूरी ताकत, अपने विचार और अपने दृढ़ विश्वास को लगाया है।
3: Pour moi, ça aura un impact, un vrai impact, car la population mauricienne n'est pas vraiment sensibilisée sur.
0: Mauritius की जनता सही मायने में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूक नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए वे जागरूक हो सकती हैं। ये परियोजना उनके शिक्षकों के सहयोग से पूरी तरह की गई है, जो खुद भी इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि आज के छोटे छोटे कदम ही कल की दुनिया का निर्माण करते हैं।
4: On s'est posé la question, pourquoi pas effectivement faire en sorte que ça soit quelque chose donc de collectif, de quelque chose de mauricien. Et malheureusement, on n'a pas eu de réponse.
0: इस परियोजना के निर्माण के दौरान l'Institut français de Maurice ने मॉरिशस के स्कूलों से इस परियोजना पर काम करने की मांग की, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन l'Institut français de Maurice के एम्फीथिएटर में जैकी चान दे ला रिक्यूप का एक वाद्य यंत्र भी गूंज रहा था, जो नंगे पैर चलना पसंद करते हैं।
5: C'est Saman Zenesta qui feature nous la planète, feature de Maurice, mais lui dans eux de la main. Nous demandons grand du monde, elle nous prend pas la terre, mais c'est eux qui pour acter.
0: ये नौजवान ही हमारे देश का भविष्य हैं, उनके साथ अच्छा मूल्य साझा करना चाहिए। ये भविष्य की पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से एक संदेश है, लेकिन सबसे बढ़कर आज की पीढ़ी के लिए एक संदेश है, वो पीढ़ी जिसके पास अभी भी कुछ करने की ताकत है, ताकि हमारा द्वीप, हमारा ये स्वर्ग प्रदूषण के नरक में न डूब जाए।
1: यूरोप के कई देश पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। कई देशों में मई का ये महीना उनके इतिहास का सबसे गर्म मई महीना रहा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है कि 2026 से 2030 के बीच रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम संबंधी जानकारियों की ओर, विधि मासीबुरन के साथ।
0: हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। पूर्व से पाए जा रहे बादल कल सुबह से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात आसमान साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल बादल घिरे रहेंगे और पूर्व तथा ऊंचाइयों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को धीरे धीरे आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, तटवर्तीय इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं।

प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:37 पर सूरज उगेगा और शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरी समाचार डेस्क का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी शिव है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: शोक समाचार सुनिए. मोसलमान रोय बेले रिविये सेश में, मोसलमान रोय बेले रिविये सेश में 75 साल के 75 years old के श्री देवानंदन सिनिवासन, श्री देवानंदन सिनिवासन जिन्हें संदेश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विनोदा सिनिवासन के घर बेलेर वियसेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशोंग शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM. La Clémence, rivière du Rhône-Pomé. La Clémence, rivière du Rhône-Pomé. Ikianbe Salki. Ikianbe Salki. Shrimati Paidama Apadu. Shrimati Paidama Apadu. Paidashram Ramanau, jinhe Ananti ke naam se bhi log zyada jante the ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal din ke 12 baje unke bete Atma Apadu ke ghar rivière du Rhône-Pomé se uthakar अंतिम संस्कार के लिए पीतों शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट नून. नेहरू रोड लालमाटी में 22 साल के 22 ईयर्स ओल्ड के श्री भविष्य खुदी जिन्हें भविष्य के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके पिता उत्तम कुमार खुदी के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM. रॉबिन्सन नंबर एक फिनिक्स में ये शोक समाचार आप एक बार फिर सुन लीजिए. मार्केट रोड लॉन्ग माउंटेन में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांता कुमारी बिसुंदयाल जिन्हें तारा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके बेटे कुनल बिसुंदयाल के घर लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामौशों की शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM. कॉन्लिव्यू स्ट्रीट ओकुले में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधा सिबोरत जिन्हें पैदाश नाम बुना और जिन्हें सोनमती के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे राजेश सिबोरत के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो 10 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: It's all day long. Bollywood hits music.
2: Check this out.
1: Radio Musti. Radio Musti. Feel the musty.
3: Nimura, nimura, nimura.
2: Check this out.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

शाम के 6:30 हो गए हैं फ्राइडे इवनिंग एंड इट्स योर फ्राइडे मैशअप और फ्राइडे मूड को सेट कर रहे हैं हम यहाँ ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती. मैं हूँ परी आपके साथ शाम के 7 तक. गुड म्यूजिक आपके लिए हमेशा और अभी के लिए तो बस वीकेंड लेकर आ रहा है बहुत सारी खुशियाँ, यही हम विश कर रहे हैं आपके लिए. वैसे काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है दिस सैटरडे, यानी कि UEFA का वर्ल्ड कप फिनाले ये तो होगा ही होगा. जुबिन नौटियाल का ग्रैंड कॉन्सर्ट राइट हियर इन मॉरिशस एट SVICC पाए ये भी तो होने वाला है और साथ ही साथ आपके लिए बहुत कुछ. सो बस सुनते रहिए RM2 रेडियो मस्ती, मस्ती ही मस्ती आपके लिए. और जिंदगी में अगर मस्ती ना हो तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है दोस्तों. अभी के लिए साथ दे रहे हैं आप, आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल मैशअप. दिस वन गोज आउट टू यू.

0: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे RM2 की पूरी टीम की तरफ से।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: Chez Lolo, saveur marine, crevette headless, 31-40, 500 grammes, de Madagascar, 375 roupies. Saveur marine, catouf, filet 1 kg de Madagascar, 580 roupies. Modio food cocktail, 820 grammes, 99 roupies.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: सो चलिए दोस्तों, इट्स फ्राइडे इवनिंग जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. वी हैव लोड्स ऑफ लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एंजॉयिंग दिया फ्राइडे इवनिंग हमारे इन गानों के साथ. ज्योति जी है शातो बनारस से, गाना डेडिकेट कर रही हैं फॉर अंशनी, रेखा, सुरेखा, मदर परिवार. हैप्पी मदर्स डे विशेज ये है सभी के नाम. थैंक यू सो मच. एंड इट्स फ्राइडे एंड इट्स टाइम टू रॉक कह रहे हैं दारिन श्वेता, रवीश प्रीशा, लव शाह, पाडू परिवार साथ दे रहे हैं आप होशनुमा से. साथ ही यहाँ पर ये जो रॉकिंग गाना है इसे एंजॉय करना चाहते हैं आप है कौन. आप है हमारे प्यारे से श्वेता. ओके श्वेता, थैंक यू जी. और ये गाना होगा आपके नाम. और शुक्रिया, इतना प्यारा सा मैसेज आपने हम तक पहुंचाया. और कहते हैं गाना हो जाए फॉर अ स्पेशल फ्रेंड नीतू ऑफ पाल्मा का ट्रिबोन, फॉर हर हर फैमिली, विशिंग हर सेफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस. दैट्स कमिंग फ्रॉम राजीव सेपिया से हमारा साथ दे रहे हैं, डेडिकेटिंग गाना स्पेशली फॉर नीतू. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू. यहाँ पर एक रोमांटिक सा मैसेज भी आया है.

Hey, for sweet Arshad, I'm sitting here thinking about you. I just want you to know that how much I love you and you are my everything. Thank you for loving me. Love you so, so much. That's coming from unki wife, Rebecca. Kya baat hai? Love is in the air aur hona bhi chahiye. Kyun nahi? Romantic message ke saath, yahan par we have a peppy song dedicate karenge. Aap dono ke naam ke life mein jo masti hai, wo bani rahe aur life ki khushiyan aise hi multiply hoti rahe. एंड वेल यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर हम तो साथ दे रहे हैं आपका ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती और बहुत ही जल्द हम जुड़ने वाले हैं दिव्या के साथ भी. यस, थोड़ी देर में वो आने वाली हैं अपने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ आपको एंटरटेन करने के लिए. सो साथ देते रहिए आप और प्यारे गानों के साथ हम भी आपके हम सफ़र बने रहेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आप हमेशा हम तक पहुँचाते रहते हैं. नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस हैं. रहेगा इंतजार 5499-1294 पर. यहाँ पर विजया जी साथ दे रही हैं आप. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू एज वेल. और कहते हैं कि इन गानों को सुनकर आज तो मूड सेट हो गया. रेखा जी धन्यवाद, थैंक यू जी. परी आपके साथ है शाम के 7 बजे तक और ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम. साधना है रिवेदिक क्रियोल से और गाना डेडिकेट करना चाहती हैं फॉर ऑल जीवन फैमिली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल इवनिंग. सुंदर सा गाना ममा कमला जो पुत्र दो विलेज रहती हैं उनके लिए भी प्यार एंड स्पेशल विशेज. चलिए सो ऐसे ही आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन अभी के लिए किरण हमारा साथ दे रही हैं आप. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू फॉर एवरी वन हुज कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ.

और चलिए दोस्तों, फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गाना और इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। आ गई है दिव्या लेकर कुछ और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए फ्राइडे सिज़लर। कुछ गाने ऐसे होंगे जो आपके दिल को एकदम हैप्पी हैप्पी फील करवाएंगे। सो एंजॉय योर फ्राइडे इवनिंग, योर फ्राइडे नाइट, योर वीकेंड्स। यहाँ पर आर एम टू रेडियो मस्ती पर कोशिश यही है आपके लिए खास एंड स्पेशल शोज हम लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी जो दिल की खुशी है वो बिल्कुल ऐसे ही बनी रहे। सो परी साइनिंग ऑफ, मुलाकात होगी आपसे जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।

0: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई है। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएमटू की पूरी टीम की तरफ से।

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
0: Well, 7:06 हो चुके हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि मिलने आएंगे जरूर सेम टाइम लेकिन अलग मूड के साथ। ऑफ कोर्स शायद आप लोग निकल चुके हैं कुछ पार्टी शार्टी करने के लिए, आपका पूरा पूरा हक बनता है भाई। देखिए आप पूरे वीक इतने काम करते हैं मेहनत से एंड आपका फर्ज बनता है कि आप थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालें, क्यों परी?
2: बिल्कुल सही कहा, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे वक्त इतना जल्दी उड़ जाता है, यानी कि इट फ्लाइज एंड इट्स टाइम दैट अब जो वीकेंड आया है इसे खास बनाना ये बिल्कुल आप ही के हाथ में है। सो वेल फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड आज तो फ्राइडे इवनिंग है, उसके बाद सैटरडे एंड संडे। और वैसे दिव्या, सैटरडे कल बहुत कुछ होने वाला है,
0: बहुत बहुत कुछ। क्या कुछ होने वाला है? यस, वी आर गोइंग टू हैव एन एक्स्ट्रा स्पेशल कॉन्सर्ट, यानी कि आप जुबिन के कॉन्सर्ट को असिस्ट कर पाएंगे। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल आपको बाद में देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज फ्राइडे है तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, टू गेट यू इन द मूड। एंड ऑफ कोर्स आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं 5499-1294। फिल्मी जान
1: OMG रेडियो मस्ती।
3: OMG
1: रेडियो मस्ती।
4: मैं ना रहा,
5: जुबिन नौटियाल लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे एट SVICC पाई, विनर ऑफ द बेस्ट सिंगर अवार्ड ऑफ 2025। Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
3: RM2
1: Radio Musti.

0: इवनिंग को और भी स्पेशल बनाने के लिए वी हैव सम स्पेशल गाने टू कीप यू इन द गुड मूड. और अगर आप लोग पार्टी के लिए निकल रहे हैं तो प्लीज ड्राइव सेफ एंड केयरफुली. एंड बहुत सारे लोग शायद नोटिस करते हैं कि फ्राइडे इवनिंग को काफ़ी जैम होता है और धीरे धीरे करके गाड़ियाँ चलती रहती हैं. एंड कारण यही है कि सब लोग हफ्ते भर काम करते हैं और अभी के लिए आप लोग कहीं पर निकल कर साउथ की ओर जा रहे हैं, या फिर आप बर्थडे में इनवाइटेड हैं, या फिर आप किसी शादी में जा रहे हैं. हाँ, फ्राइडे के दिन में भी कुछ कुछ लोग संगीत में जाते हैं, तो कुछ लोग ऑलरेडी हल्दी के लिए निकल जाते हैं. कल शायद शादी है या फिर कल हल्दी है. बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लानिंग्स भी करते हैं फॉर द वीकेंड. एंड आई जस्ट होप कि जो भी आपने प्लान किया है ना, आपका प्लान सक्सेसफुल रहे और आपको मौका मिले टू स्पेंड सम वंडरफुल ब्यूटीफुल मोमेंट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और चलिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिस्ट में आपने हमें भी शामिल किया हुआ है, जानकर बहुत ही अच्छा लगता है. सो ऑफकोर्स वी वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस. एंड चलिए, यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ. शायद बस आप थोड़ी देर में निकलने वाले हैं घर से कुछ एंजॉय करने के लिए. तो आई होप कि अभी आप लोग सेफली गाड़ी चला रहे होंगे. और स्पेशली हमारी लेडीज़, आप लोगों का काम तो बहुत ही हेक्टिक होता है. मतलब निकलना भी है लेकिन अच्छा भी दिखना है, और मेकअप डालने के लिए यू आर टू लेजी ऐसा हो जाता है. लेकिन कोई बात नहीं, आई जस्ट होप कि हमारे गाने आपको थोड़ा बहुत इंकरेजमेंट दे, आपको सजने धजने में और भी ईजी लगे. एंड चलिए, यहाँ पर हमारे गाने आपको विल कीप यू एंटरटेन्ड टिल 9 PM ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है. तो वंस अगेन वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस. फटाफट भेजिए अपने मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज 5499124.
1: फिल्मी जान RM2 रेडियो मस्ती.

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती.
2: All right, 7:24 to all those having their dinner right now. आपको हम विश करेंगे बन अपेची शुभ आहार. कुछ लोग आज लेट डिनर लेने वाले हैं क्योंकि शायद आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं या फिर यू हैविंग सम फन मोमेंट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम जरूर बढ़ेंगे. एंड आप कहते हैं हाय डियर, योर शो इज रॉकिंग, कैन यू प्लीज प्ले द ट्रैक एक पल का जीना फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है फॉर ए स्पेशल फ्रेंड. और आपकी स्पेशल फ्रेंड का नाम है नीतू ऑफ काट्रोबोन और उनकी फैमिली के लिए आप अगला गाना डेडिकेट करना चाहते हैं. विशिंग हर सेफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस फ्रॉम राजीव ऑफ सैम्प हियर. हे राजीव, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड किसी ने कहा है कि इफ़ यू कुड प्लीज प्ले अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर बोथ मदर्स, संगीता एंड सनीता के लिए. एंड मुझे पता है कि मदर्स डे धीरे धीरे करके नज़दीक आ ही रहा है. कल तो स्पेशल डे का ईव है और बहुत सारे लोग निकल पड़ेंगे शॉपिंग करने के लिए अपनी मम्मी के लिए. लेकिन आपको याद रखना है कि साल में

0: 65 डेज होते हैं और एक ही दिन के लिए आपको मम्मी को सेलिब्रेट नहीं करना है बल्कि यू नीड टू सेलिब्रेट मदरहुड एंड द लव द सैक्रिफाइस ऑफ योर मदर ईच एंड एवरी डे. एंड चलिए कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपनी मम्मी को याद करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वक्त किसी को नहीं मिलता है, वक्त निकालना पड़ता है. स्पेशली हमारी मम्मीज़ के लिए तो आपको टाइम निकालना ही निकालना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिंदगी में अगर आप किसी कीमती चीज़ किसी को दे पाओ वो आपका वक्त है. यस, टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ मनी. इसीलिए जितना हो सके अपनों को ये एहसास दिलाइए कि आप बिजी होने के बावजूद भी उनको याद कर रहे हैं.
1: Filmy Jam. RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: भाई देखिए, पार्टी कर लेने के बाद सबको घर जाना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप अभी कहेंगे कि धत तेरे की मैं घर नहीं जाना, तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट विद दैट, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गाने हम आप लोगों के लिए चलाते रहते हैं यहाँ पर कि कभी कभी हमारा भी मन नहीं होता है घर जाने के लिए, और ऐसा लगता है कि बैठ के ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने आपको सुनाते रहे टू कीप यू इन द गुड मूड, एंड चलिए आपको हंसाने के लिए एंड आपको अच्छा फील कराने के लिए वी आर ऑलवेज हियर। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती। दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक इन योर फिल्मी जैम। चलिए यहाँ पर किसने कहा है, कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग मन्नता फ्रॉम द मूवी हीरोज। ये तो लास्ट टाइम हमने चलाया था, तब से आप इस गाने का रिक्वेस्ट कर रही है, तो चलिए इन द कमिंग डेज अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार फिर से इस गाने को चलाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूड थोड़ा अलग है इस बार।

RM2. Radio Musty. In the mix.

0: है। फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती।
0: All right, 7:53 already. That was a beautiful gana taken up from the movie Heroine. And चलिए जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शायद आप अब्रॉड से भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच एंड वेलकम जी, वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM और ऐसे ही हमारा और आपका साथ रहेगा खूबसूरत धमाकेदार गीतों के साथ, क्योंकि अभी हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, ऐसे ही एंटरटेन करेंगे आप लोगों को। एंड जरूर हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड दिस फ्राइडे इवनिंग, तो जरूर हमें बताइएगा। वेटिंग फॉर योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज 5499 1294। अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं या फिर आप कहीं पर इन्वाइटेड हैं, तो आपको कहेंगे थैंक यू सो मच कि आप लोग हर एक छोटी छोटी खुशी में हमें शामिल करते रहते हैं। तो चलिए ये अगला गाना गुजार टू ईच एंड एवरी वन जो इस वक्त पार्टी को रॉक कर रहे हैं।
1: Filmy Jam. RM2 Radio Musti.

0: Jam.
1: OMG Radio Musty.
0: All right, रात के 8:06 हो चुके हैं. बिल्कुल आंटी जी ही नहीं बल्कि जितने भी सारे हमारे जवान हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आप सबको हम न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं टू रॉक द डांस फ्लोर. अभी आप सोच रहे हैं कि भाई हम कहाँ रॉक करेंगे डांस फ्लोर को, तो आपसे होगा, ज़रूर होगा. अगर आप सोचते हैं कि नहीं होगा तो लेट मी टेल यू कि यू नीड टू डांस एज इफ नोबडी इज़ वॉचिंग. डांस करना इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्म का एक्सरसाइज भी है और साथ में इट कीप्स यू वेरी हैप्पी. और इतना भी आपको बीट पे फॉलो नहीं करना है, बस जितना आपको आता है उतना ही करते रहिएगा. एंड हमारा तो पूरा पूरा मोटिव ही है कि हम आपको इस मूड में ढलते रहे ताकि आपको भी लगे कि यस इट्स अ फ्राइडे इवनिंग. तो चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच. वी ऑल्सो हैव अंतिश जो कनेक्टेड हैं विद अस ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड. हे अंतिश, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. द नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू, फॉर योर स्वीट मॉम एंड टू ऑल योर फैमिली. एंड स्पेशली संडे को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं मदर्स डे, तो अपनी मम्मी को एकदम से टाइट हक जरूर देना और उनको कहना कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. तो चलिए एक बार फिर से वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस म्यूजिकल कारवां टिल 9 PM, जहां पर आपके मैसेजेस का एक बार फिर से इंतजार करेंगे ऑन 5499-1294.
2: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Well, चलिए यहाँ पर of course, so we are all set to give you once again some more details about Jubin. और हम बात कर रहे हैं जब Jubin Nautiyal के बारे में, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि he is indeed a very versatile singer. और उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है. बस कहते हैं ना कि अगर आपको परखना है, देखना है, तो वो आपको विटनेस करना ही होगा. एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने टिकट्स बुक करवा चुके हैं फॉर टुमोरो, जहां पर दे ऑल सेट टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्पेशल कॉन्सर्ट जो होने वाला है कल 30 मई 2026 को एट SVICC पायाज फ्रॉम 8 PM. लेट मी टेल यू दैट दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स. Also to remind you that the concert will be held tomorrow and tickets are available on and reservations can be made through hotline 214-6464 on ticketbox.mu. तो चलिए यहाँ पर आपको हम कहेंगे जरूर जाइएगा and be a part of this wonderful magical concert जो कल Jubin बहुत ही प्यार से आपको देने वाले हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि कॉन्सर्ट से निकलते वक्त इज गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम मेमोरी जो आप जिंदगी भर चेरिश करने वाले हैं.
1: फिल्मी जान RM2 रेडियो मस्ती.

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती.
2: Alright, that was taken from the movie Ready. हम भी ever ready हैं आप लोगों को ऐसे ही खूबसूरत गाने सुनाने के लिए. And बस time का तकाजा होता है. और वैसे कितने भी सारे लोग इस वक्त निकल चुके हैं कुछ मस्ती करने के लिए, तो हम भी आपके साथ हैं. चलिए यहाँ पर अगला गाना goes out specially for करिश्मा, जो इस वक्त शायद हमारा साथ दे रही होंगी. And आपके लिए हमेशा dedication तो आती रहती. चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर रेखा जी, जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ. कहती हैं कि प्लीज द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट फॉर ऑल माय फैमिली एंड वी हैविंग फन एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एट द सेम टाइम. और साथ में उधव फैमिली के लिए अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे. थैंक यू सो मच जी हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ विल बी एंटरटेनिंग यू टिल 9 PM. अभी के लिए लेट्स शेक इट लाइक Shami.
0: Filmy Jam.
1: RM2 Radio Musti.

0: आपके मन में यही सवाल है तो लेट मी टेल यू द पार्टी इज हियर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए गाने चलाते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही मौज मस्ती के साथ सुनते रहिएगा एंड कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294 एंड चलिए साथ में यहाँ पर अगला गाना गोज आउट फॉर मेधा मनीष श्रेया आर्यन नील शीतल विकी रीतिना नितिन संगीता मोताई ब्लॉश आपको भी धन्यवाद एंड आपको भी शुभरात्रि एंड चलिए नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ईच एंड एवरीवन जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं
1: RM2 Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti feels a Musti.

0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती.
0: Well, it's already 8:54 and चलिए इसी के साथ it's a time for me to say goodbye to all of you. हमारे बाद DJ Krish all set है आपको पार्टी मूड में ढलने के लिए and of course आप इनका साथ जरूर देना and for your messages, dedications, we are still waiting for your messages on 5499-1294. तो DJ Krish का साथ जरूर दीजिएगा and तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. Take care, keep smiling and bye-bye.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2 Radio Musti.
1: आपका ये बजा ही सही।